दोस्तों, आजादी सिर्फ बंधनों से मुक्त होने का नाम नहीं है, बल्कि आजादी वो एहसास है जब दिल खुलकर मुस्कुराए, जब सपनों को पंख मिल जाए और इंसान बिना डर के अपनी दुनिया जी सके। कभी कभी जिंदगी हमें इतने बंधनों में बांध देती है ना कि हम अपने ही मन की उड़ान भूल जाते हैं, लेकिन जब दिल से डर निकल जाए ना तो हर आसमान अपना लगता है और हर रास्ता आसान लगता है।

जानते हैं दोस्तों, कभी कभी मन इतना बेचैन हो जाता है कि उसे खुद ही समझ नहीं आता कि वो तलाश किसकी कर रहा है। कोई चेहरा, कोई अपना, कोई सपना, या फिर वो सुकून जो कहीं खो गया है। जिंदगी के भीड़ में इंसान बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन दिल का खालीपन फिर भी बना रहता है। तभी हवाओं से, फिजाओं से, रास्तों से एक ही सवाल निकलता है, आखिर ये मन किसे ढूंढ रहा है।

दोस्तों, हवा जब मस्ती में झूमती है ना, तो सिर्फ पेड़ों की डालियां ही नहीं डोलती, दिल भी कहीं भीतर से थिरक उठता है, जैसे कोई पुरानी याद पायल पहनकर लौट आई हो, जैसे बचपन की गलियां फिर से पुकार रही हो। ये मस्त पवन अपने साथ न जाने कितने एहसास ले आती है, कहीं प्रेम की खुशबू, कहीं मिलन की आहट, तो कहीं जिंदगी को खुलकर जी लेने का पैगाम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई 2026 सुबह के 5:53 और 33 सेकंड हुए।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अर्पण कार्यक्रम का समय रहेगा 6:10 पर। इसमें आप सुनेंगे भक्ति संगीत। श्री रामचरित मानस गान आप सुनते हैं 6:44 पर। गोल्ड सुप्रभात ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 7:10 पर। म्यूजिकल दिल लगी ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:45 पर। पेश करेंगी सुनीता चौहान। म्यूजिकल दिल लगी सेगमेंट 2 पेश किया जाएगा 9:24 पर। पेश करेंगी भावना। दिल का मेल बॉक्स रिक्वेस्ट बेस्ड प्रोग्राम पेश किया जाएगा 10:23 पर। 11:10 पर तस्वीर कार्यक्रम केंद्रित होगा कसोल हिमाचल प्रदेश पर। आकाशवाणी एफएम गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो घर आंगन पेश किया जाएगा 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल ये कार्यक्रम केंद्रित होगा तलत महमूद पर। इसे आप सुनेंगे 1:10 पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात सुनिएगा 2:30 पर। मन भावन कार्यक्रम पेश किया जाएगा 3:25 पर। गाते गुनगुनाते ये कार्यक्रम सुनिएगा 5:10 पर। सदाबहार गीत सुनवाए जाएंगे 6:10 पर। सांझ ढले ये कार्यक्रम सुनिएगा 7:25 पर। मधुरिमा कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:10 पर। हर सिंगार ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 10:30 पर। गीत मेरे मनमीत ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 11:10 पर। यह था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6:00 हैं। अब समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। समय 6:11 और ये हुए 6:12। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:12 हो चुके हैं। भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण के साथ मैं हूं सुनीता। नमस्कार, सुप्रभात।

श्रीमद् भगवद गीता में उल्लिखित है, कर्म का तत्व भी जानना चाहिए, अकर्म का तत्व भी और विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है।

कबीर ने कहा, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो का पीर में पीर। अर्थात जो इंसान दूसरे की पीड़ा को समझता है वह सज्जन है, और जो नहीं समझता ऐसा इंसान होने से क्या फायदा।

स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 6:28 और 10 सेकंड हो चले हैं। शनिवार की सुबह आप आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। यह है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड, जिसे आप ट्यून करते हैं 100.1 MHz पर। और आज आपके साथ हूं मैं, सुनीता।

0: जय।
1: दार्शनिक अरस्तु के अनुसार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति नहीं बल्कि उसका स्वभाव उसे भरोसेमंद बनाता है। इसलिए धन संपत्ति से ज्यादा स्वभाव को महत्व देना चाहिए।

भक्ति काल के प्रमुख कवि रहीम कहते हैं कि समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछताए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप, और अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण। और अब समय हो चला है कि हम सुने रामचरित मानस गान।

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फलमूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड और अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान बालकांड से एक अंश। और अब समय हो चला है समाचार का और जानना कि

दुनिया में क्या हो रहा है। और समाचार के बाद ठीक 7:10 पर सुनीता एक बार फिर होगी आपके साथ। प्रोग्राम रहेगा गोल्ड सुप्रभात। तो फिलहाल वक्त है समाचार का। पहले समाचार सुनेंगे संस्कृत में, फिर हिंदी में और अंग्रेजी में। तो आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी FM गोल्ड पर।

0: दलम् अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलम् गुजरात टाइटन्स दलम् सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमरीका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता

100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम गोल्ड 7:10 और 53 सेकंड गोल्ड सुप्रभात का आगाज उस आवाज के साथ जिसे शहंशाह गजल और मैन विद अ गोल्डन वॉइस कहा जाता है। 1961 की फिल्म छाया का ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए। मैं हूँ सुनीता।

राजेंद्र कृष्ण के लिरिक्स, सलील चौधरी का म्यूजिक, आवाजें जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, लता मंगेशकर जी और किंग ऑफ गजल्स तलत महमूद साहब। 1940 से 1980 तक चार दशकों में उन्होंने अलग अलग भाषाओं में लगभग 750 गीतों गजलों को अपनी आवाज से अमर कर दिया। और आज एफएम गोल्ड पर दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल प्रोग्राम में भी तलत महमूद साहब के बारे में ही जान पाएंगे आप। 9 मई 1998 को ली थी उन्होंने अंतिम सांस, पर उनकी मखमली आवाज आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।

33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा आज तापमान। आसमान साफ रहेगा और अगर मौसम को देख के आपका थोड़ा सा मन इधर उधर हो रहा हो तो बहुत ही प्यारा सा गाना है मेरे पास, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से ये गाना है, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में, बहुत ही प्यारा।

कितनी हैरानी की बात है ना कि ये ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग 1961 का था, जिसे हम आज भी सुनना पसंद करते हैं, आज भी गूज़बम्स होते हैं जब हम इस गाने को सुनते हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी जो भी गाने आपने सुने वो सभी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से थे। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए अब मैं दो गाने आपको सुनाने वाली हूँ बैक टू बैक। एक गाना है फिल्म 16 साल से और दूसरा फिल्म शहीद से। बहुत प्यारे गाने हैं, एंजॉय कीजिए।

0: आपके गालों का डिंपल और आंखों का ट्विंकल बता रहा है कि आपको ये गोल्ड सुप्रभात सुप्रभात बहुत पसंद आया है। तो ऐसे ही गाने और होंगे गोल्ड सुप्रभात के बाद म्यूजिकल दिल्लगी में 8:45 पर। लेकिन फिलहाल समय है आज सवेरे का समाचार सेवा प्रभाग का। ये प्रोग्राम
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: व्यवहार वो दर्पण है जिसमें अहंकार और संस्कार दोनों की ही झलक स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। इसीलिए सभी के प्रति अपने व्यवहार में प्रेम और करुणा रखें, क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व का परिचायक है। इन्हीं सुविचारों के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, लाइक मुकेश सेड दैट दिस इज आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू टिल 8 o'clock। स्टे ट्यून्ड एंड गेट रेडी फॉर ऑल द अपडेट्स। टुडे इज सैटरडे, टुडे इज 9th ऑफ मे, एन एक्सट्रीमली स्पेशल डे। व्हाई इज इट स्पेशल? वी लेट you know, and the weekend is here, so you have multiple reasons to celebrate.
0: बिल्कुल।
1: Let's begin our program with the news headlines.
0: जी, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल RN रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उधर तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने TVK को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल TVK प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों को समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। अगर बात करें हम असम की, तो भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार राज्य में लगातार तीसरी बार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता के नाम की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा।
1: Union Home Minister Amit Shah has said that the BJP government in West Bengal will secure India's borders and plug biggest hole in national security. In his address to newly elected West Bengal BJP MLAs in Kolkata yesterday, Mr. Shah said the BJP's victory is not about the expansion of our organization or validation of ideology. It is about fixing the biggest hole in the country's national security. He said that with BJP governments in Assam, Tripura and now West Bengal, we will turn the border into an impregnable fortress. Moving on, the United States has announced sanctions against 10 individuals and companies, including several in China and Hong Kong, over accusations that they aided Iran's efforts to secure weapons and the raw materials needed to build its drones and ballistic missiles. We have a report.
2: The U.S. Treasury's last night move comes days before U.S. President Donald Trump plans to travel to China for a meeting with President Xi Jinping and as efforts to end the war with Iran have stalled. In a statement, U.S. Treasury said it remains ready to take economic action against Iran's military industrial base to prevent Tehran from reconstituting its production capacity. Treasury said it is also prepared to act against any foreign company supporting illicit Iranian commerce, including airlines, and could impose secondary sanctions on foreign financial institutions that aid Iran's efforts, including those connected to China's independent teapot oil refineries. Experts say Treasury's actions were aimed at cracking down on Iran's ability to threaten ships operating in the Strait of Hormuz and regional allies. Iran shut the Strait of Hormuz, a narrow choke point between Iran and Oman, through which a fifth of the world's crude oil and liquefied natural gas passes, after the US and Israel attacked a large number of targets in Iran on February 28. Shipping through the crucial waterway has ground to a near halt since the war began, sending energy prices sharply higher. Iran is a major drone manufacturer and has the industrial capacity to produce around 10,000 a month. आशीष अब्राहम फॉर आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
0: और अगर श्रोताओं बात करें खेलों की तो आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 8 विकेट पर 142 रन बनाए। कोलकाता ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
1: And in football, India scripted history by qualifying for the quarterfinals of the AFC Under-17 Women's Asian Cup for the first time with a commanding 4-0 victory against Lebanon in their final Group B fixture in China yesterday. For India, Pratika Burman in 7th and 85th, Alva Devi Senjum in 36th and Joya in 72nd minute scored goals. Reaching the semi-finals of this tournament would guarantee India a spot in the 2026 FIFA Under-17 Women's World Cup.
0: और अब रुक करते हैं महानगरों की खबरों का। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात दिल्ली के समाचारों की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य स्कूलों में कमियों और जरूरी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के कई सरकारी स्कूल 40 से 50 वर्ष पुराने हैं और लगभग 700 स्कूलों में बड़े स्तर पर पुनर्विकास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस ऑडिट के माध्यम से इन स्कूलों के भवनों की मजबूती, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, स्वच्छता और फायर सेफ्टी जैसी मूलभूत सुविधाओं की जांच की जाएगी। और दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि वजीराबाद तालाब में यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों में जल उत्पादन लगभग 40-50% तक प्रभावित हुआ है। इसके चलते स्थिति सामान्य होने तक कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में आईटीओ, डिफेंस कॉलोनी, राजघाट, तिमारपुर, पंजाबी बाग, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी, करोल बाग, सिविल लाइन्स, पटेल नगर और आसपास के इलाके शामिल हैं। नागरिक आपातकाल स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। और दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों और रिमेडियल क्लास को लेकर सर्कुलर जारी किया है। आदेश के अनुसार दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। वहीं अवकाश के दौरान कक्षा 9वीं और 10वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 11 मई से 23 मई तक विशेष रिमेडियल क्लास आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए इन कक्षाओं का समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इनमें प्रत्येक पीरियड 1 घंटे का होगा।
1: And moving towards Chennai, the Indian Institute of Technology Madras Global Research Foundation has announced the establishment of its first U.S. Center in Menlo Park, California at the Select USA Investment Summit on 6th of May. Launched on April 24, 2026, in partnership with CA Startups, the center represents a strategic shift towards taking Indian deep tech research and startups directly to global innovation hubs.

0: enabling deeper collaboration with global industry and venture ecosystems.
1: और अगर बात करें मुंबई की खबरों का तो महाराष्ट्र सरकार ने 14 लेन वाले विगार अलीबाग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के पहले चरण के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर से मुंबई में यातायात की समस्या में सुगमता होगी। और महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने मुंबई हाउसिंग सोसाइटियों को अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स शुल्क के बिना अवकाश और सुविधाओं का विस्तार करने की भी अनुमति प्रदान की है।
0: And moving towards Bangalore, the Bangalore Water Supply and Sewerage Board, BWSSB, has intensified its crackdown on illegal water and sewerage connections through its special Blue Force squads, inspecting 54,625 buildings across Bangalore over the past 5 months. During the drive, BWSSB disconnected 11,217 unauthorized connections, including 9,751 drinking water and 1,466 sewerage connections. The East Zone recorded the highest number of disconnections, while the South Zone saw the highest inspections. And about some more news from Bangalore itself, elections to the 5 corporations under the Greater Bangalore Authority, GBA, are likely to be held between June 14th and 24th, State Election Commissioner G.S. Sangareshi said on Friday. Addressing the media, Mr. Sangareshi said that there would be no delay in conducting the polls as the Supreme Court has directed the State Election Commission to submit a compliance report by 30th of June.
1: और अब बात कार्यक्रम आज सवेरे में महानगरों के मौसम का हाल जानने की। इधर राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में भी आज आसमान साफ रहेगा। शहर में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
0: And Chennai is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Bangalore is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and the maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of development of thunder lightning. The temperature will hover somewhere between a minimum of 27 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius. Now, we have a special report for all of you on the forthcoming National Lok Adalat being organized on 9th of May 2026. We have an excerpt from an interview with Sanjeev Pandey, Member Secretary, the National Legal Services Authority, NALSA.
2: आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत खास है जो लंबे समय से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। आज 9 मई को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे। आज 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को विशेष क्यों माना जा रहा है?
3: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका आयोजन स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुका लेवल पे तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। इसमें न्यायालय में लंबित मामले व प्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
2: लोक अदालतों में सामान्यतः किस प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है?
3: लोक अदालत में सिविल केस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, चेक बाउंस के केस, श्रम विभाग के बिजली पानी, इसके अलावा ट्रैफिक चालान के केस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस और प्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाता है। इसी प्रकार से लोक अदालत में समझौता योग्य क्रिमिनल ऑफेंसेस का भी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है।
2: लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसलों की कानूनी मान्यता क्या होती है? क्या ये निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी माने जाते हैं?
3: जैसे मैंने अभी आपको बताया, लोक अदालत में जो मामले लगाए जाते हैं उनका निस्तारण समझौते के आधार पर किया जाता है।

0: समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।
1: जी
0: ये पार्टीज पर
1: बिल्कुल
0: बाइंडिंग होता है और इसके विरुद्ध कोई भी अपील योजित नहीं की जा सकती है। यदि कोई मामला लोक अदालत में लगाया गया है और उसमें समझौता ना हो सके तो मामले को न्यायालय में वापस भेज दिया जाता है।
1: क्या वर्तमान समय में डिजिटल या ऑनलाइन लोक अदालतों की व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जा रहा है या नहीं?
0: ई लोक अदालत को पूरे देश भर में स्थापित किया जा रहा है। मैं आपको एक इसका बैकग्राउंड दूंगा। वर्ष 2020 में सबसे पहले ई लोक अदालत मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी। इस समय ये देश के 27 राज्यों में स्थापित की जा चुकी है। अभी तक ई लोक अदालत में 1,34,00,000 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। इसमें लगभग 1,20,00,000 मामले प्री लिटिगेशन के हैं और बाकी मामले न्यायालय में लंबित मामले हैं। ई लोक अदालत का सबसे बड़ा बेनिफिट पक्षकार को ये होता है कि अगर वह कोई दुर्गम क्षेत्र में रह रहा है और जहां लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जहां पे वो रहता है उससे बहुत दूर है, तो वह ऑनलाइन ज्वाइन करके लोक अदालत में अपने मामले का निस्तारण करा सकता है। उसका समय बचता है। अगर वो जो वो अपना काम कर रहा है उसके लिए उसको टाइम मिल जाता है। उसका सारा दिन इस काम के लिए खराब नहीं होता कि उसको लोक अदालत जाके अपने मामले का निस्तारण कराना पड़े।
1: लोक अदालत के बारे में इतना विस्तार से बताने के लिए धन्यवाद।
2: And before we move further, we have an update from Hyderabad Metro. Telangana Minister N. Uttam Kumar Reddy delivered the keynote address at the MSME Spark 3.0 conference in Hyderabad yesterday. He highlighted how the state's aerospace and defense sector is witnessing over 30% annual growth, with exports rising at 103% CAGR between 2024 and 26. More than 1,500 MSMEs are active in the state's defense supply chain, and India has transformed from importing arms to exporting defense equipment to over 100 countries, with exports surging 34 times from 686 crore rupees to 23,622 crore rupees. The minister declared that Hyderabad is co-authoring India's defense story. And moving further, let's talk about this particular day, 9th of May. How is this day special and what all happened on this day? Let's go back and talk about the year 1502, when Christopher Columbus left Spain on his final trip to the New World. And in 1868, the city of Reno, Nevada was founded.
3: 1901 में मेलबर्न में पहली ऑस्ट्रेलियाई संसद का उद्घाटन हुआ था।
2: In 1914, American President Woodrow Wilson issued a presidential proclamation that officially established the first national Mother's Day holiday to celebrate America's mothers. And in 1915, the Battle of Arthur began between France and Germany.
3: और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने विजय दिवस मनाया था।
2: In 1950, French Foreign Minister Robert Schuman presented his historic proposal for an integrated European coal and steel community. This year, the European Union celebrates the 75th anniversary of the Schuman Declaration as Europe Day and the 25th anniversary of the EU's motto United in Diversity.
3: इसके एक दशक बाद यानी कि 1960 में अमेरिका गर्भ निरोधक गोली को वैध बनाने वाला पहला देश बना।
2: In 1971, Jack Klugman and Jean Stapleton won an Emmy Award for All in the Family at the 23rd Emmy Awards.
3: और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं भाऊराव पाटिल को। आज उनकी पुण्यतिथि है। भाऊराव रायात एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। वे महाराष्ट्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक थे। भाऊराव का सिद्धांत था अर्न एंड लर्न, यानी कमाओ और सीखो। अपने इसी सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने कम आय वाले पिछड़ों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे महात्मा ज्योतिबा राव फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज के एक प्रमुख सदस्य भी थे। उनके कार्यों के लिए उन्हें वर्ष 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, आज ही के दिन भारतीय शिक्षाविद कर्मशी जेठा भाई सोमैया ने भी हमें अलविदा कहा था। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है। उन्होंने महाराष्ट्र में कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की। वर्ष 2000 में सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
2: Today is the death anniversary of Lena Horne, an American singer, actress, dancer, and civil rights activist. Her career spanned more than 70 years and covered film, television, and even theater. Before I talk further about her, let's enjoy

0: We're talking about Lena Horne. She announced her retirement in March 1980, but the next year starred in a one-woman show, Lena Horne, The Lady and Her Music, which ran for more than 300 performances on Broadway, and then she toured the country in the show, earning numerous awards and accolades. She continued recording and performing amazingly in the 1990s, withdrawing from the public eye in 2000.
1: आज पुण्यतिथि है तेंजिंग नोर्गे की। उन्हें शेरपा तेंजिंग के नाम से भी जाना जाता है। वे माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही एडमंड हिलेरी के साथ 29 मार्च 1953 को 8,848 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1954 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की दार्जिलिंग में स्थापना की गई और तेंजिंग नोर्गे उसमें निदेशक बने। उनका निकनेम टाइगर ऑफ स्नोज भी रखा गया।
0: And today is the death anniversary of Keith Whiteley, an American country music and bluegrass singer and even songwriter. During his career, he released only 2 albums but charted 12 singles on the Billboard country charts and 7 more after his death. His first top 20 country hit single, Miami, My Amy, was released in 1986. Let's enjoy a track by him titled When You Say Nothing at All.

0: We're talking about Keith Whiteley here. In 1988, his first three singles from his second album, Don't Close Your Eyes, the title song was the one you just heard, When You Say Nothing At All, and also I'm No Stranger to the Rain. And his other famous songs are I'm Over You and It Ain't Nothing. They were released as singles after his death.
1: आज पुण्यतिथि है लोकप्रिय पार्श्व गायक तलत महमूद की। हालांकि उन्होंने फिल्म अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें अभिनय में सफलता नहीं मिली। शुरुआत में तो उन्हें मुंबई में कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बाद में मुंबई में प्रदर्शित फिल्म राखी, अनमोल रतन और आरजू से उनके करियर को विशेष चमक मिली। फिल्म आरजू की गजल ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो ने अपार सफलता हासिल की।

यहीं से तलत और दिलीप कुमार का अनूठा संयोग बना जो कई फिल्मों में दोहराया गया। तलत महमूद ने हिंदी की 13 फिल्मों और 3 बांग्ला फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 17 भारतीय भाषाओं में गाने गाए। मशहूर संगीतकार नौशाद ने भी तलत को फिल्म बाबुल के लिए गाने का मौका दिया। अभिनेता दिलीप कुमार पर फिल्माया गया उनका गाना मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का बहुत सराहा गया है।

0: महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। वे उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वे तिथि धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि राजा प्रताप का जन्म हुआ। वे अकेले ऐसे वीर थे जिन्होंने किसी भी तरह से मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी से संबंधित एक मारवाड़ी में कविता है कि हूँ रजपूतण रो जायो रजपूती करज चुकाऊला ओ शीस पड़े पण पाग नहीं दिल्ली रो मान झुकाऊला जद राणा रो संदेश गयो पीथड़री छाती दूनी ही हिंदवाड़ो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी ही। ये शब्द हैं कन्हैया लाल सेठिया के।
1: And if we talk about Maharana Pratap, the program will end and we need a lot more time. So
0: जी,
1: it's
0: बिल्कुल.
1: endless. Some a lot more important facts about him was he was 7 feet and 5 inches. He used to carry an 80 kilogram spear and two swords weighing around 208 kilograms in total. He would also wear an armor weighing 72 kilograms and he is widely regarded as India's first native freedom fighter. And it was his dream to free Chittor and so he made a pledge that he would eat in a leaf plate and sleep on a bed of straws until he doesn't win Chittor back. Even today some Rajputs place a leaf under their plate and straw under their bed in the honor of the legendary nobody else but Maharana Pratap.
0: Ji bilkul, isi se sambandhit apni kavita mein peetal aur paathal mein Kanhaiya Lal Sethia likhte hain, are ghansri roti jad ban bilawad lole bhagyo नानो रो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो।
1: And our next personality in this list is Mallika Sarabhai. Today is her birthday. An Indian classical dancer, activist and actress from Ahmedabad, Gujarat, India. And she is the daughter of classical dancer Mrinalini Sarabhai and the space scientist Vikram Sarabhai. She is an accomplished Kuchipudi and Bharatnatyam dancer and performer who has specialized in using the arts for a social change and transformation. And through a communications, she has been responsible for the production of 3,000 hours of TV broadcast programming, all of which has been shown through Doordarshan Gujarati, and she has anchored multiple shows on Doordarshan Gujarati.
0: श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपके बेहतर दिन की शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए मुकेश और तन्वी को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
1: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात आ हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ वंडरफुल डे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा।

0: विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। यह युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉ राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
6: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रूपये गंवाए, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सुवेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रियासत नई सरकार की हलफ बर्दारी की तारीखी घड़ी का मुशाहदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। हालिया इख्तिताम पदीर असेंबली इंतखाबात में फैसलाकुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली सरकार बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेगी। हलफ बर्दारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्जज मेहमानों की आमद का इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसर इकदार रियासतों के वज़ीरे आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर आर एन रवि वजीरे आला और नई काबीना के मेम्बरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पार्लियामानी पार्टी के नवमुंतखब लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाति बदरवानी की छानबीन के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आरजी खर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने इस जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाही कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। ये तकरीर 25वें बैशाखी के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, जो रवींद्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। इससे तकरीब की सकाफती और अलामती अहमियत बढ़ जाएगी। पूरे वस्ती कोलकाता में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोग्राम को खुशसूबी के साथ मुनक्किद कराने को यकीनी बनाने के लिए हजारों पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत भारत की सरहदों को महफूज बनाएगी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करेगी। कल कोलकाता में मगरबी बंगाल के 9 मुंतखबा बीजेपी अरकान असेंबली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का मकसद अपनी तंजीम को तौसी देने या इसके नजरियात को जवाब फराहम करने का नहीं है, बल्कि इस जीत का मकसद मुल्क की कौमी सलामती की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आसाम, त्रिपुरा और अब मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमतें सरहद को नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर देंगी।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि बीजेपी हुकूमत में दरअंदाजी और गायों की स्मगलिंग नामुमकिन हो जाएगी। तमिलनाडु में टीवीके सरबराह सी जोसेफ विजय के तहत सरकार की तश्कील के सिलसिले में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नया मोड़ यह आया है कि आईयूएमएल ने हुकूमत की तश्कील के लिए टीवीके को अपनी हिमायत की खबरों से इनकार कर दिया है। एक और वाकये में ये खबरें भी आ रही हैं कि हलफ बर्दारी की तकरीब जो आज मुनाकिद होनी है मुनाकिद नहीं होगी। प्रोफेसर कादिर महीउद्दीन की सरबराही वाली आईयूएमएल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिजागा वेत्री करगम को हिमायतनामा नहीं दिया है।

0: एक और हैरान कन वाक्य यह है कि एएमएमके पार्टी के लीडर टीटीवी दिनाकरन ने गवर्नर से रुजू किया है और इस कामराज की तरफ से हिमायतनामा पेश किया है, जो मन्नार दुई से मुंतखबा वाहिद एमएलए हैं। उन्होंने यह हिदायतनामा एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीस्वामी को वजीर आला बनाने के हक में पेश किया है। एक रिपोर्ट।
1: तमिलनाडु में जहां 85% से ज्यादा वोट डाले गए हैं, अभी तक नई हुकूमत और वजीर आला के तकरूर का इंतजार है। नई हुकूमत की तश्कील में इसलिए ताखीर हो गई है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी टीवीके भरपूर अक्सरियत 118 की तादाद तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है। अलबत्ता वीसीके की तरफ से महज एक और हिमायतनामा मौसूल हुआ है, जिसे एक हतमी कदम माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी के पास दो अरकान असेंबली आ गए हैं, जिसके बाद ये तादाद 118 हो जाएगी। तब तक किसी फैसले का इंतजार रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकामात तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि एक इंतहाई मुअज्जज़ अफसर हैं, जिनकी चार दहाइयों से ज्यादा की शानदार खिदमत हैं। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शिमाली महाजों पर अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की कमांड भी की है। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल तकरीबन चार दहाइयों की शानदार खिदमत हैं। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल, स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफी तजुर्बा है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का कल बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। ये तकरीबात मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही हैं। इन तकरीबात में मुल्क भर के अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: सोमनाथ के मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व पठात्मक अति रुद्र के साथ शुरू हो गया है। आज 3 रोज यज्ञ का भी आगाज होगा, जिसके दौरान सामग्री के तौर पर तकरीबन 1,25,000 अशिया मुकदस आग की नजर की जाएंगी और मौजूदा बैन अल-अक़वामी तनाज़ात के दौरान आलमी अमन और इंसानियत की भलाई के लिए दुआ की जाएगी। ये तकरीबात 11 मई को इख्तिताम पजीर हो जाएंगी, जब मंदिर में अज़ीम-उश्शान तरीके से कुंभाभिषेक का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 11 मंदिरों का पानी नजर किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की तरफ से अमरीका की हिमायत वाली करारदाद के एक मुसवदे को मुस्तरद किए जाने के बाद आबनाए हुरमुस पर तातुल में शिद्दत आ गई है। ईरान ने कहा है कि इस करारदाद में खामियां हैं और इसके पीछे सियासी मकसद कारफरमा है। ईरान ने कहा है कि इस तजवीज से गैर कानूनी इकदामात को कानूनी जवाब हासिल होगा, बजाय इसके कि इससे तनाजे को हल करने में मदद मिले। ईरान ने अक़वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से अपील की है कि वो इस मुजवजा करारदाद की हिमायत न करें। तफसील हमारे नमानिगार से।
2: इस करारदाद को अमरीका के साथ साथ बहरैन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की हिमायत हासिल है और इसमें तवानाई की दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह में जहाजों की आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। अमरीका ने ईरान पर कमर्शियल जहाजरानी के लिए खतरा पैदा करने और बहरी ट्रैफिक को कमजोर करने का इल्जाम आयद किया है। इसी दौरान ईरान की फौज ने कहा है कि अमरीकी फौजों ने मुत्तहिदा अरब इमारात में फुजैरा बंदरगाह के नजदीक ईरान के एक तेल टैंकर और एक और जहाज को निशाना बनाया था, जबकि इत्तला के मुताबिक अमरीका फदाई हमलों में बंदर खमीर, सिरिक और किस्म जजीरे में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। इधर ईरान का फदाई निजाम भी अपने दिफा के लिए सरगर्म है। समंदर में बढ़ती हुई इस महादाराई में इंसानी जानें भी तलफ हुई हैं, लिहाजा दुबई में भारत के मिशन ने एक जहाज में सवार भारतीय हमले के एक अहलकार की हलाकत पर दुख का इजहार किया है और इसे एक अफसोसनाक वाकया करार दिया है। इस सबसे अलग ईरान ने खलीज ओमान में एक टैंकर पकड़ लिया है।

0: कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने को भी तैयार है जो ईरान की नाजायज तजारत की हिमायत करती हो। वह उन गैर मुल्की माली इदारों पर दूसरे दौर की बंदिशें आयद कर सकता है जो ईरान की कोशिशों में मदद दे रहे हैं, जिनमें वो इदारे भी शामिल हैं जो चीन की छोटी आजाद रिफाइनरी से वाबस्ता हैं।
1: गंगाई मगरबी बंगाल, झारखंड और विदर्भ में गरज चमक और 50 किलोमीटर फी घंटा से की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र के खवातीन के AFC एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। भारत ने कल चीन के शहर सुजाऊ में अपने ग्रुप बी के फाइनल में लबनान को 4-0 से हराया। भारत के लिए प्रतिका बर्मन ने 7वीं और 85वें मिनट में और देवी सेंजम ने 36वें और जोया ने 72वें मिनट में गोल किए। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत 2026 के फीफा अंडर 17 खवातीन आलमी कप में अपनी जगह बना लेगा। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में सुवेंदु अधिकारी को लीडर मुंतखब किए जाने के बाद रियासत के उजाला के तौर पर उनके नाम के ऐलान की खबर को शह सुर्खी बनाया है। हलफबरदारी की तकरीब आज दिन में 11 बजे होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा लीडर इसमें शिरकत करेंगे। मुश्तरका कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन कमांडरों से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग में बर्तरी और दुश्मन से आगे रहने के लिए हैरत का उंसुर पैदा करें। इंतखाबी कमीशन ने असेंबली इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इंडेक्स कार्ड और शुमारती आदाद शुमार जारी किए। DRDO ने मकामी ग्लाइड हथियारों के निजाम तारा का कामयाब तजर्बा किया। इन खबरों को रोजनामा प्रताप ने पहले सफे पर जगह दी है। भारत और सिंगापुर इंसदाद दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम पर मुश्तरक वर्किंग ग्रुप के 5वें इजलास में दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम के लिए ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। ब्रिक्स की सदारत के दौरान भारत MSMEs ताउन को फरोग देने की तैयारी में। इन खबरों को रोजनामा हिन्दुस्तान एक्सप्रेस ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
1: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

मई महीने का दूसरा शनिवार, धूप और गर्मी से हम हैं बेजार, पर स्टूडियो का मौसम है सदाबहार, क्योंकि रेट्रो मेलोडीज की पड़ रही है फुहार। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम गोल्ड, 8:40 और 10 सेकंड, यह म्यूजिकल दिल्ली की। मैं हूँ सुनीता।

0: के।
1: जावेद कतर साहब ने लिखा और सोनू निगम अलका याग्निक ने अपनी आवाज से सजाया इस गाने को। और इस सॉन्ग में जिन पंछियों का जिक्र हुआ है, आज का ये दिन उन्हीं के नाम है। सही पहचाना आपने, आज है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। साल 2026 की थीम है एवरी बर्ड काउंट्स योर ऑब्जर्वेशन मैटर। और जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रवासी पक्षी हैं हमें मोटिवेट भी करते हैं, जो इतना लंबा सफर तय करते हैं, थकते हैं, रुकते हैं, पर उड़ना जारी रखते हैं कि जब तक कि ये अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते।

जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माई यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।

0: साहिर लुधियानवी के लिरिक्स और सपन चक्रवर्ती का संगीत, किशोर कुमार आशा भोंसले का ये डुएट फिल्म जमीर से अभी आपने सुना। और इस गाने के साथ ही चलते चलते अब समय हो गया है मेरे चलने का। सैटरडे होगा जो अगला, उसमें फिर सुनीता होगी आपके साथ। फिलहाल वक्त है समाचार का। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते बटोरते रहिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय को सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी

0: कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं लगातार 4थी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में गुरूवार तक लू चल सकती है। मौसम विभाग ने कल तक देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Suvendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal this morning. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata at 10 a.m. Governor R.N. Ravi will administer the oath of office and secrecy to the Chief Minister and members of the new cabinet. The oath-taking ceremony is expected to draw lakhs of party supporters, political leaders and dignitaries from across the country. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, along with several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states will attend the event. The ceremony coincides with the 25th of Baishakh, the birth ceremony of Rabindranath Tagore, giving the event added cultural and symbolic significance. Elaborate security arrangements have been put in place across central Kolkata, with thousands of police personnel deployed to ensure smooth conduct of the programme. Union Home Minister Amit Shah has said that the BJP government in West Bengal will secure India's borders and plug biggest hole in national security. In his address to the newly elected West Bengal BJP MLAs in Kolkata yesterday, Mr. Shah said the BJP's victory is not about the expansion of our organization or validation of ideology. It is about fixing the biggest hole in the country's national security.
2: त्रिपुरा में हमारी सरकार
3: वी नाउ हैव अ गवर्नमेंट इन त्रिपुरा वी हैव अ गवर्नमेंट इन अस

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूं आपके साथ भावना।

हंसाता है, रुलाता है, रेडियो एक दोस्त की तरह गले अपने लगाता है, मीठी सी आवाज से लुभाता है, उदास मन में खुशहाली भर जाता है। रेडियो एक दोस्त की तरह गले अपने लगाता है, ज्ञान की गंगा लाता है, गीत उपहार लाता है। रेडियो एक दोस्त की तरह गले अपने लगाता है। 1936 में इम्पीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, ये हम सब जानते हैं। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो के नाम से मशहूर हो गया और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दरअसल 1936 से 9 साल पहले 1927 में मुंबई और कोलकाता में दो प्राइवेट ट्रांसमीटर से प्रसारण सेवा शुरू हुई थी, जिसे 1930 में सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम दिया। तो कुछ इस तरह शुरुआत हुई थी हमारी प्यारी आकाशवाणी की। 90 साल पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी के और इस उपलक्ष में हम आपको भी अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। आप रेडियो को, हमारी आकाशवाणी को, आपकी आकाशवाणी को कितना जानते हैं? तो आज का हमारा प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस महान साहित्यकार द्वारा दिया गया? प्रश्न एक बार फिर, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस महान साहित्यकार द्वारा दिया गया? आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldeir@gmail.com या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868868753 इस नंबर पर। लेकिन जो भी सही उत्तर आप लिखने वाले हैं उसके साथ अपना नंबर भी लिखिए, क्योंकि हम आपको कॉल भी करेंगे।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

भारत की इस खूबसूरत बगिया में बहुत से गुल खिले जिन्होंने पूरी बगिया को महका दिया। उनमें से कुछ का आज जन्मदिन है, आज जयंती है उनकी, गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी जयंती हर साल 9 मई को मनाई जाती है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था। महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे जिन्हें महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी गुट के प्रमुख नेता थे उस समय, और इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके अलावा आज जन्मदिन और भी हैं। आज जयंती मनाई जाती है महाराणा प्रताप की। हर साल 9 मई को उनका जो जन्मदिन है, जयंती है, मनाई जाती है। राजस्थान के कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था इनका। मेवाड़ी योद्धा और राजपूत शासक की जयंती का प्रतीक है आज का दिन। इस अवसर पर स्वतंत्रता, वीरता और मातृभूमि के प्रति उनके अटूट समर्पण को याद करते हुए जुलूस निकाले जाते हैं, उनको याद किया जाता है। और क्यों ना किया जाए, ये भारत भूमि के सपूत हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है, उनकी भी जयंती है आज। गुरुदेव की उपाधि उन्हें महात्मा गांधी ने दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की भी रचना की। 1913 में उन्हें उनकी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि की लोकप्रियता के कारण इनका अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी और दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया।

गया था नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। स्वामी विवेकानंद के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर दूसरे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। प्रकृति से भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गहरा लगाव था और हमारा आज का प्रश्न जो हमने पूछा था कि ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस महान साहित्यकार द्वारा दिया गया था, उसका सही उत्तर भी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उग्रसेन यादव जी हैं जिन्होंने अपना सही उत्तर हम तक पहुंचाया है। इनका नई दिल्ली इन्होंने लिखकर भेजा है अपना एड्रेस। इसके अलावा नवीन भाटिया जी हैं मोती नगर नई दिल्ली से, इनका संदेश हमें मिला है। कृष्ण कुमार गुप्ता जी हैं और भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता जी का संदेश हम तक पहुंचा है। हम बात करेंगे एक खास कॉलर से जिसको हम चुनेंगे सही उत्तर देने वालों में से, लेकिन थोड़ी देर बाद। उससे पहले ये प्यारा सा गीत आपके लिए यहाँ।

0: सचमुच अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने का मन करता है उन पर जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। आकाशवाणी भी सर्व करती आ रही है, मतलब अपनी सेवाएं प्रदान करती आ रही है 90 साल से। अब 90 साल के उपलक्ष में जो ये हम क्विज प्रोग्राम रख रहे हैं, प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आपको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं इसी श्रृंखला में। जिन्होंने सही उत्तर दिया, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया था, उनको हमने अपने साथ जोड़ा है। नाम है उनका, उन्हीं से पूछते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: नाम, अपना पूरा पता, सब कुछ बता दीजिए सबको।
1: जी मैं नवीन भाटिया बोल रहा हूँ, मोती नगर नई दिल्ली से।
0: जी जी जी, तो भाटिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी,
1: जी थैंक यू।
0: आप आकाशवाणी से मतलब बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, मतलब एक श्रोता के तौर पे, है ना, बहुत सुनते हैं आप
1: आकाशवाणी। तो बचपन से जुड़े हैं, मगर एफएम गोल्ड से 2005 से जुड़े।
0: अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन आकाशवाणी में मतलब ऐसा क्या जादू आपको लगता है जो आपको खींच के रखता है, अपने साथ जोड़े रखता है?
1: सबसे अच्छा तो पुराने गीत, मीनिंगफुल जो होते हैं, इन्फॉर्मेशन, इन्फोटेनमेंट कह सकते हैं।
0: जी जी जी जी, तो आपको मतलब कैसा लगता है जो ये पूरा समय 90 साल गुजर गए हैं, उसमें से आपने जितने भी सालों से सुनना शुरू किया है, आप कह रहे हैं बचपन से सुन रहे हैं आप, तो आपको जो आकाशवाणी के अलग अलग पड़ाव हैं, मतलब जैसे पहले प्रोग्राम्स होते थे, अब जो होते हैं, आपको मतलब कैसे कहते हैं ना, जैसे एक लहर जो है वो ऊपर नीचे होती है, तो एक खूबसूरत आकार बनाती है और देखने में सुंदर लगती है, तो आप कैसे चित्रण करेंगे शब्दों से आकाशवाणी का?
1: ये तो गुड बेटर बेस्ट ही कह सकते हैं।
0: जी जी जी, मतलब गानों के हिसाब से किस तरह से आप कहना चाहेंगे?
1: सबसे अच्छा देखो कि चाहे मैं घर पे होता हूँ चाहे दुकान पे शॉप पे होता हूँ, तो चलता रहता है रेडियो, तो गाने चलते रहते हैं, काम भी होता रहता है।
0: हाँ।
1: उसमें मन भी लगा रहता है।
0: हाँ।
1: कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी जैसे कोई क्विज आ गया या क्वेश्चन आ गया तो उसके फटाफट से जवाब दे दिया। कभी कभी मिस भी हो जाते हैं प्रोग्राम से।
0: कभी कभी हमारा प्रोग्राम चलता है फरमाइशी, तो उसमें भी आप तुरंत से एकदम से मैसेजेस करते हैं सब लोग, सुनने वाले जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है हमको भी जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आपका नाम हम पढ़ते हैं, तो हमें बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा। नहीं लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना, मतलब लोग नाराज भी होते हैं कि हम आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, हम इतने शिद्दत से अपना मैसेज भी भेज रहे हैं, नाम नहीं शामिल हो रहा, मतलब समझते हैं ना आप भी
1: कि इतने सारे। समझ सकते हैं कई बार। एक बार नीति जो है ना आरजे नीति, उन्होंने बोला था कि गागर में समझ सागर में से गागर निकालने के समान इतने मैसेजेस आते हैं, उनको समझना चाहिए हम लिसनर्स को।
0: जी
1: पर ये हमेशा तो मिस नहीं होते हैं, कभी कभी तो शामिल हो ही जाते हैं, गाने भी होते हैं या फिर नाम तो हो ही जाता है शामिल अगर भेजते हैं तो।
0: देखिए कितने सारे चैनल्स हैं आकाशवाणी के, अलग अलग प्रादेशिक भी हैं और क्षेत्रीय भी हैं, बहुत सारे हैं, है ना, तो उसमें एक आपको लगता है ना कि जैसे जैसे किस प्रकार से कहेंगे, जैसे कि एक चित्रकार के चित्र में अलग अलग रंग होते हैं, इसी तरह आकाशवाणी अपने अंदर बहुत सारे चैनल्स के साथ लोगों के लिए अलग अलग तरह की जो सेवाएं वो प्रदान करती है, न्यूज भी है और आपका मतलब कितने सालों से सब कुछ आकाशवाणी सर्व करती आई है, ज्ञान के साथ साथ आपको मनोरंजन भी मिलता है, तो कुछ एक शब्द जो आप कहना चाहें आकाशवाणी के लिए, आपको लगे कि मन से कुछ निकल रहा है?
1: नहीं मैं तो यही कहूंगा कि हमारी पीढ़ियां भी आगे सुनती रही है, तो जी हजारों साल आकाशवाणी कभी बंद ना हो, हमेशा चलता रहे।
0: अच्छा अच्छा जी, हजारों साल, आपने छोटी सी बात में ना बहुत बड़ी बात कह दी। आपकी पसंद का कोई गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: हाँ 60s के चल रहे हैं, तो मुझे एक गाना बड़ा चाहता है, भवरा बड़ा नादान है।
0: हाँ क्या बात है, साहब बीवी और गुलाम।
1: हाँ जी हाँ जी, साहब बीवी और गुलाम का।
0: बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ये तो है वो नया जमाना जहां हर कोई है रेडियो का दीवाना। सुबह सुबह कानों को एक मधुर आवाज देती है सुनाई, ये आकाशवाणी है मेरे भाई। ये मधुर वाणी हम सबको भाती है, हम सबको आकाशवाणी की हर बात खूबसूरत लगती है। हर कोई अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनने की फिराक में रहता है, रेडियो वीक और चाहने वाले अनेक, कोई पुराने फिल्मी गाने, कोई सैनिक भाइयों का कार्यक्रम, पंचतंत्र की कहानियां, कोई समाचार तो कोई क्रिकेट की कमेंट्री बड़े चाव से सुनता है। बदलते जमाने ने, नई नई तकनीकों ने बहुत कुछ बदला, लेकिन रेडियो का चलन वही पुराना का पुराना, अब भी उतना ही नया। आ गया है नया जमाना और रेडियो ने भी सबको अपने साथ मिलकर आगे बढ़ने की है थाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बनने के लिए। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार और 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स लेकर मैं भावना आपके साथ रहूंगी, लेकिन पहले समय समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है।

0: एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारतीय खाद्य आयातक मंच और एसोचैम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मंगलवार को श्री मैकोना वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे और सीआईआई द्वारा आयोजित व्यापार शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब श्री पीयूष गोयल ने 30 जनवरी को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 4 वर्षों में विकसित देशों के साथ 8 मुक्त व्यापार समझौते एफटीए किए हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत की तुलना में काफी अधिक है। ग्रेटर नोएडा में आईसीएआई वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंट्स को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि एफटीए पूरे यूरोप को कवर करते हैं, जिसमें 27 देशों का यूरोपीय संघ और 4 देशों का ईएफटीए शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही चिली के साथ एक एफटीए करने वाला है, जिससे देश के विकास और औद्योगिक जरूरतों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि भारतीय सेना के एक अत्यंत अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वे पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर सुश्री सीतारामन ने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया अध्याय है। इस अवसर पर भारत में संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन भी उपस्थित थे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने कोस्टा रिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कोस्टा रिका के राष्ट्रपति और सरकार को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी और जनसेवा में सफलता की कामना की। श्रीलंका के कंके संथुराई और भारत के नागपट्टिनम के बीच चलने वाली एक यात्री नौका शुक्रवार रात इंजन खराब होने के कारण कई घंटों तक समुद्र में फंसी रही। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नौका दोपहर लगभग 2:30 बजे कंके संथुराई से रवाना हुई थी और उसे लगभग 4 घंटे में नागपट्टिनम पहुंचना था। 144 यात्रियों को ले जा रही ये नौका के इंजन में नागपट्टिनम तट से लगभग 2 समुद्री मील दूर कल्लर के पास खराबी आ गई। भारतीय अधिकारियों और स्थानीय मछुआरों को नौका की सहायता के लिए भेजा गया, जिसके बाद उसे धीरे धीरे बंदरगाह पर वापस लाया गया। अमरीका ने कहा है कि वो भारत सहित दक्षिण और मध्य एशिया के देशों को विश्व स्तरीय तकनीक तक पहुंच देना चाहता है, ताकि वे विरोधी देशों पर निर्भर न रहे। अमरीकी विदेश विभाग की उप सहायक सचिव बेथनी मॉरिसन ने अमरीका भारत एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों फोरम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के तेजी से विकास के साथ स्पष्ट नियम और सुरक्षा जरूरी है। तकनीक का उपयोग खुलेपन, सुरक्षा और आपसी तालमेल के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि एआई क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ रही है और भारत अमेरिका सहयोग से दोनों देशों को वास्तविक फायदे मिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के मध्य चल रहे संघर्ष में अमेरिका ने 10 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाकर ईरान को घेरने की नई कोशिश की है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के साथ संघर्ष के बाद ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है। यहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस वजह से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तीव्र बढ़ोतरी देखी जा रही है। ईरान बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाने की क्षमता रखता है और हर महीने लगभग 10,000 ड्रोन बना सकता है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमरीका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है।

0: ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। यह युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। चर्चा में सीमाओं का निर्धारण, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने तथा लेबनान में सरकार की पूर्ण संप्रभुता बहाल करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। दुनिया में हंता वायरस के 2 नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं, एक स्पेन में और दूसरा दक्षिण अटलांटिक महासागर के दूरस्थ द्वीप ट्रिस्टन दा कुन्हा में। ये मामले एक लग्जरी क्रूज जहाज से शुरू हुए संक्रमण से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब तक इस वायरस से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि आम लोगों के लिए जोखिम कम है और ये वायरस आसानी से नहीं फैलता। संगठन के अनुसार जहाज पर मिले कुछ मामले हंता वायरस के इंडीज स्ट्रेन से जुड़े हैं, जो इस वायरस का एक ऐसा प्रकार है जो इंसानों के बीच फैल सकता है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव अपने अपने व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सिमरनजीत के सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के कोंग चियांग की चुनौती होगी, वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिराट का सामना करेंगे। फुटबॉल में भारत ने कल चीन में लेबनान को 4-0 से हराकर एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। भारत के लिए प्रतिका बम्मन ने 2, अलवा देवी, सिंजाम और जोया ने 1-1 गोल किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना आज से भारत दौरे पर। अमेरिका ने ईरान को हथियार बनाने में सहयोग के आरोप में 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा की। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the World News. The headlines. Chile Foreign Minister Francisco Pere Mackenna to commence visit to India today. US imposes sanctions on 10 individuals and companies for aiding Iran's weapons sector. US President Donald Trump announces 3-day ceasefire between Russia and Ukraine. And in football, India scripts history by qualifying for AFC Under 17 Women's Asian Cup quarterfinals for the first time. Chile's Foreign Minister Francisco Pérez Mackenna will pay a state visit to India beginning today till 15th of this month. Mr. Mackenna will attend a program in Delhi tomorrow. He will also attend business events organized by Forum of Indian Food Importers and ASSOCHAM on Monday. On Tuesday, he will hold talks with Commerce Minister Piyush Goyal and will also attend a business event hosted by CII and the CII Annual Business Summit 2026. On Wednesday, he will hold talks with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. He will then attend a joint meeting with Indian-Chilean business delegation. Minister of State for External Affairs Pabitra Margarita attended the swearing-in ceremony of the newly elected President of Costa Rica. In a social media post, the minister said that he conveyed greetings from the president, the prime minister and the people of the country to the president and government of Costa Rica and wished them every success in serving the people of Costa Rica. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Guyanese Health Minister and discussed the progress of the India-Guyana health ties. Dr. Jaishankar, who is on a three-nation visit to the Caribbean, met Health Minister Dr. Frank Anthony on a stopover at Georgetown in Guyana. Dr. Jaishankar was in Jamaica on the first leg of his tour, then went to Suriname and will be in Trinidad and Tobago for the final leg of his visit. The standoff over the Strait of Hormuz has intensified after Iran rejected a US-backed draft resolution at the United Nations Security Council, calling it flawed and politically motivated. Tehran argued that the proposal will legitimize unlawful actions rather than help resolve the conflict. Iran said the only path towards stability is ending the war, lifting the US maritime blockade on Iranian ports and restoring normal shipping through the Strait of Hormuz. Tehran has also appealed to UN member states not to support the proposed resolution. The draft resolution, backed by the United States along with Bahrain, Saudi Arabia, UAE, Kuwait and Qatar, seeks to protect freedom of navigation in one of the world's most critical energy corridors. Washington has accused Iran of threatening commercial shipping and destabilizing maritime traffic. Now we go over to our West Asia correspondent for updates on escalating maritime conflict in the region.
3: Adding to the human cost of the escalating maritime conflict, India's mission in Dubai expressed grief over the death of an Indian crew member aboard a vessel, describing it as an unfortunate incident at the sea. Separately, Iran seized a tanker in the Gulf of Oman, while Washington said it had disabled two vessels on the same day. The developments highlight the growing volatility of the maritime front in the conflict, with commercial shipping, energy supplies, and the safety of international crew increasingly caught in crossfire between two sides, even as diplomatic efforts continue for a negotiated pause in tensions. This is Vinod Kumar for World News from Dubai.
2: The United States has announced sanctions against 10 individuals and companies, including several in China and Hong Kong, over accusations that they aided Iran's efforts to secure weapons and the raw materials needed to build its Shahed drones and ballistic missiles. We have a report.
4: The U.S. Treasury's last night move comes days before U.S. President Donald Trump plans to travel to China for a meeting with President Xi Jinping and as efforts to end the war with Iran have stalled. In a statement, U.S. Treasury said it remains ready to take economic action against Iran's military industrial base to prevent Tehran from reconstituting its production capacity. Treasury said it is also prepared to act against any foreign company supporting illicit Iranian commerce, including airlines, and could impose secondary sanctions on foreign financial institutions that aid Iran's efforts, including those connected to China's independent teapot oil refineries. Experts say Treasury's actions were aimed at cracking down on Iran's ability to threaten ships operating in the Strait of Hormuz and regional allies. Iran shut the Strait of Hormuz, a narrow choke point between Iran and Oman, through which a fifth of the world's crude oil and liquefied natural gas passes, after the US and Israel attacked a large number of targets in Iran on February 28. Shipping through the crucial waterway has ground to a near halt since the war began, sending energy prices sharply higher. Iran is a major drone manufacturer and has the industrial capacity to produce around 10,000 a month. Ashish Abraham for World News.
2: This is Akashwani. You're listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. US President Donald Trump has announced a three-day ceasefire between Russia and Ukraine, noting that the temporary truce coincides with Russia's Victory Day celebrations commemorating the then Soviet Union's role in World War II. We have more details on this.
5: US President

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपके दिल की बातें हम करते हैं, आपके एसएमएस पढ़ते हैं, आपके संदेश पढ़ते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं और आपके पसंद के गाने सबको सुनवाते हैं। मैं हूं आपके साथ भावना और लीजिए शुरुआत हो चुकी है। राजकुमारी, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुल, अत्विक, समयपुर दिल्ली से इनका संदेश आया है। अतर सिंह जी भी साथ में हैं। इसके अलावा गाड़गी नगर भवतमाल, यवतमाल होगा साहब, गाड़गी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षता लोखंडे हैं हमारे साथ और सब मिलकर गाना सुनना चाहते हैं ये।

गगन पर पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर।

बिराही मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इनका संदेश हमारे पास आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अनिल मोहन है, उषा मोहन है, टिल्लू नायक हैं, ये कैथल हरियाणा से अपना संदेश भेज रहे हैं। साथ ही मधु नायक भी हैं इनके साथ, अपनी फरमाइश भी इन्होंने लिखकर भेजी है। टीडी मल्होत्रा जी हैं, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप हैं, ये सब मोहाली चंडीगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। और कालका चंडीगढ़ से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज हैं, इनका संदेश भी हमें मिला है। सुदर्शन मुखी साहब हैं, अनिता मुखी हैं, सिमरन मुखी हैं इनके साथ में। सोनीपत, शांति नगर सोनीपत से इनका संदेश हमारे पास आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यारा सा संदेश हमें भेजने के लिए। नरेंद्र शर्मा जी हैं, किरण शर्मा है, नितिन और मयंक शर्मा है, ये कलानौर से अपना संदेश हमें भेज रहे। कलानौर कहाँ पे जी? दिल्ली में, बाहर कहीं, यूपी में, कहाँ से? कलानौर आपने लिखा है तो कलानौर कहाँ पे ये भी हमें लिखकर भेजिए, हमें अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है ना। बोधराज खोरवाल जी हैं, उत्तम नगर दिल्ली से इनका संदेश आया है, साथ में गीतिका रानी खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश जी भी हैं। भारत भूषण जी हैं, भारत भूषण जी कहां से हमें संदेश भेज रहे हैं? व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से। भारत भूषण जी के साथ अंजू श्रीवास्तव भी हैं, दिव्येंदु भूषण भी है, संस्कृति भी है और पौरुष भी हैं। इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है कदमा जमशेदपुर से, चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, और ये गाना सुनना चाहते हैं ये।

ये जगह खासी मशहूर है कसौल के आसपास, और कसौल से पुलगा यहां पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। इसे परियों का जंगल भी कहा जाता है। कसौल के पास एकदम शांत एकांत जगह है पुलगा। ऊंचे पहाड़, हरियाली, चाय के बागान, पारंपरिक लकड़ी के घर यहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। पुलगा शांति से भरा हुआ है। यहाँ कुछ ना करना ही सबसे अच्छा काम है। इस जगह की शुद्ध और अद्भुत ऊर्जा में डूबकर मानो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल एकदम एकांत शांत स्वर्ग है यहाँ पर। पुलगा में आप सुबह सुबह गांव की सैर कीजिए, और यहाँ पर भगवान नारायण के मंदिर हैं, उनके दर्शन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भुंतर एक शहर है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में। जो लोग कसौल आते हैं वो भुंतर भी घूमने आते हैं। ये भी बहुत ही सुकून भरा आराम की जगह है। मतलब यहाँ पर अगर आप वीकेंड बिताना चाहते हैं, मतलब अपना सप्ताह बिताना चाहते हैं, जैसे कि आज सैटरडे है, सैटरडे संडे, तो वो एक अच्छा मतलब डिसीजन माना जाता है कि यहाँ पर आएं और सैटरडे संडे आराम से बिताएंगे। भुंतर में ऐतिहासिक स्थल हैं, यहाँ पर मंदिर हैं देखने लायक बहुत ही। और कुल्लू घाटी से भुंतर जो है ना, वो 10 किलोमीटर के करीब दूर होगा। कसौल आने वाले लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर कैंपिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, यहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं उनके अद्भुत दृश्य देखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भुंतर में ढाबे और छोटी छोटी दुकानों में जो खाना मिलता है ना लोगों को, वो बहुत पसंद आता है। इसके अलावा मंदिरों के यहाँ पे दर्शन करना जो है वो लोग पसंद करते हैं। साथ ही साथ जो भी नवविवाहित जुड़े हैं उनके बीच हनीमून पॉइंट भी है ये। मतलब जो नवविवाहित जुड़े हैं वो यहाँ पर अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए आते हैं, अपने जीवन को मुस्कुराहट से भरने के लिए आते हैं।

पर्दा जब आप हटाएंगे कसौल से चालाल गांव के बीच, तो आपको पता चलेगा कि खूबसूरती क्या होती है, प्राकृतिक सौंदर्य क्या होता है। 30 मिनट लगते हैं पैदल पैदल जाने में कसौल से चालाल गांव। बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक सा छोटा सा गांव है ये, लेकिन जो रास्ता हम बता रहे हैं ना वो भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि ये छोटा सा मनमोहक गांव। चालाल में आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस मिलेंगे, मैजिक व्यू कैफेज भी मिलेंगे, भोजनालय भी हैं, कैफेज की भरमार है और बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा। पता है खास चीज क्या है चालाल का? जो मुख्य आकर्षण है वो आस पास के जंगल में होने वाली 3 से 4 दिन तक की पार्टीज होती हैं। यानी यहाँ पर लोग आकर जंगलों में समय व्यतीत करते हैं, 3-4 दिन तक वहां पर एंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। इसीलिए

कसौल की पांडोह झील, नीले रंग की ये झील दुनिया भर के अनगिनत फोटोग्राफर्स के लिए एक खास जगह है। पांडोह बांध झील के अधिकांश जल की आपूर्ति करता है और ये जो मंडी कुल्लू राजमार्ग है वहाँ से इस झील से मतलब जो है ये स्थान होकर गुजरता है। पांडोह बांध के लिए एक बेसिन के रूप में काम करता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य है बिजली उत्पादन और ब्यास नदी का मार्ग बदलना। यहाँ का पानी बहुत साफ है, बहुत निर्मल है, उसमें नीला आकाश ऐसा लगता है कि जैसे उसका प्रतिबिंब नजर आ रहा हो। अद्भुत तस्वीरें लेना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि इतना खूबसूरत नीला पानी है, ऐसा जैसे आसमान जो इसमें दिखाई दे रहा हो, तो ऐसी जगह की फोटोग्राफी जो है वो खास अपने आप हो जाती है। इसलिए यहाँ पर लोग बहुत बहुत एंजॉय करते हैं फोटोग्राफी करना। ये झील जो है नागर किला, ब्यास कुंड, ब्यास नदी, हिडिम्बा देवी मंदिर और मणिकरण गुरुद्वारा जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के निकट है। मतलब ये सारे जितने भी लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं इसके आसपास ही हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव है जाना, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। सेब के बाग, बर्फ से ढके सफेद पहाड़ और चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है जाना। जाना जलप्रपात जो है वो जब गिरता है तो घाटियों से गर्जना करते हुए गिरता है। दूर से आप उसकी जो गर्जना है वो सुन सकते हैं, उसकी साउंड सुन सकते हैं पानी के गिरने की। बहुत ही सुंदर जलप्रपात है ये जाना जलप्रपात। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन इसकी चढ़ाई जो है बेहद रोमांचक और मनमोहक है। और हरे भरे वातावरण के बीच, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ये जो जलप्रपात है, इस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो घने देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच से निकलता है। बहुत ही खूबसूरत है ये जलप्रपात, ये गांव, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत है यहां तक पहुंचने का रास्ता। तो बहुत ही खूबसूरत सा सफर है। बस अब आपको ये तय करना है कि आपको यहां कब आना है।

इसी के साथ अब स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं आपसे मिलूंगी अगले शनिवार। आप बने रहिए आकाशवाणी ARFM गोल्ड के साथ। 12:10 पर घर आंगन प्रोग्राम होगा, लेकिन इससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदिन रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए यह शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान

0: करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Mr. Sovendu Adhikari was sworn in as the first BJP Chief Minister of West Bengal today at a ceremony at Brigade Parade Ground in Kolkata. 5 cabinet ministers also took oath along with the chief minister. The governor, R. N. Ravi, administered the oath of office and secrecy to the ministers. The cabinet ministers are Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Kshudi Ram Tudu.
2: Ami Shubhendu Adhikari, Ishwarer name shapath koritechi je bidhi dara sthapito Bharater Sangbidhaner proti আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh were also present with several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states on the occasion. Earlier, Prime Minister held a roadshow before reaching the brigade ground. Rabindra Jayanti is being celebrated today on Pochisho Boishak, marking the 165th birth anniversary of Rabindranath Tagore. Cultural functions are held globally with major celebrations at Shantiniketan, Vishwabharati University and throughout the West Bengal and Bangladesh, featuring Rabindra Sangeet, poetry, dance and drama. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have offered tributes to Gurudev Rabindranath Tagore on the occasion of Pochisho Boishak. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. IUML, headed by Professor Khader Mohideen, has said that his party has not given a letter of support to Tamil Vetri Kadagam. In another surprise move, AMMK party leader TTV Dinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamraj, the lone MLA elected from Mannargudi, to make AIADMK General Secretary Idappadi Palaniswamy as the Chief Minister. The government has appointed Lieutenant General N.S. Raja Subramanian.

0: घर आंगन। साथियों, आज की बात इस सुविचार के साथ कि कर्म करें फल की इच्छा न रखें। गीता का ये सार श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का अर्जुन से संवाद, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी जीविका जीवन का आधार सिर्फ कर्म करने तक है और उसके परिणाम पर हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है।
1: जी हाँ, नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर और कार्यक्रम है घर आंगन, और साथ ही साथ हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। और मैं हूँ आज आपके साथ प्रतिभा और
0: मनीषा। तो स्वीकारे हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों, अपने कर्तव्य और उसे पूरी निष्ठा से निभाने और परिणाम की चिंता से मुक्त रहने की सीख है निस्वार्थ कर्म, जो मन को शांति देता है और संतुलित भी बनाता है।

0: जी हाँ दोस्तों, गीता के जिस संदेश की हम बात कर रहे थे उसे आज के जीवन में निभाना, उसे अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी हो जाता है, जहाँ प्रतियोगिता है, मानसिक दबाव है और ऐसे में संतुलन ही जीवन की कला है।
1: क्योंकि जब कर्म पूजा बन जाए तो सफलता स्वयं ही प्रसाद हो जाती है।

0: महेंद्र कपूर, मनहर और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी पूरब और पश्चिम।
1: साथियों, सूत्र वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी अधिक से अधिक लोगों का कल्याण और अधिक से अधिक लोगों के सुख का मार्ग प्रशस्त करना, इस ध्येय वाक्य के साथ 90 वर्षों से सतत देश की धड़कन बना हुआ है आकाशवाणी।
0: दोस्तों, 1936 प्रसारण की दुनिया में ये साल भारत के इतिहास में दर्ज आजादी से पहले की वो आवाज है जो आज 140 करोड़ श्रोताओं तक निर्बाध पहुंच रही है।
1: जानते हैं, शुरुआती दिनों में प्रसारण के इस विकास यात्रा को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बीबीसी के लियोनेल फील्डन की सेवाएं ली। वे प्रसारण नियंत्रक के रूप में भारत में 1935 में यहाँ आए
0: और दिल्ली स्थित हमारे इस केंद्रीय रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ 1936 में नए साल के दिन। फिर शुरू हुई रेडियो के विस्तार की योजना और प्रक्रिया।
1: और जानते हैं, इस दौरान तकनीकी विशेषज्ञों में बीबीसी के अभियंता एचएल किर के भारत आए। लियोनेल के साथ जिस योजना को उन्होंने तैयार किया उसे बीबीसी के मुख्य अभियंता सीडब्ल्यू गोइडर के संशोधनों के बाद अपनाया गया। दोस्तों,
0: यानी सन 1936 का वर्ष भारत के प्रसारण इतिहास में बना मील का पत्थर, देश की विश्वसनीयता का परिचायक आकाशवाणी। तब से शुरू ये सफर आज जन जन की आवाज है। जय हिंद, जय भारत।

0: जी हाँ, तेरे सुर और मेरे गीत। इस गीत को आप सुन रहे थे गूंज उठी शहनाई फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे सुर से सुर मिलाने के लिए आपको जुड़ना होगा fmgold@gmail.com पर अपने संदेशों के जरिए। तो बने रहें fmgold 100.1 में घर आंगन के साथ।
1: श्रोताओं, आज हम नमन करते हैं वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप जी को, जिनकी जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के रूप में मनाई जाती है। 1540 में जन्मे महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और आज भी शौर्य और पराक्रम की अविस्मरणीय मिसाल हैं वो।
0: इसी दिन याद करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता कवि, दार्शनिक और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को, जिनकी 165वीं जयंती मनाई जा रही है।
1: बंगाल में जन्मे टैगोर, जिन्हें साहित्य और कला के क्षेत्र में अपार ख्याति प्राप्त है, बंगाल साहित्य में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है।
0: जिनका जन्म बंगाली कैलेंडर के अनुसार दोस्तों हर साल मई माह के शुरुआती दिनों में मनाया जाता है और बंगाली पंचांग के अनुसार टैगोर जी का जन्म बोईशाख महीने की 25 तारीख को माना गया है। इसलिए तिथि के अनुसार इस साल उनकी जयंती 9 मई यानी आज के दिन मनाई जा रही है।
1: और देखो मनीषा, साथ ही आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उदारवादी नेता, समाज सुधारक और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी की भी जयंती है। 9 मई 1866 में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम के इस वीर को भी हम आज नमन करते हैं।
0: तो सुनते रहिए, गुनते रहिए, सीखते रहिए देश की प्रेरणाओं से आगे बढ़ने और बेहतर करने का हुनर FM गोल के साथ।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना सहरा फिल्म से इस गीत को।
1: श्रोताओं, आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है, जो मई महीने के हर दूसरे शनिवार को हर साल मनाया जाता है।
0: और प्रकृति ने न दोस्तों हमें वनस्पतियों के साथ साथ पशु पक्षियों की प्रजातियां भी सौगात के रूप में दी हैं। मानते हैं ना आप इस बात को, क्योंकि ये इतने अनमोल हैं कि हम सभी के आंगन में हमारी नींद खुलने से पहले चहक चहक कर हमें जगाते हैं। तो ये जो विलुप्त होती हुई कुछ पक्षियों की प्रजाति है, उनको संरक्षित करने के लिए ही हम आज का दिन मनाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने मनीषा। देखो, आज का दिन प्रवासी पक्षियों की आबादी को प्रभावित करने वाले कारकों पर डेटा एकत्र करने में जन भागीदारी की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
0: इसमें पक्षियों की गिनती से लेकर सर्वेक्षण और योजनाएं शामिल होती हैं दोस्तों।
1: देखो, ना केवल योजनाएं बल्कि आज के इस अवसर पर जो आज का दिन मनाया जा रहा है, तुम जानती हो कि 100 से अधिक देशों में आज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
0: प्रवासी जो पक्षी होते हैं उनकी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में देखने के लिए एक सुनहरा अवसर देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं दोस्तों, ताकि हम इसके लिए सक्रिय भागीदारी रख सकें।
1: बिल्कुल। और देखो, प्रवासी पक्षियों की सुंदरता और महत्व से प्रेरित रचनात्मक कृतियां भी बनाई जाती हैं।
0: वाह, क्या बात बताई तुमने प्रतिभा। और पक्षियों के लिए जो अनुकूल शहरी नियोजन हो सकता है, जैसे जैव विविधता पर उनके लिए जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इसमें भी शिरकत करने से हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है साथियों।
1: बिल्कुल। और देखो, पार्कों, चिड़ियाघरों और संग्रहालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में, जिनमें सभी उम्र के लोगों के लिए गतिविधियां शामिल होती हैं,
0: उनमें शामिल अगर हम होंगे तो हम अपने आसपास इन पक्षी साथियों को या ये जो प्रवासी पक्षी हैं, इनको संरक्षित करने के रास्ते में, उस दिशा में वो ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरीके की जो भी गतिविधियां हैं उसमें थोड़ा सा समय निकालकर सहभागी जरूर बनिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा। देखो, साथ ही जो प्रवासी पक्षियों के आवासों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन तथा आवासों के नुकसान जैसे खतरों से निपटने के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए आज के दिन बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं,
0: होने भी चाहिए, है ना प्रतिभा। और ये जो पशु पक्षी हैं वो हमारी प्रकृति की धरोहर हैं दोस्तों। इन्हें बचाए रखने में हमें भी अपना योगदान जरूर देना चाहिए, क्या कहते हैं आप?

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना फिल्म अनाड़ी से। श्रोताओं, आज महिलाएं देश की प्रगति में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित भी कर रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने प्रतिभा, क्योंकि महिलाएं सिर्फ घर तक अब सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हर क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित कर चुकी हैं और कर रही हैं। शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और व्यापार, कोई भी क्षेत्र हो, भारतीय महिलाओं ने हर जगह अपना सिक्का अब स्थापित कर लिया है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मनीषा तुमने। कल्पना चावला, पीटी उषा, पीवी सिंधु, किरण मजूमदार शॉ, फाल्गुनी नायर, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, ऐसी महिलाओं के जो हम नाम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी प्रतिभा, सरकार की जो नीतियां हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, समाज के बदलते दृष्टिकोण को जिस तरीके से महिलाओं के लिए नए अवसर के द्वार हमारी सरकार, हमारी जो आसपास की नीतियां हैं, वो जिस तरीके से सुअवसर दे रही हैं, तो ये तो होना ही है। और भारतीय संस्कृति में हमारी जो महिला है वो सदैव से सम्मान के लिए हमेशा जानी जाती हैं और उन्हें वो सम्मान मिला ही है। और वर्तमान में जो हमारी केंद्र सरकार है, उनकी नीतियों से महिलाओं को और भी अधिक सशक्त बनाने की दिशा में और भी नए रास्ते खुल रहे हैं, क्या कहती हो?
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो मनीषा। तुम देखो, सशक्त नारी सशक्त भारत एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है इस दिशा में। और इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को राजनीति और निर्णय लेने में समान भागीदारी देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।
1: बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगी साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और लखपति दीदी योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार और ऋण सुविधा देकर और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है।
0: बिल्कुल ठीक। और देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
1: हाँ, साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत आज परिवार में स्वच्छ ईंधन पहुंचाकर महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिला कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।
0: देखो मनीषा, सशक्त महिला जो होती है वो घर की नींव और राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। यह पहल केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये अभियान महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सबल बनाकर विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

0: लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी पड़ोसन।
1: और श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर आपके अपने घर आंगन कार्यक्रम में। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये जानने के लिए हम भी उत्सुक हैं। तो fmgoldga@gmail.com पर आपके संदेशों की प्रतीक्षा है हमें। लेकिन इसी के साथ हम बताना चाहते हैं कि कुछ हमारे श्रोता साथी हैं जिन्होंने इस प्रतीक्षा को हमारी खत्म कर दिया है, और वो हैं हमारे नियमित श्रोता साथी, हमारे साथ नवीन भाटिया जी, मोती नगर, नई दिल्ली।

0: लता मंगेशकर के सुरील सी आवाज में आप सुन रहे थे अनामिका फिल्म से ये गीत।
1: मनीषा देखो, अनुशासन सफल जीवन की पहली सीढ़ी होता है। जीवन में अगर व्यक्ति अनुशासित है ना, तो वो सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति जीवन के हर पड़ाव पर सजग और सचेत रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है, चाहे वो शिक्षा हो या करियर हो या रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा उठना बैठना ही क्यों ना हो, सब कुछ अनुशासित होने से अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, और देखो अनुशासन फिटनेस का आधार भी है। फिटनेस का मतलब केवल जिम जाना नहीं, बल्कि एक अनुशासित जीवन शैली है, क्योंकि अनुशासन वो ताकत है जो प्रेरणा के खत्म होने के बाद भी आपको कसरत और सही खान पान जारी रखने में मदद करता है।

0: बिल्कुल सही कहा। फिटनेस केवल एक अस्थायी लक्ष्य नहीं है साथियों, ये हमारे श्रोता साथी भी जानते होंगे, बल्कि एक जीवन शैली है ना, जिसे बनाए रखने के लिए अनुशासित होना हम सभी का बहुत जरूरी है।
1: तो वही मनीषा, क्यों ना आज बात करें कि अनुशासन फिटनेस के लिए क्यों और कैसे जरूरी है।
0: बिल्कुल, और मैं बताना चाहूंगी अपने दोस्तों को, उन्हें वैसे पता ही होगा कि अनुशासन का जो मूल मंत्र है वो है निरंतरता, यानी कि कंसिस्टेंसी। यानी जब व्यायाम करने का मन ना हो तब भी हमें कसरत करना चाहिए, यही हमारी नियमितता है और यही हमें अच्छा फल देती है।
1: देखो, फिटनेस में निरंतरता ही वो कुंजी है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जैसे तुमने अभी निरंतरता की बात की है ना, और अनुशासित रहने से आप कठिन दिनों में भी अपनी दिनचर्या बनाए रखते हैं, जिससे प्रगति बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथियों, अनुशासित होने से जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारी स्वास्थ्य वर्धक जो आदतें हैं वो और अच्छी होती हैं। जैसे हम सुबह अगर उठते हैं तो एक नियमित समय में उठें, जल्दी उठें, पौष्टिक भोजन ही करें, और अपनी जीवन शैली का इन सभी चीजों को अगर हम हिस्सा बनाते हैं तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है।
1: बिल्कुल, और देखो, नियमित अनुशासन से सहन शक्ति, ताकत और लचीलापन भी बढ़ता है।
0: लगातार व्यायाम करने से तनाव का स्तर कम होता है दोस्तों, और मानसिक रूप से भी हमें बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, खुद पर नियंत्रण रखने की क्षमता भी आती जाती है, जिससे आप बिना किसी बाहरी दबाव के अपने लक्ष्य की तरफ, फोकस की तरफ लगातार बने रह सकते हैं।
1: तो भाई, क्यों ना अब बात की जाए कि अनुशासित जीवन शैली को हम कैसे अपना सकते हैं। तो भाई, करना आपको ये है कि शुरुआत जो हो वो आपकी छोटी हो, यानी कि छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें ताकि आप लंबे समय तक उसे अपना सकें।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा तुमने। और फिटनेस के साथ अगर हम अनुशासित रहने का एक ठोस कारण खोजें, जैसे कि हमें रोज सुबह 6 बजे उठना है और हम उसका नियमित पालन करें, तो ये एक अच्छी आदत हमारे व्यवहार में शामिल हो जाएगी।
1: बिल्कुल, और देखो, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले अधिकांश लोग सुबह के समय को ही प्राथमिकता देते हैं, तो भाई सुबह तो फिर जल्दी उठना लाजमी है ना।
0: और सबसे जरूरी है दोस्तों कि अपनी फिटनेस यात्रा के परिणामों पर, यानी कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, इस पर हम नजर रखें और अपने अनुशासन को टूटने ना दें।
1: बिल्कुल, और देखो, अनुशासित व्यक्ति अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से और तेजी से प्राप्त कर सकता है, और ये आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक ऊर्जावान बनाता है, जिससे आप दैनिक जीवन के कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं।
0: और अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि फिटनेस में अनुशासन कोई सजा नहीं है दोस्तों, बल्कि स्वयं के प्रति गहरा प्यार, गहरा सम्मान है, अगर हम ये कर पाते हैं तो। और ये वो ऊर्जा है जो हमें ऐसी शक्ति से जोड़ता है जहां हम अपनी फिटनेस यात्रा को, अपनी प्रेरणा को कम ना होने देते हुए इसे आगे बढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ अपनी जिंदगी में अपनी खुशी के लक्ष्यों को पाते जाते हैं।

0: यशु दास की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी चितचोर।
1: और साथियों, घूमने का शौक तो अमूमन आप सभी को होगा, हमें भी है, और ऐसे में जो वीकेंड्स होता है उसमें लॉन्ग ड्राइव या आसपास की जगहों में घूमना हमारी जो महानगरीय जीवन संस्कृति है उसमें सुकून की सांस लेने जैसा है, क्या कहते हैं आप?
0: बिल्कुल। और देखो, अगर आप दिल्ली या एनसीआर के निवासी हैं तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की खूबियों से भी आप वाकिफ होंगे, यदि नहीं तो ये जानकारी हो सकती है आपके बड़े काम की।
1: रफ्तार, तकनीक और प्रकृति को जोड़ने वाला ये मार्ग करीब 213 किलोमीटर लंबा है। इस आधुनिक एक्सप्रेसवे में यात्रा के लिए जहां 6 से 6.5 घंटे का समय लगता था, वो अब मॉडर्न वे की वजह से लगभग आधा ही रह गया है। दोस्तों,
0: 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे देश के सबसे आधुनिक हाईवे में से एक है, जहां हल्की गाड़ियों के लिए अधिकतम गति सीमा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड का आनंद तो है ही, पर लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि रेस ना लगाएं बिल्कुल भी।
1: और हाँ, ये एक्सप्रेसवे यानी कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे गुजरता है एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर राजाजी नेशनल पार्क से, इसलिए जब आप यहां से गुजरें तो इस फॉरेस्ट जोन में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु धीमी गति और अनुशासन का ध्यान बेहद जरूरी है। दोस्तों,
0: बिल्कुल। और देखिए, सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, मोबाइल से दूरी बनाकर रखें, और अगर आप ये सब ध्यान रखते हैं तो इस ड्राइव में आपको थकान बिल्कुल नहीं होगी।
1: और ध्यान रहे, ड्राइव स्मार्ट, ड्राइव सेफ, क्योंकि शान की सवारी तभी जब हो वो पूरी तरह से सुरक्षित।

साथियों, ये आखिरी गीत आपके लिए है मेरे जीवन साथी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। और इस गीत के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं यहीं घर आंगन कार्यक्रम में। आज सफर बस यहीं तक। मनीषा और दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: लगी
1: आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए यह शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरूआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की।

होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हो चला है 1:10:57 आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर और कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल। मैं संगीता हूं आज आप सभी के साथ, आप सभी को हमारा नमस्कार। दोस्तों आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद रफी, किशोर कुमार या मुकेश जैसा गा सकते हैं या उनके जैसा गाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत मुश्किल से मिलेगा जो अपनी आवाज में तलत महमूद जैसी नजाकत और मधुरता पैदा कर सके। 24 फरवरी 1924 को जन्म हुआ था लखनऊ में तलत महमूद का। लखनऊ के अदब और तहजीब को उन्होंने आत्मसात कर लिया। वो जितना मीठा गाते थे उतना ही मीठा बोलते भी थे। स्टाइलिश कपड़े पहनने का शौक था, दुनिया घूमने का शौक था। तो बस आज बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ, आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करेंगे, उनकी खूबसूरत गीत सुनेंगे, क्योंकि कलाकार कहीं जाते थोड़ी हैं, वो तो हमारे यहां रह जाते हैं, हमारे दिलों में बसे रहते हैं। तो बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ। और किस गाने से शुरुआत करें कार्यक्रम की? मेरे ख्याल से सुजाता फिल्म का ये गीत बहुत कमाल का रहेगा।

तलत महमूद, एक आवाज जो सुकून है, एक आवाज जो राहत है, एक आवाज जो इत्मीनान है, जिसे सुनो तो ऐसे लगता है कि कुछ अलग से मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तलत महमूद को सुनना ही अपने आप में एक साधना है, एक मेडिटेशन है। तलत महमूद ने संगीत की पढ़ाई लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में की, जिसे पहले मॉरिस कॉलेज कहा जाता था। तलत वहां की प्रवेश की जो लिखित परीक्षा होती है उसमें कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन जब उनकी स्वर परीक्षा हुई तो परीक्षक उनका आलाप सुनकर एकदम हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए और बिना कोई सवाल पूछे तलत महमूद का दाखिला कर लिया। एक मजेदार बात बताएं आपको, फिल्म शिकस्त का वो एक गीत है, सपनों की सुहानी दुनिया को आंखों में बसाना मुश्किल है। आपको बताएं, इस गीत के पहले 50 सेकंड में तलत महमूद ने जो आलाप लिया है ना, ये वही आलाप है जिसे प्रवेश परीक्षा के समय उन्होंने गाया था। तो चलिए हम आपको वही गीत सुनाते फिल्म शिकस्त से, और ये आलाप सुनिए तो सही।

और अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको बता देते हैं कि ये है आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। याद कर रहे हैं हम तलत महमूद को, कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल। और चौथा दशक शुरू होते होते तलत महमूद जो है वो ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन से गाने लगे थे। 1941 में वो कलकत्ता चले गए जहां एक म्यूजिक कंपनी ने उनके साथ 30 रुपए प्रति गाने पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कलकत्ता में उनका गाया और फयाज हाशमी का लिखा गाना तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी पूरे भारत में मशहूर हो गया।

छाया फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनाया और तलत महमूद को हम याद कर रहे हैं। 1949 में वो अपनी तकदीर आजमाने बंबई पहुंचे। तलत की प्रसिद्धि उनके वहां पहुंचने से पहले ही पहुंच चुकी थी। अनिल बिस्वास ने उन्हें पहला ब्रेक दिया और उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म आरजू के लिए गीत गाया। ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो।

अपने करियर के शुरुआती दौर में तलत महमूद की आवाज में जो कंपन था उसकी वजह से कई बार उन्हें रिजेक्ट किया गया। ये अलग बात है कि यही कंपन और यही लर्जिश आगे चलकर उनके गाने की यूएसपी बन गई। वो जिस तरह से गाते थे उसी तरह से बोलते थे, उनको सुनने के लिए उनके नजदीक आना पड़ता था। तलत महमूद को उर्दू शायरी की बहुत समझ थी, इसलिए वो उन गीतों को गाने के लिए चुनते थे जो श्रोताओं के दिल के बहुत नजदीक थे। उनकी आवाज में मोहम्मद रफी जैसी रेंज नहीं थी, उनकी आवाज में हेमंत कुमार जैसी टोन भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद एक सीमित दायरे में गाते हुए वो संगीत प्रेमियों के दिल में घर करते थे।

आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं तलत महमूद को। मन्ना डे ने अपनी आत्मकथा मेमोरीज कम अलाइफ में लिखा है कि एक बार हुआ यूं कि मदन मोहन ने बम्बई आई मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर के सम्मान में रात्रि भोज दिया, जिसमें बम्बई की हर बड़ी संगीत से जुड़ी हस्ती को बुलाया गया। जैसे कि उम्मीद थी, भोज से पहले संगीत की एक महफिल हुई और सबसे पहले तलत महमूद से माइक के सामने आने के लिए कहा गया। जैसे ही उनकी पहली गजल खत्म हुई, इतनी तालियां बजी कि मेरे और मोहम्मद रफी के बीचों बीच बैठे हुए किशोर कुमार ने हम दोनों से फुसफुसाकर कहा, चलिए हम दोनों चुपके से भाग चलें। तलत के फैलाए जादू के बाद अब हम लोगों को भला कौन सुनेगा। तो ये था उनका जादू। फुटपाथ फिल्म से जो हम आपको गजल सुनाने जा रहे हैं, तलत महमूद की आवाज में कमाल की गजल है ये, और मुझे बहुत पसंद है ये।

दोस्तों 1964 में एक फिल्म आई थी जहां आरा। इस फिल्म के समय एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। संगीतकार मदन मोहन इसके गाने तलत महमूद से गवाना चाहते थे। प्रोड्यूसर चाहता था कि रफी साहब गाएं, मदन मोहन जिद पर अड़े रहे। जब मामला बनता नहीं नजर आया तो मदन मोहन ने अपने पास से पैसे खर्च किए, लेकिन ये गाने तलत महमूद से ही गवाए। रफी साहब हालांकि इस बात से थोड़े नाखुश रहे, लेकिन इस फिल्म में गाने तलत महमूद ने गाए और सारे ही गाने सुपरहिट रहे। चाहे फिर वही शाम हो, या फिर तेरी आंखों के आंसू पी जाऊं, या मैं तेरी नजर का सुरूर हूं, सारे गाने एक से बढ़कर एक। लेकिन फिलहाल जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये एकदम अलग तरह की फिल्म, कमाल की फिल्म और कमाल के गीत। भोजपुरी फिल्म है क्योंकि उन्होंने न केवल हिंदी फिल्मों में गीत गाए बल्कि भोजपुरी फिल्मों में भी गीत गाए। और एक जो फिल्म है लागी नहीं छूटे रामा, इसका गीत हम आपको सुनाएंगे। तलत साहब की आवाज है और उनका साथ दिया है लता दी ने। सुनिए तो सही इस गीत को।

जी हाँ, अमवा के मुजरा से रस चुएला, मतलब रस क्या, आपकी आवाज, तलत साहब की आवाज और लता दी की आवाज, क्या खूबसूरत गीत है। और कमाल के गीत होते थे ना उस समय, संगीतकार कितनी मेहनत करते थे इन गीतों पर, सच में इसीलिए तो इतने सालों बाद भी ये गीत हमारे दिलों में बसे हुए हैं। हिंदी फिल्मों में शामिल गजलों का जब भी अलग से जिक्र किया जाएगा, तलत महमूद का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। जगजीत सिंह हो या पंकज उधास, ये तलत महमूद को अपना आदर्श मानते आए। यहां तक कि पाकिस्तानी सिंगर सज्जाद अली भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तलत महमूद पहले ऐसे भारतीय गायक हैं जिनका विदेश में कॉन्सर्ट हुआ। ये सिलसिला अमेरिका, ब्रिटेन, ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसे मुल्कों तक फैला। वो दूसरे भारतीय गायक थे जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में गाना गाया था। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भी गाना गाया था। ऐसा था उनका जादू। चलिए हम आपको एक और कमाल का गीत सुनाते हैं। फिल्म है हमारा संसार और इस बार तलत महमूद के साथ दिया है सुमन कल्याणपुर ने।

था कार्यक्रम तलत महमूद पर। उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम जो है वो पसंद आया होगा। एक लालच रह जाता है, वो ये कि इतने सारे खूबसूरत गीत उन्होंने गाए हैं और हमारे समय की सीमा है, इस सीमा में ही हम कार्यक्रम कर सकते हैं। तो बहुत लिस्ट तो मैंने बहुत लंबी बनाई थी और कोशिश यही की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने आपको सुनवा सके, लेकिन समय के अनुसार हम उतने गाने तो नहीं सुनवा सके। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिला तो हम ज़रूर कुछ कोशिश और करेंगे, कुछ अलग तरह के और गाने आपको सुनवा सके तलत महमूद की आवाज़ में। फिलहाल वक्त हो चला है इजाज़त लेने का, तो संगीता को इजाज़त दीजिए। हाँ, आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आपसे कहना यह है कि आप बने रहिए AIR FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ, क्योंकि कार्यक्रमों का सिलसिला तो जनाब यहां पर चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। फिलहाल जो वक्त है वो कह रहा है कि उर्दू समाचारों का वक्त हो चला है, तो अभी से थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार और हम आपसे फिर जल्दी ही मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सुविंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी वधरा के साथ हलफ लिया। तमिलनाडु में सरकार बनाने पर सियासी तातुल बरकरार है। टीवी के पार्टी को अक्सरियत मिलना बाकी है। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बासानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने बाहमी ताउन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम से मुलाकात की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अब खबरें तफसील से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुविंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। उनके साथ 5 दूसरे काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इन वजीरों के नाम हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तानिया, निशित परमानिक और सुधीराम टूडू।
1: आमी सुविंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
0: वजीर आजम ने मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कई मरकजी वजीरों और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वज़रा आला ने हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले वजीर आजम ने एक रोड शो भी किया। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के लिए दरकार अक्सरियत की हिमायत में कमी की वजह से नई सरकार बनाने में दाखिल हो रही है। सीपीआईएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी बेबी ने कहा है कि यह गवर्नर का फर्ज है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मदद करे। चेन्नई में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने गवर्नर पर इल्जाम लगाया कि वो दिल्ली के इशारों पर ताखीर के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जमहूरी अमल में ताखीर करके बीजेपी रियासत में एआईएडीएमके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान एएमएमके सरबराह टीटीवी धीनाकरन ने मांग की है कि उनकी पार्टी के एमएलए की तरफ से हिमायत का फर्जी खत टीवीके को दिए जाने के मामले पर गवर्नर को कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ एआईएडीएमके के अरकान असेंबली पुदुचेरी से चेन्नई पहुंच गए हैं, जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी ई पलानीसामी से गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम ने मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। दिन में लगभग 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने की तकरीब में शामिल होंगे और आर्ट ऑफ लिविंग बैन अक्वामी मरकज में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम प्रोग्राम के दौरान वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे।

0: इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 3 बजे हैदराबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे, जिनकी मालियत 9,400 करोड़ रूपये बताई जाती है। सोमनाथ मंदिर की असर नौ तामीर के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 मनाया जा रहा है। इस 5 रोजा तकरीब के दौरान मंदिर की तारीखी अहमियत को उजागर किया जाएगा। इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी NLSA आज पूरे मुल्क में दूसरी कौमी लोक अदालत 2026 का इनेकाद कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए NLSA के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने बताया कि शमूलियत और आवाम पर मरकूज तरीकों के जरिए तनाजात के बआसानी निपटारे और अदालतों पर बोझ को कम करना इस इकदाम का मकसद है। उन्होंने बताया कि मुसालहत के काबिल फौजदारी मामलात, बैंकों के चेक वापस होने के मामलात और बैंक की रकम वसूल करने के तनाजात समेत इस लोक अदालत में बड़े पैमाने पर तनाजात निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 2023 और 2025 के दरमियान 12 कौमी लोक अदालतों का इनेकाद किया गया, जिसमें 26 करोड़ मामलात का निपटारा किया गया।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के दरमियान रिवायती रिश्तों की तारीफ की। अपने दौरे के दौरान डॉ जयशंकर ने खारजी मामलात और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के कैरीकॉम मामलात की वजारत में परचम कुशाई के मौके पर खिताब किया। वजीर मौसूफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सकाफती रवाबित और तारीखी रिश्तों का जिक्र किया। डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान कपड़ों, खेलों और रिवायतों में यकसानियत पाई जाती है। डॉ जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसा से मुलाकात की और बाहमी ताउन को मजीद मजबूत करने के इकदाम के बारे में तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुरमानी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुरमानी ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम देंगे। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामी नाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामी नाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल की तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमत हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के 165वें यौम पैदाइश पर आज पोचीशे बोईशाख के मौके पर रविन्द्र जयंती मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है।

खास प्रोग्राम शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी समेत पूरे मगरबी बंगाल और बांग्लादेश में मुनाकिद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों में रविन्द्र संगीत, शायरी, रक्स और ड्रामे का इनेकाद किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम मोदी ने पोचीशे बोईशाख के मौके पर गुरूदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को खिराज अकीदत पेश किया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई और अटल पेंशन योजना को पूरे मुल्क के शहरियों की खिदमत में 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। खजाने की वजारत ने बताया कि सभी शहरियों, खासतौर से समाज के कमजोर तबकों को इक्तिसादी सहूलत देने के लिए इन स्कीमों का आगाज किया गया था। इन स्कीमों के बारे में बात करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी जन सुरक्षा स्कीमों का आगाज किया था ताकि कम कीमत पर इंश्योरेंस और पेंशन के फायदे हासिल किए जा सकें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काले धन को जायज बनाने के एक मामले में दिल्ली, गुरुग्राम

और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। काले धन को जायज बनाने के इस मामले में हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड और इसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा शामिल हैं। दो रोजा बहरहिंद मुजाकरात IOD 10 कल नई दिल्ली में खत्म पजीर हुए। तब्दील होती दुनिया में बहरहिंद का खिता इन मुजाकरात की थीम थी। IPL क्रिकेट में आज शाम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुविंदु अधिकारी मगरी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी वजरा के साथ हलफ लिया। तमिलनाडु में सरकार बनाने पर सियासी तातुल बरकरार है। TV के पार्टी को अक्सरियत मिलना बाकी है। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बासानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने बाहमी ताउन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम से मुलाकात की। और IPL क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Royals will face Gujarat Titans in Jaipur. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at Delhi last night. Chasing the victory target of 143 runs, Kolkata Knight Riders made 147 for the loss of 2 wickets in 14.2 overs. Finn Allen delivered a jaw-dropping batting masterclass to power Kolkata Knight Riders to a commanding 8-wicket victory over Delhi Capitals. Two new suspected cases of hantavirus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts raced to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Shubhendu Adhikari becomes the first BJP Chief Minister of West Bengal, takes oath along with 5 cabinet ministers. Political stalemate continues for government formation in Tamil Nadu as TVK yet to reach the majority mark. National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने. उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली. तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी. टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की. और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा. अब समाचार विस्तार से. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं. राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है. भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. एक रिपोर्ट.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया.
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण कर भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब.
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली. आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया. प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए. मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे. इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया. प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है. प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना

0: चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक

0: वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन, किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
3: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए

0: कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। एक और नई कड़ी लेकर, नई जानकारियां लेकर, नई बातें लेकर हाजिर हैं आपके पास। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद और आज मेरे साथ हैं
2: कोमल।
1: जी हाँ कोमल, आज बात जो है खेती बाड़ी की तो होती है, क्यों ना सोने चांदी की बात की जाए, हम सोना उगाने की क्यों ना बात करें आज।
2: बिल्कुल, सोना तो जरूरी है और अगर हम अपने सुनने वालों को बोलें कि सोना, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे।
1: नहीं लेकिन सोने की खेती तो हो सकती है, तो हाँ बस उसका रंग जो है सुनहरा ना होगा, सफेद होगा, लेकिन सोने की खेती जरूर होगी।
2: जी बिल्कुल, एक ऐसी फसल जो नकदी फसल है और उसका नाम है कपास।
1: जी हाँ, जिसे व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं और हमारे जो किसान मित्र हैं जो उससे एक नकदी फसल जैसा आपने कहा होती है और बहुत अच्छा उसमें मुनाफा कमा सकते हैं और बहुत सारे उसके जो फायदे हैं है ना उसको भी वो ले सकते हैं। लेकिन इस जो सफेद जो सोने की हम बात कर रहे हैं कपास की, उसकी खेती कैसे बेहतर की जा सकती है, इसी का हम अपने कार्यक्रम में जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे।
2: बिल्कुल, सफेद रुई से लहलहाते खेत जब हवा में झूमते हैं ना, तो मानो धरती ने सफेद चादर ओढ़ ली हो और यही कारण है कि कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है अरविंद। और ये जो हमारा आज का कार्यक्रम है, इसमें हम आज जानेंगे कि कपास की खेती से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी किस तरह की जो हो सकती है वो किसानों को लाभकारी सिद्ध हो, कौन सी किस्में हैं जो बेहतर है, बुवाई का सही समय क्या है और उर्वरक आपको खेत में कब और कितना डालना है जिससे कि आपका उत्पादन और मुनाफा जो है वो ज्यादा हो जाए।
1: जी हाँ, तो हमारा जो विषय है कपास की उन्नतशील किस्में, बुवाई और उर्वरक प्रबंधन, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रमनजीत कौर। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका।
3: थैंक यू। किसान भाइयों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
2: जी, आमतौर पर जब हम ये देखते हैं कि जो कपास है वो भारत में बहुत सारी जगहों पर होता है, तो वो कहाँ पर कैसे होता है, कितना होता है, किस तरह की आपको फसलें लगानी चाहिए, किस तरह के बीज आपको बोने चाहिए, आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर साहिबा आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो श्रोताओं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है कपास की खेती से लेकर के, उसकी उन्नतशील किस्मों से लेकर के, उसकी बुवाई अगर आप करना चाहते हैं या कर ली है और उसमें उर्वरक प्रबंधन आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आप सभी के लिए खुल चुके हैं।
1: जी, और हमारा फोन नंबर है 2342-1083, यानी कि 234

0: 2108 3।
1: जी तो अरविंद, अभी तुमने कहा कि आज हम खेती करेंगे, सोने की खेती करेंगे, सफेद सोने की खेती करेंगे, और हम सभी जानते हैं कि कपास को सफेद सोना तो कहा जाता है, लेकिन वो सफेद सोना कहा क्यों जाता है? मैम, हम चाहेंगे कि आप जो है ना इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करें, ताकि जो हमारे ऐसे किसान हैं जो कपास की खेती करना चाहते हैं या जिन्हें करनी चाहिए, वो इसकी तरफ थोड़े से और प्रेरित हो जाएं।
2: हाँ, धन्यवाद कोमल जी। जैसे हम बात कर रहे हैं कपास की, कपास का को व्हाइट गोल्ड या सफेद सोना कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आप अगर खेत में जाओगे, जब इसके फ्लावर के बाद फ्रूट बनते हैं, स्केयर बनते हैं, तो आप खेत में देखोगे व्हाइट व्हाइट, वो कॉटन एंड लग रहा है कि आपको स्नोफॉल जैसे हो रही है ना, ऐसी फीलिंग आएगी। तो ऐसा लगता है कि वो धरती पे पूरा जैसे स्नो आ गई है, तो इसलिए इसका नाम है स्नो व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। और दूसरा है कि इसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी व्हाइट व्हाइट प्योर शुद्धता होती है, और दूसरा ये कैश क्रॉप है
1: जी,
2: तो इसीलिए इसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। किसान जो है अच्छी तरह अगर अच्छी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस से इसका इसकी करते हैं, देख रेख करते हैं, सभी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, तो वो इससे अच्छी आमदनी और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और वैसे भी जब कोई फसल जो है वो किसान की मेहनत से सीधे मुनाफे में बदल जाए, हाँ, तो उसे खास तो कहना बन रही है। तो अभी जैसे कि मई का महीना शुरू हो चुका है, और हम बात करें उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, तो कहां पर इसकी फसल जो है वो बुवाई हो चुकी है या हो सकती है, किस क्षेत्र में इसका अभी क्या स्टेटस है, किस तरीके का इसमें अभी वो चल रहा है कि इसकी फसल की शुरुआत हो चुकी है या करनी है?
2: हाँ, जैसे हमें पता है कि भारत में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर और वर्षा वगैरह होती है, तो अगर नॉर्थ से शुरू करते हैं हम, तो नॉर्थ में अप्रैल से लेकर मई तक पूरा महीना है इसकी बिजाई हम कभी भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम सेंटर में जाएंगे, तो जैसे कि एमपी की बात कर लो, मध्य प्रदेश की, या महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर जो किसान भाई हैं मई तक इसकी बुआई को पूरा कर सकते हैं। और इसके अगर साउथ में जाते हैं, तो जहां रेनफेड वाले जो स्टेट्स हैं उसमें वो किसान भाई वेट करते हैं कि कब मानसून आए, पहला शावर उसका आए, तो फिर उसको, क्योंकि पानी इसको बहुत जरूरी चाहिए, इसका जो बीज होता है थोड़ा सा बड़ा होता है और हार्ड होता है सीड कोट इसका, तो वो एक मॉइस्चर जो ऊपर से आएगा, रेन जो नेचुरल रेनफॉल होएगी उसकी वेट करते हैं कि जैसे ही वो शावर आएगा, फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मानसून जैसे ही होता है, तभी उसको खेत को अच्छी तरह तैयार करके वो बिजाई इसकी कर सकते हैं।
0: जी, आपने खेत की तैयारी की बात की, तो मैं जानना चाहूंगा मिट्टी इसके लिए कौन सी उपयुक्त है, और खेत की जब तैयारी की जाएगी बुआई से पहले तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए किसानों को?
2: हाँ, इसका क्योंकि अच्छी क्रॉप है, अच्छी फसल है, अच्छा मुनाफा देती है, तो हम सिफारिश करते हैं कि जो हैवी सॉइल्स होती हैं, भारी वाली जो मिट्टी, काली मिट्टी होती है जैसे दोरमट वाली बोलते हैं, वो इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। पर जिनके किसानों के पास मीडियम टू हैवी सॉइल्स है, वो भी इसकी खेती अच्छे से कर सकते हैं। बाकी बात करें अगर के अपने उर्वरकों की बात करी,
1: हमने मिट्टी की बात की,
2: मिट्टी की
1: उर्वरकों की बात की,
0: खेत की तैयारी के,
2: हाँ, खेत की तैयारी में
0: जी,
2: ओके ओके। हाँ, जैसे किसान, सपोज हम बारिश नहीं हो रही, मई में खेती बिजाई करनी है, या अप्रैल में, जिन भाइयों ने कर दी है उन्होंने करा होगा कि हम जो पहला पानी है इसको हैवी लगाना है
1: जी,
2: गेहूं के हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग के बाद अच्छी तरह पानी देना है, रौनी उसको बोलते हैं, रौनी करनी है अच्छी तरह, फर्स्ट जो प्री सोइंग इरीगेशन बोलते हैं, तो उसके बाद अच्छी तरह दो तीन बार उसको डिस्किंग, प्लॉइंग, प्लैंकिंग, सारा कुछ, जैसे कि हल चलाना, फिर डिस्क
1: जोत पहले करके करना, उसको पाटा लगा देना,
2: पाटा लगा देना, ताकि जो मॉइस्चर है वो नमी अंदर रह जाए,
1: नमी लॉक करने के लिए
2: पाटा
1: लगाना जरूरी है,
2: पाटा लगाना पड़ता है, तो वो अच्छी तरह खेत को दो चार बार जुताई करके अच्छे से उसको खेत को तैयार करना है। उसमें जो बड़े बड़े जो मिट्टी के ढेले वगैरह बोलते हैं, जो क्लॉट्स बोलते हैं, वो ना हो, अगर वो होंगे तो वो जर्मिनेशन में थोड़ा सा हर्डल करेंगे, वो रुकावट करेंगे, बहुत ही फाइन
1: मिट्टी को भुरभुरी बना ले,
2: भुरभुरी बनाना है अच्छे से, और उसमें ध्यान रखना है कि मॉइस्चर अच्छा हो, तभी वो जर्मिनेशन अच्छी आएगी। अगर जर्मिनेशन अच्छी आएगी तो क्रॉप की जो पॉपुलेशन है पूरी होएगी प्लांट की और क्रॉप की, और वो हर एक पौधा अल्टीमेटली आपको यील्ड देगा, उसमें फ्रूट आएगा।
0: और रमन जी, एक चीज और की जो बीज की बात अगर हम करें, तो बीज के हम चाहेंगे किसमें कुछ खास जो राज्य के हिसाब हिसाब से किसानों को लगानी चाहिए, और जो आजकल उन्नतशील बीज भी काफी आते हैं, और क्या बीज उपचार भी इसमें किया जाता है? हम चाहेंगे बीजों के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं।
2: जरूर बताएंगे। बीजों के बारे में ऐसा है कि एक तो किसानों को, मैं बहुत किसान भाइयों को सिफारिश करूंगी या गुजारिश करूंगी कि जो भी जिस इलाके से संबंधित है उस इलाके में विश्वविद्यालय भी है, उस इलाके में कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, तो उनकी सलाह जरूर ले लें, क्योंकि कुछ लोकल वैरायटीज होती हैं जो उस जलवायु के लिए सूटेबल होती हैं। तो जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र को या कृषि अपने विश्वविद्यालय में जरूर संपर्क करें वैज्ञानियों को। और इसका क्या हुआ कि पहले देसी कपास आता था, उसके बाद रिप्लेस करा अमेरिकन कपास ने कर दिया, उसकी यील्ड अच्छी थी और उसकी क्वालिटी अच्छी आ गई,
1: उत्पादन ज्यादा हो गया,
2: उत्पादन ज्यादा हो गया। फिर कीड़े मकौड़े की बहुत समस्या आई, कीड़े मकौड़े की समस्या को खत्म करने के लिए अब जो लेटेस्ट जहां चल रहा है वो है बीटी कॉटन
1: जी,
2: जो कि जो हमारे दो तीन जो कीड़े थे प्रमुख, जैसे कि पिंक जो गुलाबी सुंडी बोलते हैं जिसको, और एक अमेरिकन बॉलवॉर्म था, ऐसे इनको इनके प्रतिरोधता के लिए कुछ वैरायटीज आई जो बीटी कॉटन आई
1: जी,
2: जिसमें ये बीमारी कीड़े मकौड़े नहीं लगते थे।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बीज से भी शुरू किया जा सकता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बीजों से ही शुरू हो जाए, ताकि बाद में जो है पौधों में
2: समस्या नहीं है।
1: हाँ। जी
2: तो अभी आप बीज उपचार की बात कर रहे थे, बीज उपचार बहुत बहुत जरूरी है। एक तो इसमें क्या होता है, जब जैसे आपने सीड का भी देखा हो तो उसमें फज होता है, जो थोड़ा सा फाइबर सा लगा होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम बोलते हैं कि एसिड डिलिंटिंग करनी है सल्फ्यूरिक एसिड से। जैसे एक किलोग्राम सीड लिया और लगभग 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड या 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेके उसमें जल्दी से उसको हिला के 5-10 मिनट, उसके बाद पानी से उसको 2-3 बार धो देना है ताकि जो एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाए। उसके बाद एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, 2-3 मिनट उसमें हिलाना है
1: जी।
2: और इससे अलावा अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं अवेलेबल है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं अवेलेबल है, तो क्या करते हैं, मिट्टी से थोड़ा सा ऐसे रब करके रगड़ के वो जो फाइबर होता है ऊपर वाला रिमूव करना पड़ता है। तो ये इसका है कि सीड एसिड डिलिंटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो वो जो फज है उसके वो थोड़ा जर्मिनेशन में जैसे अंकुर निकलेगा तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, जो थोड़ा लेट निकलेगा। तो ये है इसका।
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो
3: गुड आफ्टरनून मैम
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं आप?
3: जी मैं फहीम बोल रहा हूं, श्रीनगर कश्मीर से।
0: जी फहीम जी, प्रश्न पूछें अपना।
3: जी मेरा प्रश्न ये है कि कपास की बुवाई का सही समय क्या है, और इसके लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? जी यही सवाल है। और क्या हम कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर कपास की खेती कर सकते हैं?
0: जी श्रीनगर में भी क्या कपास उगाई जा सकती है? रमन जी जी
2: क्या नाम था? फहीम
0: फहीम
2: फहीम फहीम फहीम जी जो सही समय है, नॉर्थ से हमने स्टार्ट करा था, वो तो था हमारा अप्रैल का महीना, तो मुझे लगता है यही वेदर आपके उधर भी अभी ठीक है, वेदर स्प्रिंग चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जब गर्मी होती है इसको जो टेम्परेचर चाहिए मिनिमम जो है वो 16 डिग्री चाहिए, और 21 से लेके 26-27 जो डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में चाहिए इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर ऐसा जलवायु आपके उधर जहां भी आप रहते हो या खेती करते हो ऐसा है, तो आप सोइंग के टाइम इसको ऐसा टेम्परेचर चाहिए। और ध्यान रखना है कि जब इसका फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होती है, जब उसका बीज बनता है या क्या बोलते हैं फूल आता है, तब इसको 30-35 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए और 20-25 जो है मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। तो ऐसा अगर जलवायु है आपके उधर तो आप इसकी सोइंग कर सकते हो, बट आप देख लो, मेरे को लग रहा है आजकल तो टेम्परेचर आपका डाउन ही होएगा, इतना तो नहीं आएगा, गर्मी भी ज्यादा नहीं होगी।
1: जैसे डॉक्टर साहब अब आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है, और अभी हम देख रहे हैं कि मई के महीने में भी कभी भी हमें सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो क्या ये कपास की बुवाई को मतलब देरी कर सकता है? उसमें क्या उससे किसानों को फायदा हो सकता है जिन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि टेम्परेचर दिन में कई बार अभी कम भी है, तो क्या उसका फायदा मिल सकता है किसानों को?
2: फायदा होएगा डेफिनेटली, क्योंकि ज्यादा बढ़ नहीं रहा टेम्परेचर ना, तो थोड़ा सा, और दूसरा थोड़ी बहुत रेन आती है तो वो एडवांटेज ही है कि पानी भी एक जगह बच रहा है, और जो रेन का पानी से उसका जर्मिनेशन वगैरह ग्रोथ अच्छी हो रही है।
0: जी, तो

0: तो बुआई पे किस तरह से असर डालेगा, क्योंकि मानसून उत्तर भारत में थोड़ा देर से आता है लेकिन मध्य भारत में वो लगभग पहले आ जाता है।
1: तो पहले आ जाता है, तो अगर किसी किसानों ने नहीं अगर बुआई करी तो वो उसका फायदा अच्छे से ले सकते हैं कि बारिश हो गई, अच्छे से खेत को तैयार करें और बिजाई कर दें, उनको फायदा होएगा। जो उनका एक पानी लगाना है उनको अपने खेत में, वो पूरी का पूरा उसका उनका बच जाएगा अगर रेन होती है। तो हम सिफारिश भी करते हैं कि हैवी इरीगेशन चाहिए, प्री सोइंग बीज
2: बीज बोने से पहले
1: पहले हैवी इरिगेशन चाहिए, नमी चाहिए।
2: तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें बीज दर की, तो बीज दर क्या रहनी चाहिए और जो कतार से कतार की दूरी जब रखी जाती है तो वो कितनी होनी चाहिए कपास की बुआई के समय?
1: हाँ, इसका बीज दर लगभग जो अमेरिकन कॉटन की बात करते हैं, हिर्सुटम वराइटीज है उसमें 10 किलो है पर हेक्टेयर का। बट जो हाइब्रिड, आजकल हाइब्रिड भी कुछ आए हैं, तो हाइब्रिड का बीज दर है जो सिर्फ 2-2.5 किलो है पर हेक्टेयर का। तो इसके साथ आपने बात करी वो उसकी ज्योमेट्री की, के
2: पंक्ति
1: कतार से कतार कैसे फासला रखना है जहां प्लांट टू प्लांट। क्योंकि एक और यहां इम्पोर्टेंट है बात कि ये जो इसका प्लांट होता है, इसकी कनोपी काफी बड़ी होती है, आपने अगर कहीं देखा हो तो। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी चाहिए और कतार टू कतार तो चाहिए ही, क्योंकि काफी जगह ये घेरता है। और जो आजकल वैरायटीज आ रही हैं, जो हाइब्रिड आ रहे हैं, वो और भी ज्यादा फैलते हैं, उसकी जो कैनोपी होती है, जितना प्लांट अच्छा फैलेगा उतनी ज्यादा उस पर बॉल्स आएंगे, उतना फ्रूटिंग आएगी, फ्लावरिंग होगी और उतनी अच्छी यील्ड भी देगा। इसीलिए मैं ये बताना चाहूंगी कि इसके जो रो टू रो डिस्टेंस है, कतार टू कतार, वो लगभग 70 सेंटीमीटर रखना है, किसान भाई नोट कर लें। और जो पौधे से पौधा है वो 50 से लेके 60 रख सकते हैं। इसीलिए जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड में हम 90 या 100 सेंटीमीटर तक फासला रखते हैं कतार टू कतार, जो रो टू रो है। और प्लांट टू प्लांट भी 60 से 70 सेंटीमीटर हम जाते,
2: यानी 2 से 2.5 फीट की दूरी जो है वो सामान्य मानी जाएगी। तो अब जैसे आपने अभी बोला कि नमी ज्यादा होनी चाहिए स्विंग से पहले, लेकिन अगर हम बाद की बात करें, जिन्होंने लगा ली है या लगाने के बाद अगर हम सिंचाई की बात करें, तो हम कई बार अपने कार्यक्रम में बार बार बात करते हैं कि पानी बचाना है, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना है और टपक सिंचाई का इस्तेमाल करना है, तो क्या उसका फायदा इसमें भी होगा या इसमें बाद में भी हैवी सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है?
1: हाँ, एक तो क्योंकि गर्मी की फसल है
2: जी,
1: तो गर्मी में हम सिफारिश करते हैं 4 से लेके 6 पानी
2: जी
1: आधारित करता है वर्षा पे, भी वर्षा कितनी आ गई बीच में। तो पहला पानी जो बहुत ही जरूरी है इसको, क्योंकि जब फसल आपकी आज आपने अप्रैल में सोइंग कर दी, तो पहला पानी है, हम बोलते हैं कि 4 से 6 हफ्ते के बीच में लगाना है। 4 हफ्ते इसलिए कि अगर बारिश नहीं हुई, एक आधी बारिश हो गई तो हफ्ता आप डिले कर सकते हो, ठीक है। टोटल 4 से 6 पानी लगेंगे क्रॉप की टोटल अवधि में। तो दूसरा है कि पानी बचाना है, और भी इसमें है इशू कि मेड़ों पर लगा लो, मेड़ों पर लगाओगे तो वैसे ही आप 20-30% पानी की बचत हो जाएगी। और अगर पानी खराब है, कई इलाकों में होता है कि पानी की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो पहला पानी है, ध्यान रहे कि जो पहला पानी है वो कैनाल वाटर लगा लें। कैनाल का पानी बहुत ही अच्छा हो, क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है, उसमें कोई सॉल्ट वगैरह ज्यादा नहीं होते। तो पहला पानी वो देकर, जो बाद में आपके पास अगर पुअर क्वालिटी वाटर है तो उसको आप फरो में लगा सकते हो, अल्टरनेट फरो पे, एक फरो छोड़ के एक में लगा दो, तो आप पानी की बचत भी कर पाओगे और आपकी फसल भी बच जाएगी। अगर टोटल आपका सिलाइन वाटर है, कहीं पर होता है कि खारा पानी होता है वो कहीं यूज नहीं कर सकते, तो उस केस में होता है कि थोड़ा सा हम जिप्सम वगैरह लगा लो, जहां बिजाई से पहले जो रूढ़ी वाली खाद होती है, FYM बोलते हैं, गली सड़ी रूढ़ी वाला, वो लगा उसमें खेत में मिलाइए 20-25 टन
2: जी,
1: तो वो उसकी एक तो क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है सॉइल
2: की सड़ी खाद,
1: और हाँ उसकी जो सेलिनिटी वगैरह वो भी उसको न्यूट्रलाइज करेगा
2: जी।
0: हमने अभी खाद की बात की और आपने जैविक खाद का जिक्र किया, क्या जैविक खाद का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर आजकल बहुत तरह की खाद भी आती है, क्योंकि जैविक खाद के बाद हम लोग केमिकल्स बेस्ड खाद पे आ गए, तो कपास के लिए क्या ज्यादा बेहतर रहेगा, खासतौर जो किसानों के आर्थिक उससे भी जो है उनके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि कि उनका पैसा भी और लागत जो है मुख्य रूप से कम लगे और उनका उत्पादन भी बढ़े।
1: इसमें ऐसा है कि क्योंकि कॉटन हमने बोला है कि व्हाइट गोल्ड है, अच्छी उसको यील्ड देना है, अच्छे यील्ड के लिए हम एक ही बोलेंगे हाँ

0: FIM डाल दें वो काफी नहीं है जी। हमें दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। जो पहले हमने जो डाला है, जो कंपोस्ट वगैरह डाला है, FIM डाला है, वो अदर क्वालिटीज जो सॉइल की वो इम्प्रूव करता है। जैसे पीएच इम्प्रूव कर दी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा दी उसने, कि पानी उसको पानी ज्यादा देर तक रहे, हाँ ज्यादा देर तक रहेगा। तो जो दूसरे हमने केमिकल डालने हैं वो इंस्टेंट उनको देता है
1: जी।
0: तो वो दोनों का क्लब करना है। पर जो खाद है, जो आपने बोला है कंपोस्ट वगैरह, वो भी डालो, 10-15 टन डालो जितनी अवेलेबल है फार्मर के पास
1: जी।
0: और साथ के साथ जो केमिकल है वो भी डालने हैं। केमिकल की मात्रा मैं बता देती हूँ, इसमें जो नाइट्रोजन है लगभग 100 केजी हम एक हेक्टेयर में सिफारिश करते हैं, और अगर फास्फोरस की बात करें तो 30 किलोग्राम डालनी है पर हेक्टेयर में। और डालनी कब है? सारी की सारी अगर फास्फोरस और अगर पोटाशियम की कमी है, मिट्टी आप टेस्ट करवा लो साथ
1: मृदा जांच के।
0: हाँ जी, बिल्कुल वो जरूरी है। फास्फोरस और पोटाशियम अगर डालते हो तो वो शुरू में डाल दीजिए बिजाई के समय, और नाइट्रोजन को दो भागों में बराबर बांट लेना है। एक तो डालना है तब जब थिनिंग करते हो। थिनिंग मीन्स आपने सोइंग कर दी, एक जगह पे दो चार प्लांट मतलब एक जगह ही उग गए
1: जी,
0: तो उनको निकालने को हम बोलते हैं थिनिंग, छांटी करना। तो एक ही प्लांट एक जगह पे रहेगा तो, क्योंकि काफी फैलता है, फैलाव काफी रहता है, तो इसलिए एक प्लांट एक जगह पर रहना चाहिए। तब एक डोज वहां डालनी है हाफ, और हाफ डालनी है जब आपका जो फसल है फ्लावरिंग भी वो आएगा।
1: तो फ्लावरिंग के टाइम पर जब बॉल्स आती हैं या फ्लावरिंग होती है तो उस टाइम पे और कौन कौन से पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, या सिर्फ यही इनफ रहते हैं?
0: और कोई नहीं रहता,
1: अलग से कुछ और देने की जरूरत नहीं पड़ती है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज्यादा उत्पादन के चक्कर में किसान बिना सोचे समझे जो है वो ज्यादा खाद पानी दे देते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी आप अपने खेतों में जब भी कोई उर्वरक डालें, चाहे वो जैविक खाद हो या कोई केमिकल हो, तो उसको डालने से पहले बहुत अच्छे से परख लें, और अगर कोशिश करें कि अपने आसपास जो भी आपका कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से जाकर के भी आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, हमने काफी बात की, हमने जो है बीजों के बारे में बात की, किस तरह से लगाए जाएं, हमने सिंचाई के बारे में बात की। एक चीज और भी है जिससे फसलें बहुत खराब होती हैं, वो है खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण का जो है सही समय क्या है, और क्या जो अभी बुवाई होती है क्या उसका कुछ उपचार किया जा सकता है, और क्या कीट प्रबंधन के संबंध में भी हम उसी को, अगर हम इस सवाल को मैं थोड़ा बढ़ाऊं, क्या दोनों को हम कुछ इस तरह के जो कुछ ऐसा काम है जो हम लोग बुवाई के समय में, सिंचाई के समय में कर सकें, ताकि आने वाले समय में फसलें उर्वरकों से और बीमारी और कीट पतंगों से बच सकें?
0: क्योंकि जो अभी मौसम है खरीफ का जो बोलते हैं हम गर्मी वाला, इसमें बारिश होती है, तो बारिश तो हमें चाहिए भी
1: जी,
0: नेचर को, कुदरत को, सभी को, और इसमें हम रोक नहीं सकते। और इसमें क्या ज्यादा होता है, इन्फेस्टेशन जो वीड्स की है वो ज्यादा होती है, क्योंकि नेचुरल रेन है तो पानी है। जो खरपतवार हैं वो कंपीट करते हैं, कोई भी क्रॉप हो, चाहे वो पल्स हो, चाहे वो ऑयल सीड हो, चाहे कपास है, वो इनकी जगह भी लेंगे, इनके न्यूट्रिएंट्स भी लेंगे, इनकी खाद तत्व जो भी है रोशनी के लिए भी वो कम्पीट करेंगे सारे जो भी उसको क्रॉप को चाहिए। और ये है फास्ट ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू अवर क्रॉप्स, ज्यादा जल्दी से बढ़ते हैं, हाँ, और जल्दी जल्दी अपना साइकिल पूरा करते हैं
1: जी।
0: कंपटीशन ज्यादा है इसमें, दे आर वेरी अग्रेसिव ऑल्सो। तो इसीलिए ये है कि इनको कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है, खासकर इस सीजन में। ठंड में ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, गर्मी में ज्यादा बढ़ते हैं। ये इसका है। और हर तरह के नदीन आते हैं, और जैसे आपने अरविंद ने बताया कि क्या क्या प्रायर क्या क्या हमें करना चाहिए ना, तो किसान भाइयों को चाहिए कि पहले अपने डेली खेत में जाना जरूरी है। खेत में कोई नया पौधा आपको दिख रहा है तो उसको हटाना है, जैसे कोई जो कोई भी हथियार आपके पास है, चाहे खुरपी हो, कसी हो, कोई भी, तो उससे हटाना है। और जैसे आपने सोइंग कर दी क्रॉप की, आज बिजाई कर दी, तो डेली आपको उसको देखना ही है
1: जी,
0: क्योंकि एक दो बार हम सिफारिश करते हैं कि गुड़ाई निराई जरूर करनी पड़ती है,
1: लगातार निगरानी बनाए रखें अपने खेतों पर, और निराई गुड़ाई करते रहें, खरपतवार अगर कहीं पर भी नजर आए तो उसको निकाल दें।
0: अगर केमिकल की बात करें तो एक बहुत ही इजी एंड बहुत ही किसानों के बीच में जो प्रचलित है, पेंडीमेथिलीन
1: जी,
0: पेंडीमेथिलीन हर क्रॉप में हम सिफारिश करते हैं, और वेरी सेफ हर्बिसाइड है, बहुत दिनों से, सालों से यूज कर रहे हैं फार्मर। और इसका है प्री इमरजेंस, अगर आपने आज बिजाई कर दी तो 2-3 दिन के भीतर उसको कर दें उसकी स्प्रे।

0: जी एक लगभग 1 किलो करते हैं, 1 लीटर करते हैं एक एकड़ का हम, तो 200-300 लीटर पानी में घोल के नैपसैक जो पीठ वाला होता है पंप उससे कर दो, जहां पावर स्प्रेयर है जो भी करना है उससे कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो ब्रॉड जो नैरो स्पेक्ट्रम संकरी पत्ती वाले वीड भी और चौड़ी पत्ती वाले वीड भी सारी तरह के जो भी होंगे वो कंट्रोल हो जाएंगे, प्रोवाइडेड के अच्छी तरह सारा खेत को अपने कवर करा है, कोई बीच में पैच नहीं छोड़ा, जहां पैच छोड़ा है वो निकलेंगे और इधर उधर स्प्रेड होंगे पानी से हवा से जैसे भी। और इसके अलावा अगर आप किसी वजह से रह गया कि आप नहीं कर पाए वो छिड़का
1: स्प्रे नहीं कर पाए,
0: स्प्रे प्री इमरजेंस नहीं कर पाए बिजाई से एकदम 2-3 दिन के बाद, तो आप जैसे ही आपकी क्रॉप थोड़ी 4-5 लीफ स्टेज पे आती है तब भी उसका 20-25 दिन तक भी पोस्ट इमरजेंस भी कर सकते हो पेंडीमेथिलीन उतनी मात्रा ऐसे ही जैसे नैपसैक स्प्रेयर से।
1: जी तो डॉक्टर साहब, जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की थोड़ी कमी है या बहुत ज्यादा कमी है, तो क्या वहां पर भी कपास की खेती इसी तरीके से की जा सकती है या इसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है?
0: पानी इसको 4 से 6 महीने बोला है जैसे, तो पर रेनफेड में वो बारिश की वेट करते हैं फिर वो इसको खेती करते हैं। और दूसरा है कि आप ड्रिप वगैरह, क्योंकि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अच्छा खासा मैंने बताया है कि 60 सेंटीमीटर से लेके 45 से लेके 60 तक 70 तक जाता है, तो आप ड्रिप बहुत ही इफेक्टिव है इस केस में, क्योंकि जैसे हम अदरवाइज रिकमेंड करते हैं ऑर्चर्ड्स में जहां एक ट्रंक आता है जो अपना उसका स्टेम होता है, एक प्लांट का इधर है 10 फीट पे दूसरा है, 10 फीट पे दूसरा है, इसमें भी अच्छी खासी दूरी है, आधा मीटर तो है ही ना, 50 सेंटीमीटर, तो आप ड्रिप भी कर सकते हो पानी की सेविंग के लिए। पानी अगर ड्रिप्स करोगे तो 70-80% वाटर वैसे ही सेव हो जाएगा, तो बहुत ही फायदेमंद है ड्रिप का अगर रेनफेड में जहां कहीं पानी की कमी है।
2: डॉक्टर साहब, हमारे जो वस्त्र उद्योग है उसकी रीढ़ भी माना जाता है कपास को, सारा हमारा जो वस्त्र उद्योग उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन उसके अलावा और कौन से पदार्थ प्रोडक्ट हैं जिनके लिए किसानों को खेती करनी चाहिए अगर उनको अपनी आय बढ़ानी है? मिल्स को सप्लाई करना तो एक मुख्य रूप से है ही, लेकिन खुद और कौन से उत्पाद हैं जिनको वो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं और उनसे अपनी लागत बढ़ा सकते हैं?
0: कपास से
2: जी
0: कपास से तो ज्यादा हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ये ज्यादा एक्सपोर्ट ही होता है, जो जैसे हम बोल रहे हैं कि ग्लोबली जो 30% जो हमारा एरिया है वो कपास के अंडर है भारत का, और लगभग हम 21-20% जो है वो प्रोडक्शन में ग्लोबली कर रहे हैं एक्सपोर्ट, तो ज्यादा एक्सपोर्ट ही होता है। और इसके अलावा अगर इसका जो वो निकाल रेशे निकाल के जो बीज बचता है वो एनिमल्स की फीड के लिए भी यूज होता है, और इसमें ऑयल निकलता है जो कि एडिबल है
1: जी,
0: वो कुकिंग के लिए और अच्छी इंडस्ट्रीज में होटल्स में भी यूज होता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अगर जैसे समय की हमारे पास बहुत कमी है और समय लगातार भागता चला जा रहा है, हम आपसे बहुत जल्दी से जानना चाहेंगे कि हमारे किसान जो हैं वो वैज्ञानिक तरीके अपना करके किस तरीके से जो कपास की फसल है उससे ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं?
0: जो हमने बताई वो तो सारी पैकेज थी ना, कि वो एक बार जरूर मतलब खेती जब भी उन्होंने करनी है सोइंग से पहले एक बार जो विशेषज्ञ होते हैं उनके आसपास जो चाहे वो विश्वविद्यालय में हो या कृषि विज्ञान केंद्र में चाहे पूसा में ही अगर कोई आना चाहे आसपास तो दे आर मोस्ट वेलकम, आके हमें पूछे और जो टिप्स हैं उनको फॉलो करें, कि जैसे हमने बताते हैं कि बीटी कॉटन लगाना है तो उसके साइड में 20% एरिया हम बोलते हैं कि रिफ्यूजी लगाना है ताकि जो प्रतिरोधता जो है बनी रहे, इधर उधर से जो है फूल वगैरह इधर से क्रॉसिंग ना हो ताकि जो आपकी जो क्वालिटी है उसकी क्रॉप की वो खत्म ना हो, क्वालिटी मेंटेन रहे।
2: जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने का और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो श्रोताओं, आज हमने बात की कपास की उन्नतशील किस्म में बुवाई और उर्वरक प्रबंधन पे, और हमारे साथ स्टूडियो मौजूद थी डॉक्टर रमनजीत कौर, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
1: जी और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ कपास की खेती के बारे में ही नहीं हमने जाना, बल्कि ये भी जाना कि किस तरीके से जो है कपास के और भी बहुत सारे उत्पाद हैं वो आप किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। खेती में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं होती है दोस्तों, सही जानकारी से भी मिलती है, और वही सही जानकारियां जो हैं वो हम आप सभी के लिए लेकर के आते हैं समय समय पर। और अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं, किसी अन्य विषय पर कार्यक्रम चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर के आए खेती से जुड़ा हुआ, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। इसके अलावा यदि आप कार्यक्रम से संबंधित कोई भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें

0: ईमेल आईडी पर बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में किसान की बात का अंक जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी कोमल
1: और मुझे अरविंद को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर, संयोजक शिवनंदन लाल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब। आमी ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, किसी अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़े पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुरेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपे जाली समर्थन पत्र की कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार

मन भावन प्रोग्राम की शुरुआत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। और जी शनिवार है, शनिवार की आपकी दोस्त सीमा वर्मा एक बार फिर आपसे मुखातिब है आपकी बहुत सारी फरमाइशें लेकर। और जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून इन किया है, हम आपको बता दें कि आप एफएम गोल्ड 100.1 के साथ हैं। एक प्रोग्राम शुरू होता है जी जिसका नाम है मन भावन, और इसमें आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, fmgoldairdelhi@gmail.com। और हर बार की तरह पहला गीत मेरी फरमाइश का आप सबके लिए। आप मुस्कुराते रहिए और हम तक अपना संदेशा पहुंचाते रहिए। fmgoldairdelhi@gmail.com। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार।

एफएम गोल्ड सुन रहे हैं जी आप, ये है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड AIR दिल्ली @gmail.com पर आपको हमें अपना संदेशा भेजना है। जो लोग हमें रेगुलरली मैसेज करते हैं उन्हें जरूरत नहीं है पता बताने की, लेकिन जिन्होंने अभी तक मैसेज नहीं किया है और हमेशा सुनते हैं लेकिन कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि मैसेज करें, आप करिए ना fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। अब हम अपने शुरुआत करते हैं जी आपके संदेशों की, और यहाँ पर ईटा से हमारे पास नबी हसन अब्बासी हैं, शहनाज अब्बासी हैं और नवेद हसन साहब हैं, सुहेल हसन हैं, रसीद वारसी हैं, अनम अब्बासी हैं, यशफ अब्बासी हैं और राउ से कौन हैं ये, मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन, ये इन्होंने संदेशा भेजा है। और आपके ज़्यादातर संदेशे जो हैं वो कहते हैं कि जी आप कोई भी गीत आप सुनवा दें, तो कपिल चिंपा और ईशान चिंपा और पूजा परिहार का ये मैसेज आया है, भोपालगढ़ राजस्थान से इनका ये संदेशा आता है। वहीं और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बबलेश पंवार का ये मैसेज है, डैनी है, इनके साथ मनीष है और इन्होंने बाड़मेर से हमें ये संदेशा भेजा है। रामदेवरा से दिनेश चौहान है और ये कौन है, डांगरी से हमारे पास बाबूराम जयपाल जी हैं और एक और नाम इन्होंने भेजा है खुदा बख्श

खलीफा। तो अब आपके मैंने नाम पढ़ दिए, काफी सारे नाम पढ़ दिए, अगर आप कहते हैं तो एक गीत हम सुनवाते हैं। एक संदेशा और आ गया अभी अभी ऊपरकोट बुलंदशहर से आया है, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज हैं, फरदीन हैं, सुहान हैं, अरजान हैं और अबान अब्बासी हैं। और काफी सारे संदेशों के बाद एक बहुत खूबसूरत सा गीत, अपने जमाने का बहुत हिट गीत रहा, जाना माना गीत रहा, लेकिन अगर हम इमोशंस की बात करते हैं, इंसान के इमोशंस की बात करते हैं, जमाने आगे बढ़ जाते हैं, इमोशंस वहीं के वहीं रहते हैं। आज भी

आपके जो संदेशे हैं वो मुझ तक पहुंच रहे हैं। मन भावन प्रोग्राम है जी, एफएम गोल्ड 100.1 है, और जिस पते पर आपको हमें संदेशा भेजना है वो fmgold@delhi.gmail.com पर। अब अगला संदेशा आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा और चैतन्य मस्कीन है, इनके साथ मेघा है, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और किशु रिधान खुराना है। इन्होंने हमें संदेशा भेजा है। ज़्यादातर आपके मैसेजेस में ये लिखा होता है कि आप इंक्लूड कर लें, लेकिन हम भी तो जाने ना कि आपके जो फरमाइश है वो क्या है। कई बार पता है गीत भी याद नहीं आता है एंड टाइम पर, जब कभी ये उस तरह से हो जाता है जैसे चुटकुले नहीं होते हैं कि भाई एंड टाइम पर आपको चुटकुला याद नहीं आता है, और जब आप अकेले बैठे होते हैं तो आपको एकदम से चुटकुला याद आ जाता है। यही बात शेरों के साथ भी होती है, आप बहुत सारे शेर आते हों लेकिन उस मौके पर वो चीज़ याद नहीं रहती है। तो ऐसा ही शायद आपके साथ है, अगर ऐसा है तो चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर शहादरा से वीना मस्कीन और तुलसी मस्कीन जी का है, मुझे लग रहा है ये जो मैंने अभी संदेशा पढ़ा ये आप ही ने दोबारा से भेज दिया है शायद। बहरहाल कार्यक्रम मनभावन पेश जो कर रही हैं दीदी जी, हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। अच्छा नमस्ते से आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, हेमलता हैं, हिना हैं और लालगिरी गोस्वामी हैं, इनके साथ हर्षित हैं और खुशी गोस्वामी भी हैं। और यहाँ पर एक और संदेशा चलिए मैं ले लेती हूँ, ये आया है जी हमारे पास, किसका है जी, कस्बा गुन्नौर यूपी से है, फारूक अली खान साहब हैं, फैजी फरजान हैं और फरहीन, फरहान और फाहिरा ताहिरा हैं इनके साथ। अब आप कहें तो गाना सुनवाऊं या एक दो और संदेशे मैं पढ़ लूं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवगन का संदेशा आया है, रोशन लाल देवगन है और हेमलता डिंपल देवगन है, पूरा का पूरा परिवार है और आप हमें सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और नाम है किशोर गुप्ता और साधना रानी है, इन्होंने अमरावती से हमें संदेशा भेजा है। और आपको भी अगर इस तरह से जी कर रहा है हमें संदेशा भेजने का तो आप फटाफट नोट करें fmgoldaiadelhi@gmail.com, इस पर हमें संदेशा भेजिए, अपनी फरमाइश भेजिए, आज आपका कोई ख़ास दिन है तो उसको भी मेंशन कीजिए, आज आपका मूड बहुत अच्छा है या मूड बहुत ख़राब है वो भी मेंशन कर दीजिए। छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे पास प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का संदेशा आया। संदेशे यूं ही आते रहेंगे, संदेशे आते हैं, हमें बिल्कुल नहीं तड़पाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके संदेशे आते हैं। और इसी तरह आप हमें मैसेजेस करते रहिए, हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस लेने की। और अब आप में से किसी एक की फरमाइश। वाह क्या गाना है, बहुत समय बाद सुना मैंने, और आपने

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

वेलकम बैक जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। और शनिवार की दोपहर ही है, काफी गर्म है इस वक्त और पता नहीं क्या हो रहा है। आपने नोट किया है दिल्ली में मौसम जो है वो शाम को तो बहुत प्लेजेंट हो जा रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन दोपहर को बहुत ख्याल रखने की बात है। और जब शाम को इस तरह का मौसम होता है तो लगता है कि सैर पर निकल चलें, ये एक अलग बात है। फिलहाल अगर आप घर से निकल रहे हैं तो पानी की बोतल और टोपी, चुनरी या फिर छतरी आप अपने पास रखिएगा जरूर। और अब आपके संदेश से, लेकिन उससे पहले एफएम गोल्ड AIR Delhi @gmail.com और 3:44

से विजय सुरलकर साहब हैं, रत्नमाला जी हैं, ओम कुमार हैं। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र और शेख मूसा भाईजान हैं, भाई राजकुमार, और इनके साथ एक नाम और है, सुदामा नगर खंडवा से हैं जी ये, लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश। अब ये जो हमें संदेशा भेजा ये आया है हमारे पास मध्य प्रदेश से। और अगर आगे मैं बढ़ती हूँ तो आगे हमारे पास और भी बहुत सारे संदेशे आते चले जा रहे हैं, एकदम से क्लिक करते हैं और अगला संदेशा आ जाता है। अब एक और संदेशा पढ़ देती हूँ मैं जी, ये मध्य प्रदेश से आया है और नीपा नगर से ये संदेशा आया है। सुदर्शन शाह हैं, इनके साथ प्रखर हैं, नीति हैं, सुरभि हैं, अश्विन हैं, मंगला बेन हैं और राजेंद्र जी शाह हैं। अब अगला संदेश के लिए हमें उत्तर प्रदेश जाना होगा और उत्तर प्रदेश से जिन्होंने भेजा है वो हैं राजेश कुमार वर्मा है, प्रीति वर्मा है और कार्तिक, इनके साथ आर्यन भी हैं। शिव मंदिर हकीकतपुरा महू से हमें पास ये मैसेज आया है, मुन्ना भाई स्वर्णकार हैं और पिंकी हैं इनके साथ, आर्यन है, कृष्णा है और पीहू हैं। क्या कहते हैं, बहुत सारे नाम ले दिए हैं, अब एक गीत हो जाए। या फिर महाराष्ट्र का ये एक और संदेशा है, मास्टर विठल सुरोशे हैं, इनके साथ सुषमा हैं, परिधि हैं और मायरा भी हैं। खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस हैं, पिंकी हैं, आरती अरोड़ा हैं और इनके साथ लवली हैं। जब तक मैं दूसरे गाने पर अपनी नज़र जो है वो दे रही हूँ, बहुत खूबसूरत गीत, बहुत सुंदर गीत है ये और आप भी कहेंगे कि बहुत समय बाद इस गीत को सुना है। चलिए पिपरिया से एक संदेशा और ले लेते हैं, उसके बाद इस गीत की शुरुआत करती हूँ मैं। यहाँ से कमलकांत गुप्ता जी हैं, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता हैं, राधे हैं, दीपक हैं, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता हैं और अब ये गीत। आशा जी की बहुत याद आ रही है, सुनिए इसे।

ऐसे ही कुछ मीठे शब्दों की किसी अपने के पास से ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में। जब कई बार उतार चढ़ाव आते हैं तो हमारा कोई अपना अगर इस तरह से पेश आता है, कुछ इस तरह से कहता है, तो यकीन मानिए लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये जो वक्त है ये भी बीत जाएगा। बहरहाल आपके संदेशे हैं जी जिन्हें हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले fmgoldair@gmail.com ये भी बताना है, और ये भी बताना है कि आप कौन से रेडियो स्टेशन के साथ हैं। मन भावन प्रोग्राम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा, 3:51, और आप समझ गए होंगे समय ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर गंगा वर्णकर साहब हैं, गोविंद हैं इनके साथ, प्रीति, जूली, गीता, महिमा, विशाल, विजय, विराट, रमेश और महेश, जयंती, बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे लिखा है इन्होंने, और इन्होंने हमें कहाँ से लिखा है ये जब तक मैं देखूंगी दूसरा संदेशा जो है वो बिल्कुल मेरे सामने आ जाएगा। शमशुल कमर राही साहब हैं, इन्होंने हमें संदेशा भेजा है, गंज डुंडवारा से हैं ये, और शाहीन फातिमा है इनके साथ, अनु खान है और अदनान खान है इसके साथ, फैजान खान साहब हैं और एक और नाम है आबाद खान, इन्होंने हमें संदेशा भेजा है। एक गीत की भी फरमाइश की है, देखते हैं साहब आपकी फरमाइश का जो गीत है वो हम पहुंचा पाते हैं कि नहीं आपके पास। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से हमारे पास प्रकाश जी का संदेशा आया है, इनके साथ कुछ नाम और हैं, सुषमा जी हैं इनके साथ, और यहाँ पे जमशेदपुर की बात करें तो एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और हरजिंदर सिंह भाटिया जी हैं। सनावत की बात करें तो शेख मूसा मोहसिन है, और अगर हम आगे जाते हैं और संदेशे को देखते हैं तो किशनगंज बिहार से हमारे पास रविंद्र मोहन दास जी और आशा देवी का ये संदेशा मिलता है। गीत बहुत प्यारा, आप अकेले हैं और दोपहर जो है वो शाम के आगोश में जाने को बिल्कुल तैयार है, ये गाना।

किशोरदा के गाए हुए इस गीत के बाद मुझे लगता है अब एक आखिरी फरमाइश आप तक पहुंचानी है। यहाँ पर हमारे पास खैला से उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार और सोनित कुमार का संदेश आया है। और अब आप सभी से इजाजत लेने से पहले एक आध संदेशा देखिए मैं और पढ़ देती हूँ। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्ट्रो हैं, रोजी हैं, पर्ल हैं और विलिस डिकोस्ट्रो हैं। और फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हमारे पास नासिर खान, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद का ये संदेशा आया है। किशन वंजानी साहब नमस्कार आपको, और आपके साथ नीलम है, स्वाति हैं, किशु हैं और आनंद विहार रेलवे कॉलोनी से आपने हमें संदेशा भेजा, इसके लिए शुक्रिया। और एक आखिरी संदेशा ज्योति मन्नत और भरत का है। यहाँ पर एक नाम और है, ये हैं कमल साहनी साहब जालंधर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविन्द्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपे जाली समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच

सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। 4:11 हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आप हैं एफ गोल्ड 100.1 के साथ, और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि आपके मनपसंद एफ गोल्ड 100.1 पर आने वाले कुछ घंटों में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। साथियों, अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा, और आप जानते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर हर घंटे आप समाचार सुनते हैं और दुनिया से जुड़े रहते हैं। और इसी कड़ी में शाम 5:00 हिंदी में समाचार होंगे, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे, और 5:10 पर आप से एक बार फिर मेरी मुलाकात होगी, लेकिन कार्यक्रम का नाम अलग होगा। ये होगा गाते गुनगुनाते, और गाते गुनगुनाते में हम 80 और 90 के दशक के कुछ चुनिंदा गीत सुनेंगे और उनकी छोटी छोटी जानकारियां मैं आप तक पहुंचाऊंगी। मेरा साथ आपके साथ 6:00 तक रहेगा। 6:00 आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे साथियों, और 6:10 पर आपके साथ कुछ सदाबहार गीत आप तक पहुंचाएंगी रेशमा तिवारी। 6:20 पर आप संस्कृत में समाचार सुन सकते हैं। वहीं 6:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम मार्केट मंत्रा का रहेगा। 7:00 एक बार फिर हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, और 7:10 पर कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन सकते हैं। 7:25 पर एक बार फिर रेशमा आपके साथ होंगी, साथ होगा कार्यक्रम सांझ ढले, और सांझ ढले कार्यक्रम में आप कुछ मानी खेज बातों के साथ साथ कुछ चुनिंदा खूबसूरत मधुर गीत भी सुनेंगे। आगे के जो कार्यक्रम है उनकी मैं आपको जरूर जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत खूबसूरत गीत है 1964 की फिल्म शगुन का। आइए सुनते हैं जगजीत कौर जी की आवाज में।

स्वागत आप सभी का एक बार फिर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। हम आपको बता रहे थे आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर आप आज कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। हमने आपको बताया कि 7:25 पर सांझ ढली आप सुनेंगे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार होंगे। रात 8 बजे हिंदी में समाचार, 8:05 पर अंग्रेजी में समाचार साथियों, और 8:10 पर मधुरिमा कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा। एक बेहद खास कार्यक्रम है, खास इसीलिए बनता है ये क्योंकि इसमें जो गीत आप तक पहुंचाए जाते हैं उनके शास्त्रीय अंग की हम बात करते हैं कि कौन से राग पर आधारित है, कौन से राग की धरती पर आधारित है ये और कौन सी महक लिए हुए किस राग की, और ये जो प्रोग्राम है आप तक पहुंचाएंगी रेशमा तिवारी। 8:30 का वक्त स्पॉट स्कैन का होगा। 8:45 पर समाचार संध्या हिंदी में आप सुन सकते हैं और 9:00 न्यूज एट 9। 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट होगा और 9:30 पर अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका कार्यक्रम होगा संस्कृति भारती। 10:00 हिंदी में समाचार होंगे, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 10:30 का कार्यक्रम हर सिंगार सुनना ना भूलिएगा साथियों। इसे पेश करेंगे फिरोज आलम और 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और एक बार फिर आप फिरोज आलम के साथ 11:10 से जुड़ेंगे। प्रोग्राम का नाम होगा गीत मेरे मन मीत। तो साथियों ये तो जानकारी हमने आपको दी आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर।

0: at www.ipr.res.in. The last date for submission of applications is 15th May 2026. You can also refer to the website www.dae.gov.in. Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, has invited online applications for regular faculty positions, including professor and assistant professor in various disciplines. Candidates with excellent academic records and relevant research experience, including eligible PIOs, OCIs and NRIs, may apply. Detailed eligibility criteria and application procedures are available on the official website at www.iiserthirupati.ac.in under the career section. Online applications will remain open till 28th May 2026. The website, it is www.iiserthirupati.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद के लिए एक रिक्ति उपलब्ध है। ये पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित। चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना के साथ विस्तृत भर्ती विज्ञापन आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के साथ साथ वेबसाइट upsconline.nic.in पर भी प्रकाशित किए गए हैं। आवेदन करने के लिए आप देख सकते हैं ये वेबसाइट upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पर आपको पात्रता, वेतनमान आदि सभी जानकारियां विस्तार से मिल जाएंगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में सिमुलेटर इंजीनियर ग्रेड 1 का एक पद उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए देखिए आधिकारिक वेबसाइट igrua.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप पात्रता, वेतनमान एवं अन्य सभी शर्तों की जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान में उपनिदेशक सिविल इंजीनियर के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस पद के लिए आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रपत्र केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वेबसाइट का पता है cicef.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप पात्रता, मानदंड और वेतनमान आदि की सभी जानकारियां विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है जो इन पदों के लिए भारत के नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित कर रही है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार केवल ऑनलाइन अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। पद नाम है असिस्टेंट फोरमैन। कुल 150 पद हैं, जिनमें से 60 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 15, एससी श्रेणी के लिए 24 और एसटी श्रेणी के लिए 33 तथा ओबीसी श्रेणी के लिए 18 पद आरक्षित हैं। तकनीकी इलेक्ट्रीशियन के कुल 350 पद उपलब्ध हैं, जिनमें से 140 सामान्य वर्ग के लिए, 35 ईडब्ल्यूएस के लिए, 56 एससी वर्ग के लिए, 77 एसटी वर्ग के लिए और 42 ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की वेबसाइट www.mahanadikol.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप योग्यता, पात्रता मानदंड, आरक्षण, आयु में छूट, परीक्षा शुल्क और अन्य नियमों और शर्तों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced

0: Produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
1: अभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन है 100.1 मेगाहर्ट्ज। और साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम परिक्रमा का।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोस्तों बज गए हैं 4:30, यानी वक्त है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, ले चलेंगे आपको अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे उनसे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर हमेशा की तरह रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को याद जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। दोस्तों, कार्यक्रम परिक्रमा में आज हम हैं आपके साथ मुनीश शर्मा और सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
4: नमस्कार मुनीश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, मुनीश हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। तो हस्बे दस्तूर हम लाते हैं ताजा तरीन खबरें तो हैं ही, बट बिकॉज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, तो जाहिर सी बात है मुनीश, हम लोग देश की परिक्रमा पे निकलेंगे। वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। बिकॉज मुनीश, बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो हमारे न्यूज बुलेटिन का कह सकते हैं हिस्सा नहीं बन पाती, बट दे आर डेफिनेटली वर्थ शेयरिंग विद आवर लिसनर्स, इसीलिए हम लाते हैं आपके लिए परिक्रमा। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट। मुनीश, शुभेंदु अधिकारी बिकम्स फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, टेक्स ओथ अलॉन्ग विद 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स।
3: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी, TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला है।
4: National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes.
3: Videsh Mantri Subramanyam Jayashankar ne dvipakshiya sahyog ko aur mazboot karne ke liye Trinidad aur Tobago ke Pradhan Mantri se mulaqat ki.
4: And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. And now it's time for our segment Dateline India, Munish, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. और आज हम लोग of course बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण मौजू की। Today is of course we are going to talk about the Rabindranath Jayanti and World Migratory Bird Day. तो पहला टॉपिक हम लेते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का। वेल, देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल एंड मैजिकल अबाउट बर्ड्स मुनीश। One season they are perched on electric wires outside our homes, chirping away at sunrise, and then suddenly they are just gone, thousands and thousands of kilometers away, crossing oceans, deserts, mountains, even borders created by humans, but birds never recognize them.
3: लेकिन सायरा, क्या कभी तुमने सोचा है कि आखिर वैज्ञानिकों को ये पता कैसे चलता है कि आखिर ये पक्षी जाते कहाँ हैं?
4: That's right, Manish. Who notices when their numbers begin to fall? Who tracks whether a wetland is disappearing or whether a migration route is becoming dangerous?
3: और इसका हैरान करने वाला जवाब तो दरअसल है हम लोग। कभी कभी ये कोई लैब में काम करने वाला वैज्ञानिक नहीं होता, ये दूरबीन के लिए कोई स्कूली छात्र हो सकता है या फिर कोई दादी जो हर सुबह अपनी बालकनी से चिड़ियों को देखती है, या कोई किसान जो अपने खेतों के पास अनजान चिड़ियों को निहारता है, या फिर ऐसा कोई आदमी जो सुबह की सैर के दौरान यूं ही चिड़ियों की कई तरह की फोटो अपलोड कर दिया करता है।
4: Exactly, Manish, and that's why World Migratory Bird Day this year wants the world to understand through its powerful theme, which is Every Bird Counts, Your Observations Matter. Because every single observation, every small note, every recorded sighting becomes part of a much bigger story.
3: लेकिन जानती हो सायरा कि केरल में एक नन्ना सा बच्चा इस सर्दी में एक झील के पास

0: कम प्रवासी पक्षियों को देखता है। अफ्रीका में एक पक्षी प्रेमी उनके आने के असामान्य समय को नोट करता है। यूरोप में एक परिवार प्रवास के दौरान वेटलैंड्स में आराम फरमा रहे पक्षियों की तस्वीरें लेता है। पहली नजर में ये पल साधारण लग सकते हैं, लेकिन जब महाद्वीपों में ऐसे हजारों यहां तक कि लाखों अवलोकन एक साथ आते हैं तो वो ऐसे पैटर्न उजागर करना शुरू कर देते हैं कि जिन्हें वैज्ञानिक अकेले इतनी तेजी से कभी पकड़ नहीं पाते।
1: That's right. Suddenly these scattered moments turn into critical environmental evidence. That's the beauty of community science. Not complicated labs, not giant machines, but people, ordinary people, Munish, who are paying attention to nature.
0: जी हाँ दोस्तों, और इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बात ये बनाती है कि पंछियों का प्रवास अपने आप में प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। कुछ प्रवासी पक्षी हर साल पूरे पूरे गोलार्धों को पार करके यात्राएं करते हैं। स्मार्टफोन से भी कम वजन वाले छोटे छोटे पक्षी तूफानों, बदलते मौसम, सिकुड़ती आर्द्र भूमियों और देशों को पार करने वाली थका देने वाली यात्राओं का सामना करते हुए जीवित रहते हैं।
1: इंडीड, बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है अपने आप में, खासतौर से जब माइग्रेटरी बर्ड्स का कहते नहीं है, जो वो माइग्रेशन शुरू होता है मुनीश, देयर आर सो मेनी यू नो चैनल्स जो उसको कहते नहीं है ट्रेस करते हैं, एंड इट रियली लीव्स यू ऑस्ट्रक कि कई बार तो हफ्तों हफ्तों तक वो नीचे आते ही नहीं, खाना खाने के लिए कहीं नहीं रुकते। यू नो इट्स अ नॉन स्टॉप जर्नी दैट दे टेक, एंड येट मेनी ऑफ अस बेयरली नोटिस देम अंटिल वन मॉर्निंग द साइलेंस आउटसाइड फील्स अनफेमिलियर, एंड दैट्स व्हाई दिस कैंपेन matters, because birds are not only beautiful to look at, they also tell us something about the health of the planet itself.
0: दरअसल योगदान देने के लिए आपको महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं है। शाम की एक साधारण सी सैर भी सार्थक हो जाती है। हो सकता है आप देखें कि सालों बाद गौरैया पास के किसी पार्क में लौट आई हैं। हो सकता है सर्दियों में पक्षियों का कोई झुंड गांव के किसी तालाब के पास आकर रुक जाए, और हो सकता है कि आपके पिता आसमान की ओर इशारा करते हुए कहें, जब मैं जवान था तब ये पक्षी यहां नहीं होते थे। इस तरह की बातचीत बहुत मायने रखती है, और ये अवलोकन भी मायने रखते हैं।
1: बिल्कुल, और काश ऐसा हो कि गौरैया वापस आ जाए, बिकॉज अब तो देखते हैं चारों तरफ तो गौरैया नजर ही नहीं आती। गणेश, मेनी ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स टुडे रिलाई हेवीली ऑन व्हाट पीपल रिपोर्ट फ्रॉम देयर लोकल सराउंडिंग्स। Community participation helps experts understand migration routes, breeding patterns, habitat loss and population decline.
0: और जो लोग पक्षियों को देखना शुरू कर देते हैं वो अक्सर प्रकृति की भी ज्यादा गहराई से परवाह करने लगते हैं। जो लोग कभी वेटलैंड्स को नजरअंदाज करते थे वो अचानक उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं। जो बच्चे पक्षियों को पहचानना शुरू करते हैं वो मौसमों, जंगलों, नदियों और जलवायु के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते चले जाते हैं।
1: एंड कम्युनिटी स्लोली रिकनेक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड देम। मुनीश, वन स्मॉल ऑब्जर्वेशन दैट लीड्स टू अवेयरनेस, एंड अवेयरनेस दैट लीड्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स पावरफुल इज़न्ट इट? And well, this year is especially significant because International Waterbird Census completes 60 years, which is a global effort that has helped monitor and protect migratory water birds across flyways around the world.
0: और शायद इस पूरे आंदोलन का सबसे दिल को छू लेने वाला पहलू ये है सायरा, कि अब प्रकृति का संरक्षण सिर्फ विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रह गया है, ये अब हर किसी का है। गिना गया हर पक्षी इस बात का संकेत है कि अब भी कोई है जिसे इसकी परवाह है।
1: एब्सोल्युटली मुनीश, एंड लेट्स टेल आवर लिसनर्स दैट वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, ऑफ कोर्स ऑन द सेकंड सैटरडे इन मे एंड इन आल्सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बिकॉज ये ही दो महीने हैं जब माइग्रेशन सबसे ज्यादा होते हैं। एंड यू नो अक्टूबर जब बहुत ज्यादा जहां ठंडी है, सर्दियां पड़ती हैं, वहां की बर्ड्स वापस आती हैं टूवर्ड्स वार्मर क्लाइमेट्स, and in May when the climates start getting very hot, then they go back to cooler temperatures. So these are two phases, these two months, they reflect the two distinct major migration seasons in the northern and southern hemispheres. These dates allow maximum global participation, enabling people to observe and protect birds during their peak spring and autumn movements.
0: Indeed Sara, and that's why we should sometime visit Sultanpur, which is well within Delhi NCR, and Of course, that place which is called Barkal, and there are many more places like Okhla Bird Sanctuary. I'm sure you must have been there.
1: Of course, I've heard of them, and I know that you are more of a traveler, and yeah, that's why you are sharing this with our listeners. So, of course, we should be inspired to, you know, visit the places that Monisha has just told. In fact, Okhla Bird Sanctuary ki aapne baat ki, bahut se log jante hi nahi ki wahan pe kitni khubsurat khubsurat pakshiyan, you know, aate hain, migratory birds. Even in Lodhi Gardens, Monish, isn't it that you know, if you take a walk in the morning, especially in these times of the year, then you start noticing that some birds, they, you know, that are not seen usually in India, they come. So they have probably traversed a journey of thousands of kilometers, and that's why they are here perched in the branches of your city. So
0: well, Sahara, that's why perhaps this Lodhi Garden has earned the epithet of what they say, urban oasis. Sometimes you will witness peacocks and skylarks and किंगफिशर्स.
1: यस,
0: इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट. तो दोस्तों, दुनिया को ये याद दिलाते हुए कि प्रवासन एक साझा प्राकृतिक चक्र है जो देशों, पारिस्थितिकी तंत्रों और लोगों को आपस में जोड़ता है. इसलिए अगली बार जब पक्षियों का कोई झुंड आपके ऊपर से गुजरे, तो शायद उस पल को आप नजरअंदाज न करें, ऊपर देखें, क्योंकि जो चीज आपको एक छोटी सी घटना लगती है, वो शायद इस ग्रह की कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाए.
1: That's right, Monish. So we close the topic of world migratory bird. Lekin सबसे ज्यादा क्लोजली कह सकते हैं, ऑब्जर्व अगर कोई चाहे पक्षियों को करे, चाहे नेचर को करे, चाहे समाज को करे, ताकि दुनिया बदल जाए, वो होता है राइटर, isn't it?
0: बिल्कुल.
1: We in our country are so fortunate to have some very, very great writers. And of course, since it's the month of May, तो जो greatest writer है हमारे country के कह सकते हैं, उनको हम लोग याद करते हैं.
0: Of course, Rabindranath Tagore, and he's definitely well known as a poet, writer, but he was much more like a composer and painter, and he introduced some new education system in India and a stalwart in his own right. बैशाख के 25वें दिन आज बंगाल कुछ अलग ही अंदाज में जागता है. सुबह की हवा में ऐसे गीत घुलते हैं जो दूर से सुनने वालों को भी जाने पहचाने से लगते हैं. सड़कों पर सफेद और लाल साड़ियां लहराती नजर आती हैं. प्रभात फेरी के जुलूसों में युवा कंठ एक साथ गूंज उठते हैं, और कहीं कविता, संगीत और स्मृतियों के बीच एक पूरी संस्कृति पल भर के लिए ठहर कर रविंद्रनाथ ठाकुर की उस असाधारण आत्मा का उत्सव मनाती है.

0: Today marks the 165th birth anniversary of Gurudev, and from the very first light of dawn, celebrations have already filled hearts across the country and beyond. In schools, cultural organizations and neighborhood gatherings, people have come together out of affection for the great writer.
1: दोस्तों, एक सदी से भी पहले लिखे गए गीत आज भी उसी भावना के साथ गाए जाते हैं. बच्चे ऐसी कविताएं सुनाते हैं जिन्हें शायद वो आज पूरी तरह न समझते हों, फिर भी किसी न किसी तरह उन्हें गहराई से महसूस करते हैं. रविंद्र संगीत की ताल पर नृत्य प्रस्तुतियां बड़े ही सलीके से प्रस्तुत होती हैं, जबकि बड़े बुजुर्ग चुपचाप उनके साथ गुनगुनाते हैं, अपने साथ किसी और दौर की वो यादें ताजा करते हुए.
0: And nowhere does the celebration feel more timeless than at Shantiniketan. At 5 o'clock in the morning, the traditional homage began at Gaurprangan with the soulful strains of Baitalic songs. And before the world had fully awakened, music had already taken over the campus.
1: और बाद में सुबह वो पूरा क्षेत्र जन्मदिन समारोहों, प्रस्तुतियों और श्रद्धांजलि से जीवंत उठता है, जिसमें भक्ति और संस्कृति का सबसे सुंदर संयोजन देखने को मिला करता है. रविंद्र जयंती की एक खास बात यह है कि कभी भी एक औपचारिक आयोजन जैसा नहीं लगता, ये तो एक व्यक्तिगत अनुभव होता है. हमारे कोलकाता संवाददाता की रिपोर्ट भी तो यही कहती है.
2: Today is 25th Boishakh, an auspicious day, birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Thakur, which is celebrated across the state. This day has been selected for the swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal. Prime Minister

0: moment of heartbreak suddenly finds comfort in his lines, and his work lives inside everyday life. And perhaps that is why his influence continues to travel across generations and borders.
1: दरअसल दोस्तों, भारत से लेकर बांग्लादेश तक, विश्वविद्यालयों के सभागारों से लेकर विदेशों में छोटे छोटे सामुदायिक भवनों तक पूरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें रविन्द्र संगीत, काव्य पाठ, नृत्य नाटिकाएं और उनकी रचनाओं से प्रेरित नाट्य प्रस्तुतियां शामिल हैं।
0: Yes, leaders across the country also paid tributes to Gurudev today. The Vice President reflected on how his contributions went far beyond literature. The Prime Minister described him as a writer, thinker and poet of extraordinary brilliance whose words gave voice to humanity's deepest emotions and India's cultural confidence.
1: Raksha Mantri Rajnath Singh ne kaha hai ki Gurudev ne ek Bharat Shreshth Bharat ki bhavana ko sudrad kiya, jabki Grih Mantri Amit Shah ne is baat par प्रकाश डाला कि टैगोर के साहित्य, संगीत और दर्शन ने स्वतंत्रता की भावना में किस तरह एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था।
0: That's right, Monish. Very few individuals have shaped the soul of a nation the way Rabindranath Tagore has. And he has given the world Gitanjali, a work that carried Indian literature to the global stage.
1: उन्होंने भारत को उसका राष्ट्रगान जनगण मन दिया, ऐसे शब्द जो आज भी हर दिन लाखों लोगों को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। लेकिन पुरस्कारों और उपलब्धियों से भी बढ़कर उन्होंने लोगों को कुछ ऐसा दिया जो कहीं अधिक स्थायी है, संवेदनशीलता, चिंतन और जीवन को गहराई और सौंदर्य के साथ देखने का एक अनूठा नजरिया।
0: Yes, absolutely. Even today, in a fast-moving world filled with noise, Tagore's words continue to feel calm, relevant and deeply humane. And maybe that is the true magic of Rabindra Jayanti.
1: दरअसल ये केवल किसी जन दिवस का उत्सव मात्र नहीं है। ये इस बात की याद दिलाता है कि कला समय की सीमाओं से परे हो सकती है, कि कविता आज भी घावों को भर सकती है, और ये कि ज्ञान और करुणा से भरी एक आवाज संगीत के थम जाने के बहुत बाद भी आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रह सकती है। और सायरा, अब वक्त हो गया है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास उनके पास।
0: That's right, we begin Parikrama's journey from down south in Thiruvananthapuram. The synchronized census of the endangered Nilgiri Thar is continuing across the western Ghats, with Kerala emerging as the major habitat of the species, according to preliminary findings from the Kerala Forest Department. Forest officials said the latest estimation exercise being carried out jointly by Kerala and Tamil Nadu Forest Departments has so far recorded a global population of around 2,000 Nilgiri Thars, of which more than 1,300 are in Kerala. The survey will continue till 17th of May. Let's hear more from our correspondent.
2: Iravikulam National Park in Idukki District, Keralam continues to be the main stronghold of the species, with 841 individuals recorded from the park alone. Nearly 90% of Keralam's Nilgiri Thar population is concentrated in the Moonar landscape. The census, which began on April 24th, covers 89 survey blocks in Keralam and 182 blocks in Tamil Nadu. In Keralam, the survey extends across 19 forest divisions from Thiruvananthapuram to Wayanad. Forest personnel and wildlife experts are using scientific methods including bonded count and double observer method. Camera traps also have been deployed in selected areas to improve monitoring in difficult terrain. The Nilgiri Thar, endemic to the Western Ghats, is listed as an endangered species under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. Officials say the ongoing exercise is aimed at assessing population trends, habitat conditions and conservation threats, including habitat fragmentation, climate change and human disturbance. The Kerala Forest Department says the findings underline the importance of protected grassland ecosystem in Moonar and Iravikulam for long-term survival of the species. Nidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: दोस्तों, अंडमान निकोबार प्रशासन ने स्वराज द्वीप में दो नए विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है। राधानगर बीच पर समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं लाइट हाउस डाइव साइट पर 22.3 मीटर ऊंची ह्यूमन स्टैक बनाकर दूसरा रिकॉर्ड स्थापित किया गया। यह उपलब्धि न सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह बल्कि समूचे देश के लिए गर्व का एक क्षण है,

0: सुनिए एक रिपोर्ट।
1: अंडमान निकोबार प्रशासन ने स्वराज द्वीप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 2 नए विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए। राधानगर बीच पर समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। इस अभियान में प्रशासन, अंडमान निकोबार पुलिस, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और अनुभवी स्कूबा डाइवर्स ने मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा लाइट हाउस डाइव साइट पर पानी के भीतर 22.3 मीटर ऊंची ह्यूमन स्टैग बनाकर दूसरा विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया गया। इस पूरे अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही और सभी प्रतिभागियों के समर्पण, साहस और टीम वर्क की सराहना की गई। यह उपलब्धि न केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है।
2: And now we head towards my favorite place, Monish. We're going to Goa. Well, to safeguard Goa's rich cultural heritage and support the next generation of performers, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has launched a new scholarship scheme dedicated to traditional arts. This initiative aims to provide financial stability to students pursuing various disciplines from classical music to the ancient folk traditions of the state. Let's hear more from our correspondent.
3: The newly announced scholarship is designed to encourage youth to master traditional performing arts, including classical music, Bharatanatyam, Kathak and folk dance. Notably, the scheme places a strong emphasis on indigenous Goan art forms such as Dashavatar and local theatre. Under this initiative, selected students will receive financial assistance ranging from 3,600 to 9,000 rupees to help cover their training fees. The Chief Minister emphasized that the primary objective of this scheme is to inspire young artists and ensure that Goa's vibrant cultural legacy continues to thrive. By providing this support, the government hopes to create a sustainable environment for traditional performers who are the custodians of the state's heritage. Aspiring artists are encouraged to take advantage of this opportunity as the application process is already underway. Interested candidates must submit their applications by the 30th of May to be considered for the scholarship. For Parikrama, Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
0: और सायरा अब ले चलिए हमको खेल के मैदान में और हमें बताइए क्या है वहाँ हलचल।
2: वेल, इन आईपीएल क्रिकेट राजस्थान रॉयल्स विल फेस गुजरात टाइटंस एट सवाई मानसिंह स्टेडियम इन जयपुर। द मैच विल स्टार्ट एट 7:30 PM।
0: और दोस्तों, आइए अब हम याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करें उन महान व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
4: आज हम जाने माने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ। वो उदार राजनेता और समाज सुधारक थे। गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे।
5: गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गांधी जी गोखले को निपुण राजनेता मानते थे। 12 अक्टूबर 1896 को पुणे में गोखले के साथ पहली बैठक को याद करते हुए गांधी जी ने लिखा था,
4: मैं गोखले से मिला, वो मुझे फर्ग्यूसन कॉलेज के मैदान में नजर आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्यार से मेरा स्वागत किया। उनके बर्ताव ने फौरन मेरा हृदय जीत लिया। उनके साथ वो मेरी पहली बैठक थी, तब भी यूं लगा जैसे हम कोई पुराने मित्र हैं। सर फिरोज शाह तो मेरे लिए हिमालय के जैसे थे, लोकमान्य सागर की तरह थे, लेकिन गोखले तो गंगा की तरह थे। कोई भी उस ताजगी भरी गंगा में स्नान कर सकता था। हिमालय तो अलंघ्य था और सागर को कोई आसानी से लांघ नहीं सकता, लेकिन गंगा वो तो आपको गले लगाने के लिए आमंत्रित करती है। नाव और चप्पू के संग गंगा में जाना बहुत आनंददायक है। गोखले ने बारीकी से मुझे परखा, जैसे विद्यालय का शिक्षक प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार को परखता है। उन्होंने मुझे बताया कि किससे मिलना है और उनसे कैसे मिलना है। उन्होंने मुझे भाषण देने को कहा और आश्वासन दिया कि वो हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं उल्लास के साथ विदा हुआ। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गोखले ने जिंदगी भर मेरे हृदय में जो स्थान बनाया वो आज भी है और अत्यंत विशिष्ट है।
5: 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन।
2: एंड नाउ वी आर रिमेम्बरिंग सम मोर पर्सनालिटीज, मोनिश। वी आर स्टार्टिंग विद महाराणा प्रताप।

0: और प्रताप सिंह द फर्स्ट, वेल ही वॉज द किंग ऑफ किंगडम ऑफ मेवाड़, ये हम सब जानते हैं. एंड ऑफ कोर्स टिल द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान. एंड ही वॉज देयर अंटिल हिज डेथ इन 1597. नोटेबल फॉर लीडिंग द राजपूत रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ मुगल एम्परर अकबर, इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ हल्दीघाटी.
1: दोस्तों, महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञता के लिए अमर है. वे उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के थे और वो तिथि धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि राणा प्रताप का जन्म हुआ. और दोस्तों, आज ही है पुण्यतिथि तेनजिंग नोरके की. उन्हें शेरपा तेनजिंग के नाम से भी जाना जाता है. दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाले वो पहले भारतीय थे. उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही एडमंड हिलरी के साथ 29 मार्च 1953 को 8,848 मीटर ऊंचाई वाली चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी. भारत सरकार ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 1954 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की दार्जिलिंग में स्थापना की गई और तेनजिंग नोरके को उसका निदेशक बनाया गया. उनका निकनेम टाइगर ऑफ स्नोज रखा गया.
0: That's right, Monish. We are also remembering a very fine playback singer who is considered one of the greatest and most popular Indian male film and ghazal singers. We are talking about Talat Mehmood. Yes, today is Talat Mehmood's death anniversary. And although he tried his luck as a film actor, Monish, wo acting mein unko itni zyada jo hai keh sakte hain success nahi mili. But of course, we know that his voice was magical. Aur kitne saalon tak unki awaaz jo hai बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को उन्होंने आवाज दी, चाहे वो दिलीप कुमार हो, चाहे सुनील दत्त हो, isn't it? And the government of India, of course, conferred the Padma Bhushan on Talat Mehmood in the year 1992.
1: तो क्यों ना फिर तलत साहब की आवाज में सुनी जाए उनकी कुछ शानदार अदायगी, जिसे हम आप अक्सर गुनगुनाया भी करते हैं.
0: बिल्कुल.

0: क्या याद दिला दिया आपने, सुनील दत्त साहब जो हैं फोन पर गीत गा रहे थे
1: नूतन के लिए।
0: और बताइए और कौन से गीत आपको उनके याद आते हैं?
1: वेल बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट रोमांस एंड ट्रेजेडी ये दो मूड्स के तो कह सकते हैं तलत महमूद ने महारत हासिल कर ली थी, तो क्यों ना अभी तो हम लोगों ने एक बहुत ही रोमांटिक गजल या गीत जो कह लिए सुना, एक जो ट्रेजेडी या ट्रेजिक गाने होते हैं दर्द भरे, क्यों ना वो भी सुन ले।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, दरअसल यहीं से तलत और दिलीप कुमार का एक अनूठा संयोग बना जो कई फिल्मों में दोहराया भी गया। और महमूद ने हिंदी की 13 फिल्मों और 3 बांग्ला फिल्मों में तलत साहब ने कहना चाहिए अभिनय किया और 17 भारतीय भाषाओं में सायरा उन्होंने गाने गाए।
1: Wow, that's amazing. And of course, we all know के तलत महमूद के और कितने सारे गाने हैं, बट जाहिर है इतने कम वक्त में हम लोग सिर्फ दो ही आपके सामने प्रेजेंट कर पाए। And now, of course, the clock is showing that it's now time to wrap up the show.
0: बिल्कुल, इजाजत दीजिए दोस्तों, हम लेते हैं आपसे आज्ञा।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया है।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

5:11:16 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। शनिवार की शानदार शाम है जी। जानदार इसलिए नहीं कह रही हूँ, गर्मी बहुत है। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। शुरू होता है प्रोग्राम गाते गुनगुनाते, और आइए कुछ रोमांटिक गीतों के साथ हम हाथ मिलाते हैं और आगे बढ़ते हैं।

हमने शुरुआत कर दी है जी प्रोग्राम की, और पहला गाना जो है वो आपको एक दूजे के लिए फिल्म से सुनवाया। 1981 में ये फिल्म आई। अच्छा, मैं ये सोच रही थी, आपने सुना होगा, देखा होगा, आप कई बार कहते भी होंगे 90s के रोमांटिक गीत बहुत चर्चा होती है इन गीतों की। लेकिन ऐसे ही ख्याल आया कि देखें कि 80s के रोमांटिक गीत जो रहे वो कौन कौन से रहे और कैसे कैसे रहे, क्योंकि जब मैंने थोड़ा सा खंगाला देखा तो ये तो वो गीत हैं जो आज भी गाए जाते हैं, जिनकी आज भी प्यार की सरजमी पर बहुत मांग है जी, और इन्हें गाकर आप अपने दिल का जो इजहार है वो सामने वाले तक पहुंचाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए 80s के कुछ रोमांटिक गीत जो हैं उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब अगला गीत जो मैं आपको सुनवाने वाली हूं ये है आसपास फिल्म, 1981 में ये फिल्म आई। और इस फिल्म के बारे में यही कह सकते हैं कि देखिए, एक तो ये लव स्टोरी थी। अच्छा, कुछ खास है इस फिल्म के बारे में, और वो ये कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया जे ओम प्रकाश ने, और स्क्रीन पर बताने की जरूरत नहीं है, देखी होगी आपने फिल्म। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को हमने देखा, प्रेम चोपड़ा साहब भी थे, और म्यूजिक जो इस फिल्म का था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया। अब ये जब आप फिल्म देखेंगे या देखी होगी, आपने नोट किया होगा कि जब ये फिल्म स्टार्ट होती है तो इसमें सबसे पहले फिल्म में रफ़ी साहब के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि भाई ये इनकी इस फिल्म में गीत है जो इनकी आखिरी रिकॉर्डिंग रहा। मैंने आपको पहले के प्रोग्राम्स में, शोज में भी बताया हुआ है, तू कहीं आसपास है दोस्त, वो उनका आखिरी रिकॉर्डेड गीत रहा। तो इसकी फिल्म की जो शुरुआत है उसमें एक तरह से ट्रिब्यूट दिया गया है रफ़ी साहब को, और ये बताया गया है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है जो मुझे भी अभी पता चला, और मैं आज घर जाते ही शाम को मैंने ये फिल्म देखनी है, आप भी देखिएगा। और वो क्यों देखिएगा, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश रहे, और इसमें उन्होंने उस 7 साल के बच्चे को लिया है जो आगे चल के सुपरस्टार बना, और आज की तारीख में हम बड़े प्यार से और गर्व से कहते हैं कि ये ऋतिक रोशन है। अब वो 7 साल का बच्चा जो है वो एक गीत में डांस करते हुए हेमा मालिनी के पास आता है, और हेमा मालिनी को धर्मेंद्र साहब का लिखा हुआ प्रेम पत्र जो है वो पकड़ाता है। अब ये देखना बड़ा ज़रूरी है। अब शहर में चर्चा है, ये गाना याद रखिएगा। वैसे मैं ये गाना अभी आप तक नहीं पहुंचा रही हूँ, ये तो हम जब फिल्म देखेंगे एक बार फिर से दोबारा, तब हम इस बात को नोट करेंगे कि वो 7 साल का ऋतिक रोशन, अब पता चल गया ना ऋतिक रोशन साहब, अब देखेंगे उसको एक अलग नजरिए से। लेकिन फिलहाल इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक गीत। हाँ।

नसीब फिल्म का अब हम आपको एक गीत सुनवाने वाले हैं और इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इस फिल्म के लिए कहा जाता है मल्टी स्टारर फिल्म और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने स्क्रीन पर देखा अमिताभ बच्चन साहब, शत्रुघ्न सिन्हा जी, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम, प्राण, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर जी, इतने सारे स्टार्स को हमने इस फिल्म में देखा। ये फिल्म मई के महीने में ही रिलीज हुई 1981 में और अगर हम इसको बॉक्स ऑफिस की नज़र से देखेंगे तो ये एक सक्सेसफुल फिल्म रही और इसके बाद इसे तमिल में भी बनाया गया, तेलुगु में भी बनाया गया अलग अलग नामों से और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का इसमें म्यूजिक रहा। मैं आपको इस फिल्म का एक गीत सुनवाने वाली हूँ जो लता जी का गाया हुआ है और ये गीत आपने बहुत बार सुना भी है लेकिन मैंने इस गीत में लता जी की एक बात नोट की, आप भी नोट कीजिएगा, मैं बस प्ले करती हूँ आपके लिए। इसमें जब वो गाती हैं कि मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि, एक एक लाइन में वो कहती हैं मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में, तेरे नहीं तेरे नसीब में। ध्यान से सुनिएगा इस गीत को, आइए सुनते हैं।

जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माई यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी, और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी, और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।

5:34:30 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 और आपके साथ आज शनिवार की शाम सीमा वर्मा है और हमारे साथ कुछ चुनिंदा 80s के रोमांटिक सॉन्ग्स, उनमें से एक आप मेरी आवाज के पीछे पीछे सुन पा रहे हैं। ये तो कह सकते हैं कि एवरग्रीन गाना है, कभी भी आप किसी अपने को सुना दें

गाते गुनगुनाते आपका और मेरा यानी सीमा वर्मा का सफर चल रहा है। कहाँ से शुरुआत की हमने और अब हम कहाँ आप पहुंचे हैं, अगर आपको मैं समय बताना चाहूं लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा है हमारे पास टाइम। अब जो गीत मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं वो है फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का। ये 1989 में फिल्म आई और स्क्रीन पर मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित को हमने देखा। इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित जी को फिल्म फेयर क्या नॉमिनेशन मिला। हर बार कहती हूँ कि नॉमिनेशन अपने आप में इसीलिए बड़ा होता है क्योंकि आपको लोग रिकग्नाइज करते हैं। अवार्ड आपको मिला हो नहीं मिला हो वो एक अलायदा बात है, लेकिन आपकी नज़र आपके क्राफ्ट पर जब लोगों की पड़ती है तो नॉमिनेशन आपको मिलता है। इस फिल्म का बहुत ही एक सॉफ्ट टेक्सचर का गाना है, दिल की बात है, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कही है। आइए इसे सुनते हैं। अच्छा मैं आपको ये

तो बता दूं कि ये गीत गाया किस किस ने है। बप्पी लहरी साहब ने गाया है, कई बार अपना म्यूजिक तो वो देते थे लेकिन उसके साथ साथ गाते भी थे, आशा जी ने साथ दिया है।

इधर उधर के सुनाए लाख अफसाने, इधर उधर के सुनाए लाख अफसाने, दिल की बात सुनाने का हौसला नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है, लेकिन जब दिल यह हौसला कर लेता है और सामने वाले तक अपने दिल की बात पहुंच जाती है, तो फिर प्यार के फूल तो खिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है, और ये मैं सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगला गीत जो है वो भी हमारी इस बात से, इस शेर से मेल खाता है। ये हम आपको सुनाने जा रहे हैं जी, सागर फिल्म का गीत। अब सागर फिल्म अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट रही कुछ एक मुद्दों की वजह से। एक तो ऋषि कपूर साहब और इसकी हीरोइन कौन भला, देखिए मेरे जहन से ही उतर गया कि ऋषि कपूर के साथ कौन हुई, आप ज़रा बताइए। मैं आपसे बात करते करते अभी याद करती हूँ कि कौन रही इनकी हीरोइन। शक्ल याद आ रही है, लेकिन ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। डिम्पल कपाड़िया, जी हाँ ऐसा होता है जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो होता है। एक तो कई सालों के बाद ये इस फिल्म में आए, बॉबी के बाद आए। उसके बाद इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें, लिरिक्स की बात करें और स्क्रीन प्ले की बात करें, तो जावेद अख्तर साहब ने कमाल किया, आर डी बर्मन साहब का संगीत। और इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का डिम्पल कपाड़िया जी को अवार्ड मिलता है, बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए कमला हसन को अवार्ड मिलता है। फिर जो गीत मैं आपको सुनाने वाली हूँ अब, उसके लिए किशोर दा को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिलता है, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड है, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का कमल हसन साहब को ये अवार्ड मिलता है। नॉमिनेशंस भी बहुत सारे हुए, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो ये फिल्म अपने आप में बहुत अच्छी फिल्म साबित हुई, लोगों को बहुत पसंद आई और अपने टाइम की हिट फिल्म साबित हुई। आज भी इस गीत को सुनते हैं तो मंजर जहन में एकदम से आ जाता है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई 1985 में। आइए सुनते हैं उस गीत को जिसके लिए किशोर दा को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।

सागर फिल्म के इस गीत को सुनने के बाद मेरी नज़र जो है वो घड़ी की तरफ गई है। अब 5:53 और 15 सेकंड, नहीं जी 20 सेकंड हो गए हैं और अब ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। एक गाना हम मिलकर सुन सकते हैं और ऐसे में चलिए उस गीत को सुनते हैं जो अपने टाइम का बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना जैसे जुबान पे सट जाने वाला गीत रहा। और क्यों ना हो, क्योंकि 1989 में ये फिल्म आई और इस फिल्म ने न जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आप सोच रहे होंगे कौन सा, अच्छा म्यूजिक सुनाती हूँ, गेस कीजिए। बिल्कुल ठीक गेस किया जी आपने, मैंने प्यार किया। भाग्यश्री और सलमान खान की ये फिल्म रही और सभी रिकॉर्ड तोड़े। इसमें जितने भी गाने हुए सब अपने आप में कमाल गीत, गजब के गीत हुए। आइए उनमें से एक रोमांटिक गीत सुनते हैं और आपको मैं सोच रही हूँ कि इस गीत के हवाले कर देती हूँ। आप रहिए अपनी यादों के साथ, इस गीत के साथ। सीमा वर्मा को इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए FM गोल्ड। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल

0: कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Radhikari at a grand ceremony held at Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs, including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu, were sworn in as cabinet ministers. The newly elected MLAs of the West Bengal Legislative Assembly will take oath on the 13th of May. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naveen, and other leaders of the Bharatiya Janata Party were present at the swearing-in ceremony. Prime Minister Modi congratulated Shubhendu Adhikari on taking the oath as the Chief Minister of West Bengal. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK has claimed that it has secured support of 120 MLAs to form a new government in the state. Tamilaga Vetrikaragam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, required the majority mark of 118 in the 234-member house to form a new government. The party said both the VCK and the IUML have extended unconditional support to it for government formation. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested yesterday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. Defence Minister Rajnath Singh said the successful flight test will add an incredible capability to the country's defence preparedness against the growing threat perceptions. The Enforcement Directorate, ED, has arrested Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in connection with an alleged money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited. Earlier, the ED had conducted operations at five locations in Delhi, Gurugram and Chandigarh in connection with the case. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. At around 11 a.m, the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Hyderabad to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will embark on a two-day visit to Gujarat starting tomorrow. On Monday, Mr. Modi will participate in Somnath Amrit Mahotsav, marking the 75th anniversary of the Somnath Temple's restoration. The government has announced the winners of the National Panchayat Awards 2025. 42 panchayats from across the country selected for the honours, according to the Ministry of Panchayati Raj, Karnataka has secured the highest number of awards with 6 panchayats, followed by Andhra Pradesh and Odisha with 5 awards each. The award distribution ceremony will be held in New Delhi on the 3rd of next month. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave conditions at isolated places over Gujarat and West Rajasthan. The weather agency predicted heavy rainfall over Kerala, Lakshadweep, South Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 to 3 days. The IMD has issued a yellow alert in 9 districts of Kerala today. In archery, Sahil Jadhav won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China today. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player cum coach Martin Damsbo 147-144 in the bronze medal playoff. The Wrestling Federation of India, WFI, today issued a show cause notice to grappler Vinesh Fogat, accusing her of indiscipline and anti-doping rule violations. And with that, we end this news bulletin.

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड। शाम के 6:11 और 4 सेकंड हो गए हैं और शनिवार की इस गर्मी वाली शाम में दिल को ठंडक पहुंचाते हुए कुछ गीत लेकर मैं हूं आपके साथ रेशमा। सुनते हैं फिल्म याराना से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

और श्रोताओं, 6:15 हो गए हैं और बस कुछ ही देर में एफएम गोल्ड पर समय होगा संस्कृत समाचारों का, यानी 6:20 पर। तो एक गीत सुनने का और समय है हमारे पास। आपको सुनाती हूँ फिल्म सागर से ये गीत।

0: अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे विंशत्युत्तर शतं विधायकानां समर्थनं वर्तते। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणेन अशेषे हि देशे विवादानां सौहार्दपूर्ण रीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम्। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबैगो देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मेलनं साधितवान्। अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्। अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15 वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रवि श्री शुभेन्दु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे विंशत्युत्तर शतं विधायकानां समर्थनं वर्तते। चतुस्त्रिंशदधिक द्विशतं सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18 शतं विधायकाः आवश्यकाः आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचने 88 आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सी जी सेफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति, येन दलस्य संख्या 70 भविष्यति। तथापि कांग्रेस दलस्य 5 विधायकाः सीपीआई सीपीआईएम वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं द्वौ द्वौ विधायकौ च मिलित्वा सहायक दलानां कुलसंख्या 13 वर्तते, येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणम् अद्य सम्पूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्री पाण्डेयः अवोचत् यत् 23-2000 25-2000 यावत् 12 राष्ट्रिय लोक न्यायालयानां आयोजनं विधाय 26 कोटि प्रकरणानां समाधानम् अभवत्।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकरः भारत त्रिनिदाद टोबैगो देशानां मिथः पारंपरिक संबंधानां प्रशंसाम् अकरोत्। त्रिनिदाद टोबैगो इत्यस्य विदेश तथा कैरिकॉम प्रकरणानां मंत्रालयस्य समारोहे डॉक्टर जयशंकरेण द्वयोः देशयोः प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधानां अथ ऐतिहासिकतायाः उल्लेखं कृतम्। भारतस्य त्रिनिदाद टोबैगो अमुना सह परम्परागत रूपेण मैत्रीपूर्णाः सम्बन्धाः वर्तन्ते। उभयोः देशयोः जनाः वेशभूषां क्रीडां आहार व्यवहारं च समेत्य परम्पराः यावत् नैकेषु विषयेषु साम्यं संददते। डॉक्टर जयशंकरेण प्रधानमन्त्रिणा कमला प्रसाद विशेषवर्येण सह मेलनं विधाय द्विपक्षीय सहयोगं इतोपि सुदृढीकर्तुं चर्चा कृता। यात्रावधौ पर्यटनं विदेश कैरिकॉम मंत्रालय भवनस्य सौरोर्जा संचालनं विविध परियोजनाः अथ च आयुर्वेद केन्द्रस्य स्थापनां समेत्य नैकेषु विषयेषु सहमतिः जाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः कर्णाटकस्य बेंगलुरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरमपि उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैदराबाद नगरे प्रायः 9,500 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तत्र हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां राष्ट्रिय राजमार्गस्य चतुः भागपरस्य निर्माणस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री वारंगल स्थले पीएम मित्रा पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य उद्घाटनं करिष्यति। सममेव श्रीमोदी हैदराबाद अत्याधुनिकं कर्करोगपरं चिकित्सालयमपि लोकार्पयिष्यति। अद्य गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य 65वीं जयन्ती वर्तते। दिनमिदं उपलक्ष्य शान्तिनिकेतनं विश्वभारती विश्वविद्यालयं अथ बांग्लादेशं समेत्य जगतः अनेकेषु स्थलेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाः समायोजिताः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमितशाहः अथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः पोचिशे बोईशाख इत्येतस्य अवसरे गुरुदेवाय श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च केवाईसी मानकानां उल्लंघनमुद्दिश्य हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस सहैव यस बैंक इत्यनयोः उपरि मौद्रिक दण्डः आरोपितः। पृथक पृथक वक्तव्येषु भारतीय रिजर्व बैंकेन सूचितं यत् तेन हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः प्रस्थापितः। अपरत्र यस बैंक इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः आरोपितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामि 5 दिवसेषु केरलम राज्यस्य विविध जनपदेषु विद्युत्पातेन प्रचण्ड वायुना च सह अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन अद्य राज्यस्य 9 जनपदेषु पीतवर्णीया संचेतना अपि प्रसारिता। श्वः अपि संचेतना तावत् 7 जनपदेषु यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूल वातावरणस्य कारणात् मत्स्याजीविभ्यः अद्य केरल लक्षद्वीपतटेषु गमनपरिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्णाटकतटेषु मत्स्यग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः एतावता नैव उपस्थापितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा तावत् सायं 7:30 जयपुर नगरे आरप्स्यते। अवधेयं यत् अंकतालिकायां राजस्थान दलं चतुर्थे गुजरात दलं च पंचमे स्थाने स्तः। इति वार्ताः।

0: Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix the code 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi or from your mobile number. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Ambarish Saxena.
1: Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. आज के इस अंक में हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार के हलचल पर एक नजर डालेंगे। आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह आज हम आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे सीधे नंबर हैं 2331-4444 और 2331-0481। हमारा तीसरा नंबर है 2371-7106। श्रोताओं, इन नंबरों से पहले 011 डायल करना न भूले। प्रमुख खबरों का विश्लेषण करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार अम्बरीश, नमस्कार निशित और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
1: और सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर। अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार।
0: The benchmark domestic indices rise for the second straight week. Sensex and the Nifty adds over 0.5%. Major US stock indices continue to hit record highs as investors bet on growth in artificial intelligence stocks. And global crude oil price slumps over 6% this week.
1: घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त जारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी में 0.5% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। प्रमुख अमरीकी शेयर बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयरों में तेजी के चलते सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई तक जा पहुंचे और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में सप्ताह 6% से अधिक की गिरावट दिखाई दी।

0: जी नमस्कार. इन शॉर्ट, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट 20 लाख फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, व्हाट वुड यू एडवाइस मी?
1: Dr. Hemant, the advice on investment is normally given on the basis of profiling of the investor. You know, because I'll tell you what parameters we normally measure when we give that advice. One, of course, is your age, then your risk-taking appetite, then what is the purpose of investment? Do you need it for retirement? Do you need it for some particular event like a wedding of a child? Do you need it for collecting money for building a house and so on and so on? So although this is a very personalized scenario, but then since you've asked the question, so I'll give you a general strategic advice. Although keep in mind the disclaimer which is given in the beginning of the program, that the views expressed here, you must consult your own registered, SEBI-registered financial advisor as well. But in a situation like this, when we are going through war, I think the best advice is to spread your risk across 4 or 5 asset classes. And if I was you, then I would have put it, equally distributed in stocks, well-researched stocks. Well-researched stocks consulted by an expert, taking advice from an expert, mutual funds, real estate, gold and silver, and I would have kept some liquidity also. So I in an ideal situation, these 5 asset classes should be kept in mind, Dr. Hemant. I've given you a clue. You can probably go ahead. But as I said, this is a very specific thing because some of the people who've got a very good risk-taking appetite, to them, we allocate more in stocks and equity mutual funds. Well, some people who've got very low risk appetite, we recommend more in fixed return type investments. So it's to say something on a very general basis may be unfair, but I hope I have given you a clue to spread your risk. It's in investment. We've got a very common saying that never put all eggs in the same basket. I see a lot of people doing that mistake. So don't put all the money in one single asset class. That will spread your risk and it will keep you immune from knee-jerk kind of reactions in a particular asset class.
2: And keep away from F&O as well.
1: Oh yes, that obviously goes. That obviously goes. SEBI says 90% of the people there lose money. I'm sure Dr. Hemant, from his voice, doesn't look as aggressive and adventurous as going for F&O. Yeah, that's it. Thank you for reminding.
2: Next caller is Amit from Delhi. Amit, welcome.
3: Sir, good evening.
2: Good evening.
3: सर मेरा क्वेश्चन है, इतना मेरा पोर्टफोलियो, लास्ट टाइम मैंने बात करी थी आपसे, मेरा पोर्टफोलियो 50% माइनस में था, अभी 40% है
1: जी.
3: तो क्या अभी एवरेज करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन है कि अभी कहीं सोने में या कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का टाइम सही है कहीं?
1: देखिए अहमद, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है और अभी आपने कहा 50% नेगेटिव में है और अभी वो 40% आया, इसका मतलब कुछ रिकवर किया है. देखिए मैं मुझे नहीं मालूम आपके टोटल पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा है जो आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है जो माइनस में है, क्योंकि उस पर अगर बहुत थोड़ा सा हिस्सा है तो शायद एडवाइस कुछ और हो सकती है. परंतु मैं लॉस बुक करने का शायद रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अमित मेरा ऐसा मानना है कि शेयर मार्केट में जो भी व्यक्ति आते हैं उनको एक लंबे वक्त का नजरिया रखना चाहिए, और वो लंबा वक्त 5 से 10 साल का होता है. और इस लंबे वक्त में खूबसूरती क्या होती है? इंतजार तो बहुत होता है, ये कोई बहुत पेनफुल इंतजार होता है कई बार, परंतु मैंने ये देखा कि स्टॉक मार्केट में जिसने भी बड़ा पैसा बनाया उसने लंबे वक्त रहकर बनाया. और लंबे वक्त में फायदा क्या है कि कोविड हो गया, ये ईरान का युद्ध हो गया, कोई बीच में 1-2-3 साल की मंदी आई, तो ये सब चीजें उसमें डाइजेस्ट हो जाती हैं. तो इसलिए मैं आपको लॉस बुक करने की तो बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा. आप अगर रख सकते हैं इसको तो जरूर रखें, कोई मजबूरी है या आपको पैसे की तुरंत जरूरत है और आपको बहुत या आपको दिन रात वो सता रहा है तो बात अलग है. पर मैं इसको आपको रखिए, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे स्टॉक्स लिए होंगे और वो रिकवर करेंगे. आपने पूछा कि म्यूचुअल फंड या गोल्ड का, बिल्कुल इस समय गोल्ड में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करते और लंबे वक्त के लिए, और इसमें लंबा वक्त थैंकफुली 10 साल का नहीं है, गोल्ड में मुझे लगता लंबा वक्त 2 से 5 साल का है. तो अगर आप थोड़ा थोड़ा जब जब करेक्शन उसको थोड़ा थोड़ा करके लें, यही म्यूचुअल फंड पे अप्लाई कर. इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं दोनों हमारे माननीय एंकर के परमिशन से बोलना चाहूंगा कि एसआईपी जब लोग करते हैं तो मैंने देखा गिरती मार्केट में लोग अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, और जो थ्योरी है वो कहती है कि उसी में तो एसआईपी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वही तो एक लेवल है जब आपकी एसआईपी नीचे के लेवल पे खरीद रही है. तो इसलिए बिल्कुल आप म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी के जरिए आइए. मैंने तो एसआईपी का पहले भी बताया था, नया नाम रखा है, सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं. तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करिए, गोल्ड में भी, म्यूचुअल फंड में भी, और लंबे वक्त का हमें नजरिया रखिए. आप मुझे उम्मीद है आप निराश नहीं होंगे
4: जी. और दिल्ली से हमारे श्रोता रवि लाइन पे है. रवि नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. हेलो रवि जी, आप लाइन पे हैं.
2: चलिए शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन
4: तक। तो चलते हैं आज की साप्ताहिक समीक्षा देख लेते हैं शेयर बाजार की। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ोतरी दर्ज की गई। कच्चे तेल के मूल्यों में कमी, राज्यों से मिले अनुकूल चुनावी परिणाम और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड्स पर मिलने वाली ब्याज दर में नरमी के चलते ये तेजी दिखाई दी। सप्ताह के दौरान बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 414 अंक यानी आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 77,328 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 178 अंक यानी 0.74% की बढ़त के साथ 24,176 पर जा पहुंचा। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार ने फ्रंट लाइन सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप 100 सूचकांक में 3.5% से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 4% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में इस सप्ताह 43 पैसे की मजबूती दिखाई दी। एक डॉलर की कीमत 94.48 रूपये दर्ज की गई और सप्ताह के दौरान शेयर बाजारों के सूचकांक में बढ़त के बावजूद निवेशक सतर्क दिखाई दिए। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनातनी, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार पैसे की निकासी और चौथी तिमाही के मिले जुले नतीजों के परिणाम स्वरूप सप्ताह के दौरान उथल पुथल बनी रही। शरद जी क्या कहेंगे आप, लगातार दूसरे सप्ताह शेयर बाजारों में बढ़त दिखाई दी है लेकिन फिर भी अभी जो निवेशक हैं काफी कॉशियस हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे?
1: बिल्कुल, बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नजर रखने की जरूरत है और एक बार लगता है जैसे सीज फायर हो गया, ट्रूस हो गया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अभी रोक दिया गया, ऑपरेशन फ्रीडम रोक दिया गया, पर फिर कुछ खबर आ जाती है, आपने अभी पढ़ी जैसे
4: जी।
1: तो मुझे लगता है ये जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है इसने निवेशकों को ज्यादा परेशान किया हुआ है और भारत में नहीं दुनिया भर के जो शेयर बाजार हैं वहां के बड़े बड़े निवेशक भी हैं वो भी असमंजस में हैं कि किस तरफ आखिर रुख लें। जब लगता है कि कुछ अब हो जाएगा तभी कुछ ऐसी खबर आ जाती है और जब ऐसी खबर आती है तो अगले दिन कुछ, तो इसलिए मार्केट पर ओवरऑल ये अच्छा है कि भारतीय शेयर बाजार का जो अंडरटोन है वो अब थोड़ा थोड़ा बुलिश दिखाई दे रहा है। हम 24,000-24,500 में निफ्टी की बात कर रहा हूं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हम ये क्यों भूलें अमरीश आपकी बात को मैं समअप करूं तो कि हम 26,377 तो हमारा हाईएस्ट था ही, जो ऑल टाइम हाई था, वहां से अब हम लगभग 2000 पॉइंट ही तो दूर हैं। तो देखिये भारतीय बाजार ने इन घटनाओं को किस प्रकार से डाइजेस्ट किया है और अपने आप को संभाल के रखा और ये सब इसके बावजूद कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार यहां से पैसा निकाला है, तो ये इस बात का सूचक है कि हमारा बाजार आत्मनिर्भर होता जा रहा है, धीरे धीरे सही परंतु हो रहा है।
2: शरद जी, आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट, इवन एज यू मेंशन अबाउट द वेस्ट एशियन क्राइसिस टेकिंग अ टोल, नाउ ऑन नाउ ऑफ हैपनिंग यू नो फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ यू नो, and of course as we read in the story the state election it's a very localized kind of an issue that to push you know to that level I'm talking of the Indian markets here. Now coming back to the overall scenario, do you see that a kind of fatigue factor is also set in the markets in a positive way? I would like to say positive in the sense that the markets, as you mentioned, has factored in a lot of things here. Now fatigue, like, okay, these things are going to continue for some time, so let's not lose track of, you know, lose sight of the track, you know, the way ahead. And in that way, do you see more positives kind of coming in the coming days, notwithstanding what happens in the West Asian
1: region? I think, Nishit, the very crucial factor, you're right, it's a localized war, but I think the commodity which is impacting global economy, including India, is crude oil. That has been the pain point as far as India is concerned, the energy supply disruption and the pricing. I think that is where, as I said, keep your eyes on Strait of Hormuz, and not, if you don't want to keep your eyes on Strait of Hormuz, keep eye on the crude oil prices. I think that is what is bothering, and which is why breaking away of the breaking out of the war again puts pressure on crude oil prices. So we'll have to waste it. I think as far as I am concerned as a market analyst, I feel we should just take one day at a time, even if there is fatigue developing within.
4: और इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता अमित झा हमसे जुड़ चुके हैं। अमित नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
5: नमस्कार ओली सर, क्या नमस्कार सर।
1: नमस्कार अमित
5: सर, जैसे कि मैं एक बात पूछना चाह रहा था, अभी अनिश्चितता का माहौल है ये
1: जी,
5: तो क्या जो डेली शिप का कॉन्सेप्ट, एक तो मंथली शिप

0: सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको मैंने अभी सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान कहा, मैंने एक और इसका एक्सपेंशन बनाया स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पेशेंटली। यू नो आपको बहुत सब्र से चलना पड़ता है। तो मुझे लगता है अमित के डेली सिप तो आप कर सकते हैं। आप जो सेक्टर रोटेशन की बात कर रही है, एक दिन मैंने वो ले लिया। मुझे हम लोगों ने, मैं और मेरी टीम ने एक स्ट्रैटेजी निकाली थी जिसमें हम ETFs को डेली बेसिस पे रोटेशनल बेसिस पे लेते थे। तो स्टॉक्स को तो नहीं, आप ETFs जो होते हैं उसमें ये काम कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या करते थे मैं बता देता हूं, सभी श्रोताओं के लिए बहुत काम की बात होगी। मान लीजिए किसी ने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करता है कि 1,00,000 के 90 दिन का हिस्सा बना देता है। तो 90 दिन में लगभग 3,000 रुपए, 3,333 रुपए। तो 3,333 रुपए ETF वो वाला छांटा जाता है जिसका RSI नीचे होता है, जिसका RSI जिसमें वॉल्यूम अच्छी होती है उसमें आपने लिया। फिर अगले दिन दूसरा सेक्टर जो गिरा उसमें लिया, क्योंकि ETF की स्ट्रैटेजी ये होती है कि वो खराब स्टॉक को निकाल देते हैं बाहर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छा उसमें रिटर्न आता है। तो डेली सिप की बजाय आप ETFs में डेली बेसिस पे अमित कर सकते हैं। स्टॉक सेक्टर को मत करिए, क्योंकि कई दफे क्या होता है किसी सेक्टर का कोई स्टॉक गिर के फिर उठने में उसको बहुत समय लग जाता है। पर ETF जो मैनेज करती हैं AMCs, वो इस प्रकार से मैनेज करती हैं कि उसको वो खराब स्टॉक को निकालती हैं। तो ETF में आप ये लगा सकते हैं सेक्टर रोटेशन बेसिस पे। दूसरे आपने डेमा का पूछा जो डेली मूविंग एवरेजेस है, तो 5-डे डेली मूविंग एवरेज अमित इतनी काम की नहीं होती है। नॉर्मली 50-डे 100-डे डेली मूविंग एवरेज निकालने का फायदा, इतने शॉर्ट टर्म पे आप डेली मूविंग एवरेज देखेंगे तो वो कोई आपको एक निश्चित तौर पे देख। अभी आपने खबरें जो सुनी किसी हफ्ते में ऊपर किसी हफ्ते में नीचे किसी हफ्ते में, तो इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि पिछले 5 दिन की जो मूविंग एवरेज होती है उसको कैलकुलेट किया है। तो बड़ा सिंपल है मूविंग एवरेज निकालना। तो आपने जितने दिन की आप निकालना चाहते हैं उतने दिन की स्टॉक की प्राइस लीजिए, उसको डिवाइड करिए। पर 5-डे DMA मुझे बहुत ज्यादा जचती नहीं है। आप 50-डे 100-डे 200-डे की डेमा जनरली देखा जाता है जी।
1: राइट, नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर वेलकम।
2: हेलो, गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग।
2: हाँ, मेरा दो सवाल है छोटे छोटे। मेरा पहला सवाल है कि जो शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन होता है
0: जी,
2: वो दिखाने के लिए ITR 1 और 2 उसमें ऐसा कुछ प्रावधान है कि शॉर्ट टर्म गेन ITR 1 में दिखाना है, ITR 2 में नहीं, और लॉन्ग टर्म गेन ITR 2 में दिखाना, ऐसा कुछ प्रावधान है क्या? और दूसरा सवाल है कि जो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला था
0: जी,
2: लॉस जो हम बुक करने के लिए आप सलाह नहीं देते, लेकिन एखादा जो सब्सक्रिप्शन है स्क्रिप्ट है वो बहुत लॉस में है, समझो 50% 60% लॉस में है
0: जी,
2: नहीं तो 10% लॉस में, तो आप क्या बोलते हैं कि वो लॉस आप ये करना चाहिए, बुक करना चाहिए क्या, आपकी क्या?
0: चलिए रत्नाकर जी, आपका पहला सवाल ITR के बारे में। तो जो ITR जो फॉर्म 1 होता है जिसको हम सुगम बोलते हैं, तो वो फॉर्म में आप एक अपनी सैलरी, उसके अलावा एक हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये आप दिखा सकते हैं। अगर कैपिटल गेन होता है रत्नाकर जी, तो उसके लिए ITR 2 फिर यूज करना पड़ता है, भले ही STCG हो या LTCG, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। तो कैपिटल गेन जैसे ही होगा आपको ITR 2 पे मूव करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि ITR 2 में वो सब कुछ होता है जो ITR 1 में होता है, सिर्फ उस फॉर्म का साइज बड़ा होता है क्योंकि उसमें बाकी इनकम स्केड्यूल्स भी होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR 2 का इस्तेमाल करेंगे, ITR 1 का नहीं करेंगे। दूसरा आपने पूछा कि आपका स्टॉक बहुत, देखिए ये जो सलाह होती है ये स्टॉक स्पेसिफिक होती है। अब कौन सा स्टॉक है, हम यहां नाम तो लेते नहीं है, कौन सा स्टॉक है, उसकी फंडामेंटल्स कैसे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आज हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो उसमें मैंने एक स्टॉक देखा जो कि अपने हाईएस्ट लेवल से करीब करीब करीब 30-40% डाउन है, परंतु उसके जो मुनाफे आए 31 मार्च 2026 के, तो उस मुनाफे में लगभग 250% की ग्रोथ हुई है। तो अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो ये उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, PE कितनी आ गई, बॉटम लाइंस कितनी है, उसकी डेट इक्विटी रेशियो कितनी है, उसकी ऑर्डर बुक कैसी है, उसके बिजनेस का मॉडल कैसा है भविष्य में, तो ये रत्नाकर जी इन सब चीजों को देख के निर्णय लिया जाता है। मैंने जो पहले श्रोता को ये बात कही कि आप इतना भारी लॉस मत बुक करिए, वो इसलिए कही क्योंकि मार्केट मंत्रा में हम लोग यहां पर लॉस बुक करें तो हमें स्वयं भी अच्छा नहीं लगता, हम ऐसी कोई सलाह दें, क्योंकि यहां तो मार्केट मंत्रा सुनकर लोग एजुकेट होते हैं जिससे वो मुनाफा कमाएं, कल को उनको रिटर्न अच्छा है। तो इसलिए मैंने ऐसी बात कही, ये बहुत स्पेसिफिक है रत्नाकर जी, इसमें मैं जनरल, पता नहीं आपके पास कौन सी स्क्रिप्ट है, उसके उसकी उसकी स्क्रिप्ट की हेल्थ कैसी है, ये इस पर निर्भर करेगा। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत लॉस है तो रखिए, क्योंकि मार्केट इस समय थोड़े से दबाव में है, पिछले जब से युद्ध छिड़ा है तो युद्ध उम्मीद करते हैं समाप्त होगा, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि युद्ध समाप्त होने तक की वेट कर लीजिए। अगर वो तब भी, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब खुल जाता है, क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आ जाती है, तो अगर तब भी वो आपको लगता है कि दबाव में है और उसके रिजल्ट्स देखिए, बैलेंस शीट देखिए, तब भी लगता है तो फिर बेच

0: जगह पर फिलहाल उसको अभी ऐसी परिस्थिति में जल्दबाजी मुझे ऐसा लगता है नहीं करनी चाहिए।
1: And moving on to the US markets, the benchmark S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq composite closed at record highs yesterday, driven by gains in chip makers and artificial intelligence-related stocks. Investor sentiment was further supported by a better-than-expected April jobs report. The Nasdaq composite index climbed 1.7% to 26,247, while the S&P 500 advanced over 0.8% to 7,399. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average eked out a marginal gain to close at 49,609. And for the week, the Nasdaq surged 4.5%, S&P 500 increased more than 2.3%, and the Dow added over 0.2%. Meanwhile, the S&P 500 and the Nasdaq notched their sixth straight weekly gains. Sharaji, encouraging data coming from the US markets, be it the job reports, of course, as we know, the Nasdaq composite also, you know, gaining ground with artificial intelligence related stock, you know, catching up and all. But do we see that percolating effect or the trickle effect coming down to the Indian markets as well?
0: Well, Indian markets are already showing that effect. You know, yeah. If you see that, you know, Indian markets have braved it out, and Indian markets have, as you rightly read in the beginning of your story, that we have effectively gained for the second consecutive week. We haven't lost. Mm. And as far as the American data is concerned, I think there are a lot of parameters in America which are negative as well. Mm. You know, look at the debt. It is almost reaching $40 trillion now.
1: Yes.
0: So there are $32 trillion economy, $40 trillion. The investments are not coming in. Cost of living has been rising. So I think I'll keep my you know fingers crossed as far as India is concerned. Indian market is far better, healthier. Indian economy is growing. US economy, by the way, is growing at 0.4%, the official numbers. Mm. Although I feel it could be much lesser than that when we go into details or when we deep dive into the parameters. Mm. But then the Indian markets anyway are doing well, and I think the moment Strait of Hormuz and crude oil, as I said, things cool down and Strait of Hormuz opens, I think Indian markets is ready to take off to the next level, because some of the corporate results have been very, very encouraging, as I said.
1: Right.
2: और महाराष्ट्र से हमारे श्रोता के शुक्ला जी लाइन पे हैं। शुक्ला जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
3: नमस्कार ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन था, ट्रेजरी बॉन्ड जो होता है
0: जी,
3: उसको कैसे परचेज किया जाता है, उसके विषय में जरा डिटेल।
0: अच्छा, ट्रेजरी बॉन्ड शायद शुक्ला जी भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, शायद उनका जिक्र कर रहे हैं। इनको खरीदना शुक्ला साहब बहुत आसान है। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको इन बॉन्ड्स की जो साइज होता है, जो रेट होता है, वो सब दिखाई देगा। वहां से आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये भी सॉफ्ट फॉर्म में आते हैं, आपको मैं बता दूं। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो उसमें आप इसको ले सकते हैं। तो बहुत आसान है। तो आपको पता होगा, कम से कम 10,000 रुपए से भी आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये ट्रेजरी बॉन्ड्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं, जहां भारत सरकार को पैसा देते हैं, और इसका रेट 6-7% के आसपास चल रहा है, टैक्सेबल होते हैं। तो इसको आप ये फिजिकली कहीं नहीं ले सकते, इसका कोई एजेंट नहीं होता है जहां से जाके आप खरीदें। तो आपको स्वयं ही, अगर आप स्वयं इसको नहीं इतने टैक्स सेवी हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा जो व्यक्ति टैक्स सेवी हो या कोई शेयर्स में ट्रेड करता हो, इन्वेस्टमेंट में डील करता हो, उसकी आप मदद ले सकते हैं। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके आपको पूरी इसकी जानकारी मिलेगी, उसको अच्छे से रिसर्च करिए और आप इसको ले सकते हैं। जी,
1: नेक्स्ट कॉलर इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर।
4: ये आपके बगल में बैठे थे
1: जितेंद्र। जितेंद्र आवाज आ रही है?
4: हेलो।
1: हाँ जितेंद्र, हाँ सवाल पूछो।
4: पिछले बार हमारी बात हुई थी आपसे कि वो रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड और निफ्टी का स्टॉक लेने के लिए, तो आप बताए थे कि अगले बार हमसे बिना प्रिंटर का नाम लिए पूछना, क्योंकि शहर चलता है। ये बात हमको आपको बहुत अच्छा लगा था, शहर भी चलता है हम लोग की तरह।
0: जी,
4: तो जो मैंने देखा था वो जयपुर एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर दूर है, और मैं जयपुर एयरपोर्ट से 8-10 किलोमीटर में रहता हूँ।
0: जी जी।
4: तो मैंने एक बार प्लान तो वो कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, तो अब लैंड और फ्लैट का है।
0: अब मुझे
4: वो करीब 30 किलोमीटर दूर है
0: जी। अब मुझे लगता है
4: पड़ी रहा है
0: जी। जितेंद्र देखिए, मैंने जो जी आपका प्रश्न समझ आ गया। मैंने, क्योंकि हमारे जो दोनों माननीय एंकर पिछली बार ये नहीं थे, तो मैं इनकी भी जानकारी, तो मैंने कहा कि अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो उस तरफ लीजिए जहां शहर चलता है। जैसे हम चलते हैं शहर भी चलता है, आप देखते होंगे कहीं जाते थे, अरे तीन साल पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ तो ये मॉल बन गया, यहाँ ये फ्लैट्स बन गए, यहाँ होटल बन गया। तो उस तरफ रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लैंड में जहां पर शहर चल रहा हो, तो वहां प्लानिंग होती है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ती है। तो इन्होंने जितेंद्र

0: ने शायद वो लोकेट किया होगा कि शहर ये देखने लगे शहर किस तरफ चल रहा है। तो बड़ी अच्छी आपने रिसर्च करी है, हमें बहुत खुशी है इस बात की कि आप सही तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है फ्लैट की जगह जितेंद्र अगर आप देख रेख, क्योंकि लैंड में थोड़ी सी ना देख रेख ज्यादा होती है, अब आपने कहीं लैंड ले लिया उस पर आपने फेंसिंग करानी पड़ती है, कई दफे बाउंड्री वॉल बनानी पड़ती है, एक छोटा सा कमरा भी बना दीजिए, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कई दफे क्या होता है कि लैंड अनमॉनिटर्ड छोड़ने पे कोई नपाई में गड़बड़ हो गई, किसी ने एनक्रोच कर लिया, कोई आके बैठ गया, फिर वो कल को लीगल झगड़ा पड़ जाता है। तो इसलिए मुझे दोनों में मैं लैंड प्रेफर करूंगा जितेंद्र, अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश के लिए करना चाहते हैं, परंतु उसकी देखरेख आपको बार बार वहां चक्कर मारना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो परिवार के साथ चले जाया करिएगा कभी घूमने, अपना गाड़ी बाइक उठाई और वहां गए, एक चक्कर मारा लैंड ठीक ठाक है कि नहीं, वहां बैठे कुछ दिन चाय वाय पिए और फिर आ गए, ये देखरेख करनी पड़ेगी।
1: शरद जी लेते हैं आज का आखिरी सवाल। दिल्ली से हमारे श्रोता केशव लाइन पे है। केशव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
2: हेलो शरद जी नमस्कार।
0: नमस्कार केशव जी।
2: सर एक चीज मैं ये देख पा रहा हूँ कि जैसे कि अभी हमारा जो सोना है गोल्ड
0: जी,
2: अभी 150-150,000 के आसपास ही अभी रुका हुआ है
0: जी।
2: ये दिवाली आने पर ये तब छलांग लगाएगा लंबी।
0: अच्छा।
2: दिवाली के समय ही ये सोना जो है ये बढ़ता है, ये शादियों के शेयर में थोड़ा उठता है।
0: अच्छा। चलिए देखिए केशव, पहली बात तो आपको ये बताऊं कि सोना एक अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी है। शादियां जो भारत में हो रही हैं उससे, या दिवाली तो भारत में होती है, उससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में फर्क नहीं। इसकी प्राइस डिस्कवरी अमेरिका लंदन में होती है, यहां पर नहीं होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, समय कम है केशव, आपने ऐसे समय ऐसा सवाल पूछा जिसमें मैं आधा घंटा बोल सकता हूं, परंतु क्योंकि समय कम है तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और क्रूड ऑयल की कीमतें ठंडी होंगी, दिवाली हो या ना हो, सोना आपको ऊपर जाता दिखाई दे सकता है, ऐसा हमें मानना है। इस पर डिटेल पे बात करेंगे केशव, अगली बार करिएगा, हम खूब सोने की चमक की तरह आपको बातें मैं सुनाऊंगा।
3: राइट। एंड मूविंग इनटू ऑयल, द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइंड अबाउट 6% ड्यूरिंग द वीक ऑन होप्स ऑफ डीएस्केलेशन इन द वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट फॉलोइंग रिपोर्ट्स दैट वॉशिंगटन हैड सेंट अ वन पेज प्रपोजल टू तेहरान एम्ड एट ईजिंग टेंशंस। हाउएवर ऑन थर्सडे नाइट द यूएस एंड ईरान एक्सचेंज एयर स्ट्राइक्स near the Strait of Hormuz, with both sides accusing each other of violating the ceasefire. Later, the US President Donald Trump reaffirmed that the ceasefire remained in effect, while Iran stated that the situation had returned to normal. Yesterday, Brent crude July futures settled 1.2% up at $101.29 per barrel, while the West Texas Intermediate June futures added 0.6% to $95.42 per barrel. Over the week, Brent plunged 6.3% and the WTI tumbled 6.4%.
1: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शरद जी से कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी। एंड बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। The benchmark domestic indices rise for the second straight week. Sensex and Nifty adds over 0.5%. Major US stocks indices continue to hit record highs as investors bet on growth in artificial intelligence stocks, and the global crude oil prices slump over 6% this week. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
1: Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगवेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Shrutiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. The newly elected MLAs of the West Bengal Legislative Assembly will take oath on the 13th of May. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naveen and other leaders of the Bharatiya Janata Party were present at the swearing-in ceremony. Prime Minister Modi congratulated Shubhendu Adhikari on taking the oath as the Chief Minister of West Bengal. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay led

0: जनजीवन बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों एक्चुअली एक कम लागत वाला जन सुरक्षा योजना है जो कि सुरक्षा कवच बनाकर भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को काफी मजबूत किया है। इन योजनाओं में जो हमारे पात्र ग्राहक, विशेष रूप से जो गरीब और जो दूर दराज क्षेत्र में जो वंचित ग्राहक है, उन सभी को 2 लाख रुपए का ये आवश्यक जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं और उनके वित्तीय समावेशन को ही बढ़ावा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि आम नागरिकों के जीवन में कोई अगर ऐसे अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाता है तो उनको समय पर ये वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है। इन योजनाओं की एक बड़ी उपलब्धि इनकी सरलता, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, कम प्रीमियम और वित्तीय समावेशन पहलों के तहत बैंकों की जो तमाम शाखाएं हैं और पोस्ट ऑफिस के तमाम शाखाएं हैं, ये सभी इनके डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े हुए हैं। तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है और वित्तीय जागरूकता को भी बढ़ाया देता है। और सबसे बड़ी बात है कि औपचारिक जो वित्तीय प्रणालियां हैं, जो हमारे फॉर्मल प्रोसेसेस हैं, उनमें नागरिकों के विश्वास को ये मजबूत किया है। मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहूंगा। अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लगभग 27 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं। और इसके अलावा शुरुआत से अब तक PMJJBY के तहत लगभग 10,60,000 लाभार्थियों को 21,200 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान किया गया है। और इसी प्रकार PMSBY में 1,80,000 लाभार्थियों को लगभग 3,600 करोड़ रुपए का दावे का भुगतान किया गया है। और ये जो क्लेम भुगतान किया गया है, इसकी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होती है वो लगभग 99.5% से ऊपर है। कहने का मतलब है कि अगर 100 दावे कंपनी के पास आते हैं तो उनमें से 99.5 दावों का उन्होंने भुगतान कर दिया है। यही एक विश्वास की कड़ी को आगे बढ़ाया है।
1: अब इसके पूर्व अगर हम आपके पास आएं और बात करें अटल पेंशन योजना की, तो ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण अगर हम इसे कह सकें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जहां तक बात है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एक तबका है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जिनके पास एक रेगुलर नौकरी नहीं है या सरकारी नौकरी नहीं है या जिसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज वे में वो काम करते हैं, तो उनके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक उतना ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन जाता है, खास करके जब वो 60 की उम्र को पार करते हैं। तो इसके मद्देनजर अटल पेंशन योजना, जहां तक हम समझते हैं, इसने काफी हद तक इस कंसर्न को एड्रेस करने में मदद की है और आंकड़े बताते हैं कि 9 करोड़ से भी अधिक लोगों ने नामांकन करवाया है इस योजना में। तो आप इस बढ़ती ग्रोइंग पार्टिसिपेशन जो है इस योजना में, इसे कैसे आप देखती हैं और कैसे इस योजना की जो शुरुआत हुई और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी लोगों में, ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, कैसे देखती हैं आप इसे?
2: हमारे यहाँ 85% लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनकी रेगुलर इनकम तो होती नहीं है। जब उनके पास काम हुआ तो इनकम आ गई और जब काम नहीं है तो इनकम नहीं है, और वो अपने आज के खर्चे के बारे में सोचते हैं, दूर के बारे में सोच नहीं पाते।
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो इस कारण से वो अपने 60 के बाद का तो वो बिल्कुल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। तो इस दिशा में जब हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारी सोसाइटी जो है, जो आज यंग है, आज युवा है, पर धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेगी ये पीढ़ी, और आज जो 10% हमारी जो जनसंख्या है वो सीनियर सिटीजन या कहिए कि 60 से ऊपर है, परंतु 2050 आते आते तक ये 20% हो जाएगी और हम करीब 30 करोड़ लोग ऐसे और जोड़ देंगे जो 60 को पार कर जाएंगे। और अगर इन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए या अपने वृद्धावस्था के लिए अगर कोई प्लानिंग नहीं की तो इनके पास इनकम का या आय का कोई भी स्रोत नहीं होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए पेंशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स का या फिर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही एक हक नहीं है, बल्कि ये सबके लिए होना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मई 2015 अटल पेंशन योजना का जो है अनाउंसमेंट किया था। और आप देखिए कि इसी में जब पेंशन का कॉन्सेप्ट भी लोगों को नहीं मालूम था कि उनके लिए भी रिटायरमेंट इनकम कुछ हो सकती है, ये उनको नहीं मालूम था, परंतु इसी दौरान 9,06,00,000 लोग अब अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। और इसका कारण ये है कि ये बहुत ही सरल योजना है। उनको सिर्फ बताया जाता है कि अगर आप 18 साल के हैं तो आपने अगर सिर्फ 42 रुपए प्रति माह जोड़ दिए 60 साल तक, तो आपको 1,000 रुपए इनकम आपको मिलने लगे।

0: कि आपके बाद आपके पति या पत्नी को मिलने लगेगी, और जितना पैसा आपका इकट्ठा हुआ है पति पत्नी के गुजर जाने के बाद आपके नामिती को भी मिलने लगेगी। सो ये जो तीन बड़े बड़े उनको जो लाभ मिलते हैं, सिर्फ 42 रुपए अगर आप 18 साल के हैं जुटाने पर, तो उनको भी समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं अपने लिए एक बुढ़ापे का सहारा इकट्ठा कर रहे हैं। कहा जाता है कि आजकल के जमाने में जैसे हम दो बच्चे होते हैं हमारे, तो पेंशन का जो खाता है वो हमारा तीसरा बच्चा है, और उसको उतना ही ख्याल रखना है हमें, हमारे को उसको वैसे ही बड़ा करना है क्योंकि वो आपका ख्याल रखेगा बुढ़ापे का। ये दो बच्चे तो रहेंगे आपके साथ, पर उनपे निर्भर क्यों होना है, वो आपके आसपास रहेंगे इमोशनल सपोर्ट के लिए, पर ये तीसरा बच्चा आपका बुढ़ापे में ख्याल रखेगा, तो इसका आप अभी से इसको बड़ा कीजिए। इसीलिए इस अटल पेंशन योजना जो है काफी लोगों ने अपनाई है, और इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल रहा है। बैंकों में हर शाखा को हम टारगेट देते हैं और वो सरलता से समझाते हैं, और लोगों ने इसीलिए अटल पेंशन योजना को अपनाया है।
1: तो मिस कपूर, अगर हम बात करें आयु सीमा की, कि क्या कोई, जैसे 18 वर्ष की बात आपने की कि 18 वर्ष का जब व्यक्ति एक बार हो जाता है तो इस योजना में वो नामांकन अपना करवा सकता है, तो कोई पूरी सीमा भी कोई है आयु की है?
0: जी, 18 से 40 वर्ष, क्योंकि 20 साल का समय चाहिए आपको उतनी मात्रा इकट्ठा करने के लिए कि वो आपको एक रेगुलर इनकम दे सके, तो इसलिए 18 से 40 तक आप इसमें एनरोल करा सकते।
1: जी देवाशीष जी, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, हम समझना चाहेंगे कि इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जैसा आंकड़े बता रहे हैं, आपने भी बताया 27 करोड़ से अधिक एनरोलमेंट हो चुके हैं और इतना जो ग्रोइंग पार्टिसिपेशन इसमें, जो भागीदारी हो रही है जनता की, वो स्वाभाविक रूप से ये जताता है, ये हमें बताता है कि किस हिसाब से और किस तरह हमारे जो जनता है वो इस योजना में, उन्हें ट्रस्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं।
2: जैसे कि मैंने पहले बताया कि आम आदमी के जीवन में किसी भी प्रकार के ऐसे अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए ये जो योजना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और ये योजना जैसे 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के जो है सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता है, और जो इसमें शामिल होने के लिए तैयार है उनको एक सहमति पत्र देना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही सरल है और उसमें ऑटो डेबिट की सुविधा भी जो है दी गई है। इस योजना के तहत जो जोखिम कवरेज है, जो रिस्क कवरेज है, वो 2 लाख रुपए तक का है, और जो बीमित व्यक्ति है, इंश्योर्ड है, उसकी मृत्यु होने पर किसी भी कारण से, कोई ऐसे कंडीशन नहीं है, तो ये मैच्योरिटी सम 2 लाख रुपया उनको तुरंत दे दिया जाता है उनके परिवार को। इसके लिए जो सालाना प्रीमियम है वो केवल 436 रुपया है, जो कि ग्राहक के बैंक या उनकी जो पोस्ट ऑफिस से ऑटो डेबिट किया जाता है। उनको बार बार परेशानी नहीं होना पड़े कि बैंक के या पोस्ट ऑफिस के पास जाने के लिए। उन सभी लोगों की सुविधा के लिए जो पॉलिसी अवधि के बीच में अगर पहली बार इस योजना के तहत नामांकन कर रहे हैं, तो उनका एक प्रोराटा प्रीमियम का भुगतान भी करने का प्रावधान है। मान लीजिए कि किसी ने दिसंबर में अगर ज्वाइन किया है तो उनको पूरे साल का प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है, उनका जो है प्रोराटा जितने महीना उस वित्तीय वर्ष में बचते हैं उनका वो प्रीमियम देना हो। एक इसमें कंडीशन इतना ही है कि नामांकन की तारीख से, एनरोलमेंट की तारीख से 30 दिन की जो है अवधि को लियन पीरियड कहते हैं, और इस योजना में नामांकन की तारीख से पहले 30 दिनों की अवधि के दौरान अगर कोई उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो बीमा कवरेज उनको नहीं मिलेगा और उसके पश्चात रिस्क शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि अब तक 21,000 करोड़ रुपए के जो है दावे का भुगतान किया जा चुका है। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े मैं रखना चाहूंगा कि ग्रामीण जो लाभार्थी हैं लगभग 17 करोड़ हैं, जो कि बैंक एनरोलमेंट के 73% है, और हमारे महिला लाभार्थी जो है उनकी संख्या लगभग 12 करोड़ 70 लाख है, जो कि कुल बैंक एनरोलमेंट के 54% है। तो ये आंकड़े जो है इस स्कीम की लोकप्रियता और समावेशिता और आने वाले समय में इस पे और मास रूप में जुड़ने के लिए एक स्पष्ट संकेत देती है।
1: हम आपसे समझना चाहेंगे, और बात हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की यहाँ, क्योंकि ये योजना किस तरह से काम करती है और किस तरह से ये एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है अगेंस्ट एक्सीडेंटल रिस्क, जो कि आम जनता को फेस करना पड़ता है अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी में। 20 रूपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें प्रदान करती है, और आंकड़े बता रहे हैं कि ये लगभग 58 करोड़ से भी अधिक नामांकन अभी तक हो चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक यूनिक सा एक स्कीम है, तो ये जो इनिशिएटिव है भारत सरकार की, इसे कैसे देखती है और कितना ये महत्वपूर्ण है, क्या स्थान रखता है हमारे

0: आम जनता के जीवन में?
1: ये योजना एक्चुअली 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए सरकार ने लागू किए हैं जिनका किसी भी बैंक में या डाकघर में अकाउंट है, सेविंग बैंक पासबुक है। और इस योजना में भी शामिल होने के लिए उनको एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी के लिए अपनी सहमति देना होता है। और इस योजना में जो रिस्क कवरेज है कि अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाते हैं या फिर अगर कोई पूर्ण स्थायी विकलांगता जिसको कहते हैं परमानेंट डिजेबिलिटी की स्थिति में 2 लाख रुपया, और अगर आंशिक डिजेबिलिटी हो जाती है एक एक्सीडेंट में तो उनमें 1 लाख रुपया का जो अश्योर्ड है वो मिलता है। और ये कवरेज केवल साल की 20 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर मिलता है। खातेधारक की बैंक या पोस्ट ऑफिस से सीधे ऑटो डेबिट हो जाते हैं, उनको बार बार बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार की प्रोडक्ट से अब तक 58 करोड़ से अधिक नामांकन होकर 3600 करोड़ रुपए के जो है दावा के भुगतान किया जा चुके हैं। जहाँ तक हमारे ग्रामीण लाभार्थी हैं वो लोग करीब 38 करोड़ इनमें जो है नामांकित हो चुके हैं, और हमारे जो महिला हैं वो करीब 27 करोड़ इनमें नामांकित हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है वित्तीय समावेशन का एक स्पष्ट द्योतक है।
0: हम इस कपूर आपके पास हम आना चाहेंगे, ये 11वां वर्ष है जब इन योजनाओं की शुरुआत हुई 2015 में। साथ ही साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देवाशीष जी ने भी बताया कि किस तरह से और खास करके ग्रामीण इलाकों में जो जनता का समावेशन हुआ है ऐसे स्कीम्स में और किस तरह से लाभ पहुंच रहा है उन लोगों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वर्षों में आप किस तरह से देखते हैं इन योजनाओं का विस्तार और साथ ही साथ कुछ और नई संभावनाएं अगर आपको दिखती हों तो?
2: जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि अब तक इसमें 9 करोड़ से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। अब ये वित्तीय समावेशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, चाहे वो ग्रामीण से हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो गिग वर्कर्स हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। इसमें लगभग 50% प्रतिभागी जो है वो महिलाओं की है और 25,000 ट्रांसजेंडर भी जुड़ चुके हैं। और इन्होंने छोटे छोटे सेविंग्स करके अब तक इसमें AUM जो है वो लगभग 51,000 करोड़ से ऊपर है। सो अब जो हमारा जो टारगेट है 2031 तक का वो लगभग 17 करोड़ का है। सो हम इसको डबल के करीब ले जाने का सोच रहे हैं। जो पिछले 9 साल में किया वो अगले हम 5-6 साल में करेंगे। और दूसरा जो AUM है वो भी नेचुरली जो पुराना AUM है उसके ऊपर ग्रोथ होगी, 8-8.5% की ग्रोथ उस पर 9% की हो रही है, और भी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। सो AUM भी बढ़ेगा। सो इसका हमारे को डबल लाभ होता है। क्यों? क्योंकि एक तो जो माइक्रो लेवल पे है जो नागरिक हैं उनके लिए ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी का एक रास्ता खोलते हैं। दूसरा जो ये AUM एकत्रित होता है ये कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सो इस तरह से पेंशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल पेंशन फंड्स का। और इससे हमारी वित्तीय समावेशन में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है।
0: देवाशीष जी, सुमित जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, अपने विचार रखे, साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत धन्यवाद।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

जी आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7:25 और अब हो गए 26 और एफएम गोल्ड पर ये समय है कार्यक्रम सांझ ढले का। आज की शाम सांझ ढले में मैं हूं आपके साथ रेशमा और आइए सांझ ढले की शुरुआत करते हैं फिल्म कश्मीर की कली से ये गीत सुनकर जिसको गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

श्रोताओं, ये गीत सुना आपने, इसमें संगीत था ओपी नैयर का और इसके बोल लिखे थे शमशुल हुदा बिहारी ने, जिन्हें आप और हम एसएच बिहारी के नाम से जानते हैं। 1922 में बिहार के आला में जन्मे एसएच बिहारी के पास कलकत्ता में ग्रेजुएशन करने के बाद दो विकल्प थे, फुटबॉल खेलना या गीत लिखना, क्योंकि उनको दोनों में रुचि और महारत थी। लेकिन एसएच बिहारी ने लेखन को चुना। कुल 400 से अधिक गीत लिखे उन्होंने, लेकिन ज्यादातर ओपी नैयर के लिए ही। ओपी नैयर के लिए उनका सबसे सुंदर गीत शायद आशा भोसले का ओपी नैयर के लिए गाया आखिरी गीत था, क्योंकि तब तक उनके संबंधों में थोड़ी तलखी आ चुकी थी। इस गीत में एसएच बिहारी ने अपने जीवन के संघर्षों का निचोड़ डाल दिया था। फिल्म थी प्राण जाए पर वचन न जाए।

प्राची सिंह, बटरफ्लाई गर्ल ऑफ इंडिया, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देती हूँ। मेरी बहुत ही खास मेमोरी है आकाशवाणी के साथ। जब मैं कॉलेज जाती थी पापा के साथ गाड़ी में, हमेशा आकाशवाणी पे न्यूज बुलेटिन सुनते हुए जाती थी और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी क्योंकि मुझे मालूम था न्यूज बुलेटिन खत्म होते ही पापा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, अच्छा समराइज करके बताओ। ये जो वहीं से आदत मेरी शुरू हुई थी न्यूज को पढ़ के हर दिन अपडेटेड रहने की, और ये जर्नी मेरी अभी तक चली आ रही है। मैं एक बार फिर से आकाशवाणी को 90 इयर्स कंप्लीट होने पे बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आप एक आवाज ही नहीं, एक पहचान है।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:37 हो गए हैं। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सांझ ढले, जिसमें आज मैं आपको सुनवा रही हूँ कुछ खूबसूरत से गीत जिन्हें लिखा है एसएच बिहारी ने। तो श्रोताओं, एसएच बिहारी का जीवन व्यक्तिगत त्रासदियों से भरा था। 1977 और 83 के बीच उन्होंने अपने दो बच्चों को खो दिया और आर्थिक स्थिति अधिकतर उनकी खराब ही रही। वे अक्सर बसों में सफर करते और सफर के दौरान जैसे ही किसी गीत के कोई कुछ बोल उनको सूझते, वो बस की टिकट के पीछे वो बोल लिख लेते। तो उन्हीं की कलम से निकला एक और गीत सुनते हैं, फिल्म ये रात फिर ना आएगी से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ में।

जी श्रोताओं, तो आज आपको सांझ ढले में मैंने गीत सुनाए एसएच बिहारी के लिखे हुए, और जिनमें ज्यादातर संगीत ओपी नैयर का था, क्योंकि उन्होंने गीत लिखे ही थे ज्यादातर ओपी नैयर के संगीत की गीतों के लिए। तो सांझ ढले का आज का सफर यहीं तक, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। अभी एफएम गोल्ड पर समय है प्रादेशिक समाचारों का, 7:45 पर। 8:10 पर मैं एक बार फिर मिलूंगी आपसे कार्यक्रम मधुरिमा में। तब तक के लिए इजाजत लेती हूँ।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी कर पंजाब के कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में होम्योपैथी और यूनानी ओपीडी सेवा शुरू करेगी। दिल्ली में सेंट्रल रिज का 673 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित। और अनीश भानवाला ने नई दिल्ली में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। श्रीमती गुप्ता ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और बंगाल की जनता को दिल्ली

0: भाजपा कार्यकर्ताओं के बलिदान की आहुति की यात्रा पे टिकी है। जब आज यहाँ बंगाल में नया सूर्योदय हुआ है और नई सरकार बन रही है, इन 321 भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं दी, उन्होंने अपनी जान सोनार बंगला के भविष्य के लिए दी।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में बंगाल की जनता ने अत्याचार और भ्रष्टाचार का दौर देखा, लेकिन अब जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव करने का फैसला लिया है।
2: बंगाल की बेटियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा युग 15 साल अत्याचार का, दमन का झेला, परंतु अब बंगाल की जनता ने सोनार बंगला लिए जो वोट किया है, आज की ये सुबह, आज का ये सूरज उस बंगाल के लिए है जहां विकास होगा, जहां विश्वास होगा, और विश्वास और विकास के साथ बंगाल पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगा।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे पहले ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी।
3: ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। ईडी ने बताया कि ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। ईडी ने कथित तौर पर दिल्ली स्थित गैर मौजूद फर्मों से कई फर्जी जीएसटी बिल प्राप्त किए, ताकि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, निर्यात क्रेडिट पर जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक लाभ का दावा किया जा सके। ईडी के अनुसार इन लेन देन से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने श्रावंती ग्रुप के प्रमोटर दंडामुदी वेंकटेश्वर राव उर्फ डीवी राव सहित 3 लोगों को करीब 284 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। आरोप था कि डीवी राव के नियंत्रण वाली डीजेडब्ल्यू इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न संस्थानों से फर्जी तरीके से ऋण प्राप्त किए थे और ऋण चुकाने की धनराशि वैध ऋणदाताओं को लौटाने के बजाय फर्जी कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई। ईडी ने बताया कि आरोपियों ने आरटीजीएस बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी आईपीओ स्कैम, डिजिटल अरेस्ट और फॉरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी में संलिप्त थे और इन्होंने पीड़ितों से कुल 1,22,00,000 से अधिक रूपये की ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप, फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और फर्जी सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोगों को निवेश, आईपीओ फंडिंग और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर ठगी करते थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने सेंट्रल रिज के 673 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अंतर्गत इस क्षेत्र को यह दर्जा दिया गया है। ये क्षेत्र सरदार पटेल मार्ग और राष्ट्रपति भवन स्टेट के आसपास स्थित है।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली रिज प्राचीन अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, जिसे राजधानी का ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिज क्षेत्र वायु गुणवत्ता सुधारने, भूजल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि आरक्षित वन घोषित किए गए रिज क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, इमली और आम जैसे देसी तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रजातियों के वृक्ष बड़े स्तर पर लगाए जाएंगे। अब तक दिल्ली में कुल 4,754 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को आरक्षित वन का दर्जा मिल चुका है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के अन्य रिज क्षेत्रों को भी जल्द आरक्षित वन घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अतिक्रमण और पर्यावरणीय क्षरण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
1: दिल्ली सरकार का आयुष निदेशालय चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में होम्योपैथी और यूनानी ओपीडी सेवा शुरू करेगा। स्वास्थ्य मंत्री

0: डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस पहल से लोगों को बिना आर्थिक बोझ के समग्र उपचार और तनाव प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आयुष निदेशालय डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती करेगा। इस पहल से आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी और यूनानी जैसी आयुष पद्धतियों के जरिए एक ही मंच पर समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज रोहिणी सेक्टर 24 में नई जल पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में स्वच्छ, नियमित और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। श्री सिंह ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार नई पाइपलाइन बिछाने, पुरानी लाइनों को बदलने और जल नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रही है। श्री सिंह ने अधिकारियों को जल आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने मॉनसून कार्य योजना 2026 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिषद ने ताज मानसिंह के पास भूमिगत नालियों और कवर स्टॉर्म वाटर ड्रेन की जांच पहली बार रोबोटिक तकनीक का उपयोग शुरू किया है। एक रिपोर्ट।
1: श्री चहल ने बताया कि 31 मार्च तक पहले चरण की 100% गाद सफाई पूरी कर ली गई थी, वहीं दूसरा चरण 15 जून तक पूरा हो जाएगा। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से गाद सफाई का कार्य किया जा रहा है। परिषद क्षेत्र में पुराना किला, दयाल सिंह कॉलेज, पंचकुइयां रोड, हनुमान मंदिर और सत्य सदन समेत 5 प्रमुख संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और सेंसर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमीशा।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाहिनी आज केशवपुरम जोन के अंतर्गत कमला नगर क्षेत्र में सफाई अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री वाहिनी अधिकारियों और कर्मचारियों को सिंधोरा कला गांव में स्थित रेलवे अंडरब्रिज की तुरंत सफाई का निर्देश दिया। श्री वाहिनी गुलाबी बाग स्थित पार्क का उद्घाटन किया और रोशन नारा बाग में झील की सफाई, पंप हाउस निर्माण तथा उद्यान विभाग के जर्जर कार्यालय की मरम्मत करने का आदेश भी दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा दिल्ली की तेजी से बिगड़ती जलीय संपत्तियों के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार पर प्रस्तुत एक प्रस्तुति की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि DDA 77 जलाशयों के पुनरुद्धार कार्य को तुरंत शुरू कर रहा है। बैठक में द्वारका, रोहिणी और नरेला सब सिटी में परिवर्तनकारी विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और विस्तार योजना का भी समीक्षा कर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा परिचालन उत्कृष्टता और नवाचार की दिशा में किए जा रहे प्रयास प्रभावशाली हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय हवाई अड्डा और एरोसिटी इकोसिस्टम का उपयोग कर राष्ट्रीय राजधानी को व्यापार, पर्यटन तथा निवेश के वैश्विक केंद्र के रूप में और अधिक मजबूत किया जा सकता है। उपराज्यपाल ने विमान शोर प्रदूषण जैसी समस्याओं के समाधान के साथ विकास और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें सड़कों पर धूल के स्तर का आकलन करने और शहर में सड़क सफाई और झाड़ू लगाने के कार्यों की समीक्षा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि समीक्षा अभियान में कुल 19 हवाई दस्ते की टीमें शामिल थी, जिन्होंने नोएडा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 46 सड़क खंडों को कवर किया। दिल्ली सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास हीट वेव एक्शन प्लान के अंतर्गत विशेष कूलिंग जोन तैयार किया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि यहां 70 से 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था, ठंडे पानी और ORS की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केवल व्यवस्था बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि लोगों तक सीधी राहत पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने आज दिल्ली में प्रोजेक्ट मेट के दूसरे चरण की शुरुआत की। ये पहल किशोर विद्यार्थियों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां

0: और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 60 से अधिक सीबीएसई स्कूल शामिल हुए हैं। नई दिल्ली में 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में अनीश भानवाला ने आज स्वर्ण पदक जीता। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे अनीश ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में ये पदक अपने नाम किया। डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा दूसरे जबकि पंजाब के विजयवीर सिद्धू ने तीसरे स्थान पर रहे।
1: नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा दूसरे जबकि पंजाब के विजयवीर सिद्धू तीसरे स्थान पर रहे। 50 मीटर पिस्टल आईपीसी मिक्स्ड SH1 सीनियर वर्ग में दिल्ली की भक्ति शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान की सारिका अंदाना दूसरे और हरियाणा के संदीप कुमार तीसरे स्थान पर रहे। जूनियर पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। टीम स्पर्धा में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट का दबदबा देखने को मिला। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष टीम स्पर्धा में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट ने स्वर्ण पदक जीता जबकि हरियाणा ने रजत और नौसेना की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। 50 मीटर पिस्टल पुरुष वर्ग में हरियाणा के कपिल बैंसला और महिला वर्ग में हरियाणा की केतन मलिक ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रादेशिक समाचार के लिए स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहेगा, वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी कर पंजाब के कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में होम्योपैथी और यूनानी ओपीडी सेवा शुरू करेगी। दिल्ली में सेंट्रल रिज का 673 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित। और अनीश भानवाला ने नई दिल्ली में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का अच्छा था। नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्य

0: राज्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिल कवयित्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन प्राप्त हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में सरकार गठन के लिए 118 सीट की जरूरत है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवीके नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडरपास बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने छठे ओवर में बिना किसी नुकसान पर 72 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम मधुरिमा। 8:11 हो गए हैं और मैं हूं आपके साथ रेशमा। और मधुरिमा में आज मैं आपको सुनाऊंगी राग मालगुंजी पर आधारित कुछ गीत। आइए कार्यक्रम आरंभ करते हैं 1970 में आई फिल्म सफर के इस गीत से।

तो श्रोताओं, खमाज थाट से उत्पन्न राग मालगुंजी में बागेश्री, रागेश्री और जय जयवंती के गुण भी पाए जाते हैं। इसीलिए कुछ संगीत विशेषज्ञ इसे रागेश्री और बागेश्री का मिश्र मानते हैं, तो कुछ बागेश्री और खमाज का। मालगुंजी का सबसे सुंदर प्रयोग वी शांताराम निर्मित झनक झनक पायल बाजे में संगीतकार वसंत देसाई ने किया था। हसरत जयपुरी ने जिस मुलायमियत के साथ गीत लिखा, उसे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने अपने सुरों से साकार कर दिया, और इस सुंदरता में अलग ही मिठास और झनकार पैदा करने में जलतरंग, सितार, वायलिन, ऑर्गन, वाइब्रोफोन और तबले का ऑर्केस्ट्रेशन भी शामिल रहा। आइए सुनते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है मधुरिमा, और मधुरिमा में आज बात हो रही है राग मालगुंजी की। तो श्रोताओ, राग मालगुंजी के आरोह में 6 स्वरों और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, और इसकी जाति है शाणव संपूर्ण। इस राग में दोनों गंधार और दोनों निषाद प्रयोग होते हैं। वादी स्वर है इसका मध्यम और समवादी है षड्ज। इसका गायन वादन समय है रात्रि का तीसरा पहर। आइए सुनते हैं फिल्म अदालत से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, जिसमें झलक है राग मालगुंजी की।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और आईएसएल फुटबॉल लीग में जमशेदपुर एफसी और बेंगलोर एफसी के बीच मुकाबला जारी।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 11 ओवर में एक विकेट खोकर 119 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए मुना तो राजस्थान चौथे स्थान पर है और पांचवें नंबर पर गुजरात की टीम है। आज जो जीतेगी उसके लिए ये मैच एक लॉटरी से कम नहीं होगा।
1: बिल्कुल लॉटरी से कम नहीं होगा कि आप अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष पर है, 11 मैचों में 14 अंक है और इन दोनों टीमों के 12-12 अंक है, तो जो भी टीम जीतती है उसके

0: पास दूसरे या हो सकता है पहले स्थान पर भी जाने का एक सुनहरा मौका हो।
1: जी बिल्कुल, एक सुनहरा मौका कि आप दूसरे स्थान पे तो कम से कम जाएंगे और अगर अच्छे अंतर से जीतते हैं तो पहला स्थान भी आपका इंतजार कर रहा है। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। एक रिपोर्ट।
2: जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, प्लेऑफ की दौड़ और भी रोमांचक होती जा रही है। इसी दौड़ में बने रहने की उम्मीदों को लिए कल दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने आए कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, जहां केकेआर ने दिल्ली को 8 विकेट से हराते हुए सीजन में लगातार अपनी 4थी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 142 रन लगाए। प्रथम निशंका ने सर्वाधिक 50 रन बनाए, जबकि आशुतोष शर्मा ने 39 रन का योगदान दिया। केकेआर की ओर से कार्तिक त्यागी और अनुकूल रॉय ने 2-2 विकेट लिए। 143 रन के लक्ष्य को केकेआर ने 14 ओवर और 2 गेंद में 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। टीम के लिए जीत के हीरो रहे फिन एलन, जिन्होंने 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के बाद कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को नई जान मिली है, जबकि दिल्ली के लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: कोलकाता के लिए कल का मुकाबला किसी तोहफे से कम नहीं होगा, क्योंकि उसने भी सोचा नहीं होगा कि दिल्ली अपने मैदान पे इतनी आसान जीत उसको दे देगी।
0: देखिए, पूरे टूर्नामेंट में अगर हम दिल्ली के प्रदर्शन को देखें तो पैचेस में किसी मैच में उसके गेंदबाज चलते हैं तो किसी मैच में उसके बल्लेबाज चलते हैं। एक इकाई के रूप में जो प्रदर्शन की बात होती है वो दिल्ली अभी तक कर नहीं पाई है। 200 से ऊपर का स्कोर करके भी मैच हारी है दिल्ली की टीम। और अगर कल के मैच की हम बात करें तो केकेआर की यहां तारीफ करनी पड़ेगी कि ये इतना लंबा टूर्नामेंट है जिसमें सही समय पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। केकेआर की शुरुआत धीमी रही लेकिन लगातार 4 मैच जीते हैं टीम ने, और आप देखिए कि उसके जो टॉप ऑर्डर है, उसके जो फिनिशर है, उसके जो बॉलर है, सब जबरदस्त फॉर्म में। कल फिन एलन ने 5 चौके और 10 छक्के, उसमें 1 छक्का 92 मीटर का था। तो जो आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन कल उन्होंने किया है, पूरी तरह से दिल्ली के जो गेंदबाज हैं वो दबाव में नजर आए। और यहां पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, जो आईपीएल से ठीक पहले जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे, बिल्कुल निराश किया उन्होंने। उनकी गेंदों में वो दिशा और दशा नजर ही नहीं आ रही थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यहां पर दिल्ली को काफी निराशा। और मैच के बाद तो अक्षर पटेल ने बोला भी कि अब जो भी होगी प्लानिंग वो अगले सीजन के लिए होगी। मतलब टेक्निकली, मैथमेटिकली भले ही दिल्ली अभी कहीं ना कहीं प्लेऑफ की दौड़ में है, लेकिन अंदर से टीम मैनेजमेंट समझ चुका है कि अब उनके लिए जो है रास्ते बंद हो चुके हैं। और कोलकाता की जीत में फिन एलन ने निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया। कैमरन ग्रीन के साथ जो उनकी साझेदारी थी, शतकीय साझेदारी, वो काफी अच्छी रही। और यहां विशेष तौर पर बात करनी पड़ेगी एक ऐसे खिलाड़ी की जो शुरू से कोलकाता नाइट राइडर का ट्रंप कार्ड रहा है, वह सुनील नारायण। 4 ओवर 17 रन 1 विकेट, ऐसे आईपीएल में जिसमें गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भी यहां पिट रहे हैं, ऐसे में ये इस तरीके का प्रदर्शन करना, अनुकूल रॉय गेंदबाजी के साथ जो एक कैच उन्होंने लपका था वो भी बहुत जबरदस्त था। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि केकेआर जो है वो सही समय पर एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है और यहां से आगे उनकी राह मुझे आसान होती हुई नजर आ रही है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह का कमबैक इस सीजन में केकेआर की तरफ से देखने को मिला, पहले 6 मुकाबलों में 5 हारे
0: जी,
1: 1 टाई और लगातार 4 जीत, तो टीम एक अच्छी पटरी पर है। वहीं दिल्ली के लिए मुश्किल ये भी होगी कि आने वाले 3 मैचों में पंजाब, राजस्थान और एक बार फिर कलकत्ता की टीम सामने होगी। उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भी भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। 8 भारतीय मुक्केबाज अंडर 15 में आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंच गए। ये खिलाड़ी अब फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे, जबकि 5 भारतीय मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि ताशकंद में भारतीय मुक्केबाज अपने हर मुक्के के साथ एक नए पदक की आस भारत को दिलाते हुए।
0: और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है ना कि अंडर 15 और अंडर 17 आयु वर्ग के चैंपियनशिप है, और यहां से जो निकलेंगे उनके लिए आगे जो बहुराष्ट्रीय बहु खेल टूर्नामेंट होते हैं, जैसे एशियन गेम्स है, राष्ट्रमंडल खेल है या ओलंपिक है, उनके लिए यहां पदक जीतने वालों का मनोबल बढ़ेगा। और जो भारत का पूल तैयार होगा, जैसे हम अगले ओलंपिक लॉस एंजलिस के बाद ब्रिस्बेन, या जो हम खुद आकांक्षा कर रहे हैं कि भारत में 2036 ओलंपिक हो, तो उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो काफी अच्छा यहां से

0: एक्सपोजर मिलेगा इन खिलाड़ियों को, जिनमें से भविष्य के लिए पूल तैयार होगा।
1: जी बिल्कुल, भविष्य के लिए पूल तैयार होंगे और ये मेडल इन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अच्छा प्रदर्शन करने का और प्रोत्साहन लेकर के साथ आएंगे। और अब मुक्केबाजी के बाद रुक करते हैं तीरंदाजी का, जहां चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबे को 147-144 से हराया। एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के 25 वर्षीय तीरंदाज साहिल जाधव ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147-144 से हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का पहला पदक हासिल किया। ये विश्व कप में उनका पहला व्यक्तिगत पदक भी है। जाधव पहले सेट के बाद एक अंक से पीछे चल रहे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे सेट में परफेक्ट 30 का स्कोर बनाया, जबकि डेम्सबो 27 का स्कोर ही बना पाए। इससे जाधव को कुल 59-57 की बढ़त हासिल करने में मदद मिली और अपने अंतिम 9 तीरों में से केवल 2 अंक गवा कर 3 अंक की यादगार जीत हासिल की। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें फ्रांस के मौजूदा विश्व चैंपियन निकोलस गिरार्ड से 1 अंक से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने इस पदक के साथ कंपाउंड वर्ग में अपने अभियान का भी समापन किया। भारत अब कल प्रतियोगिता के समापन दिवस पर रिकवर स्पर्धा में 2 और पदक जीतने की कोशिश करेगा। भारतीय महिला टीम स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर सेमीफाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैट।
1: जो पदक भारत ने आज के लिए जीता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन नजर कल होगी जहां पे स्वर्ण पदक के लिए वो भारतीय टीम जो कोरिया को हरा करके पहुंची है, 10 बार की चैंपियन कोरिया टीम को कल चीन सामने होगा, कितना दबाव होगा।
0: देखिए, सबसे पहले तो आज जो साहिल ने किया है उसकी बात करते हैं कि कंपाउंड में पिछली बार भारत को 5 पदक मिले थे और इस बार बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा, तो इसको एक कॉन्सोलेशन कह सकते हैं कि, और वो भी साहिल जैसे युवा खिलाड़ी जिसके लिए ये दूसरा ही करियर का बड़ा पदक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीत चुके हैं और सामने बहुत ही अनुभवी तीरंदाज थे, पहले सेट में पिछड़ भी गए थे, उसके बाद भी जो शूटिंग और आर्चरी है नर्व्स का खेल होता है, एक सांस से बदल जाता है मुकाबला, तो वहां पर उसको कंपोजर बनाए रखते हुए उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो वाकई काबिले तारीफ है। और अगर हम कल की बात करें रिकर्व में महिला टीम की, तो दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महोद जैसे युवा खिलाड़ी हैं, अनुभव और युवा खिलाड़ी का अच्छा तालमेल है। साउथ कोरिया को हराया है 10 बार की चैंपियन, मनोबल काफी बड़ा होगा और बड़े मुकाबलों में खेलने का काफी अनुभव दीपिका के पास है, अंकिता के पास है, तो मुझे लगता है कि ये जो चाइना से मुकाबला होने वाला है यहां पर वो अनुभव जरूर उनका काम आएगा। और पिछले कुछ अरसों में अगर हम प्रदर्शन को देखें, चाहे वो दीपिका हो चाहे वो अंकिता हो, कहीं ना कहीं एक निराशा होगी कि बड़े टूर्नामेंट में वो पदक जीतने में नाकाम रहे, तो उनके पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और व्यक्तिगत वर्ग की अगर हम बात करें, सिमरनजीत, आप देखिए कॉम्पिटिशन का लेवल कि जब क्वालिफिकेशन हो रहा था तो दीपिका से 3 अंक से पीछे रह गई थी सिमरनजीत और टीम स्पर्धा में जगह बनाने में नाकाम रही, तो उनके पास भी अब एशियन गेम्स की पदक विजेता रह चुकी है, तो उनके पास भी एक नया इतिहास लिखने का ये सुनहरा मौका है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह का पहला चरण भारत के लिए रहा था, बहुत अच्छी नतीजे वहां से भारत के लिए नहीं आए थे, तो उम्मीद होगी यहां पे कम से कम कुछ पदकों के साथ इस अभियान को समाप्त किया जाए। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। आईएसएल फुटबॉल लीग में जमशेदपुर एफसी और बेंगलोर एफसी के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलोर एफसी ने जमशेदपुर पर 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में गोवा एफसी ने मोहन बगान एफसी के भी साथ एक-एक से मुकाबला ड्रॉ खेला। एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता सोमवार से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है। भारत 44 साल बाद इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने बताया कि गुजरात इस प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे।
3: एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की तैयारी पूरी है और 102 मैन और 77 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूंगा, एशियन चैंपियनशिप पहली बार हो रही है, वो भी गुजरात में। कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में होना है उसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा भाई चानू को ज्यादा इंजरी नहीं है, थोड़ा सा उसने शोल्डर में पेन महसूस किया था, तो इसलिए कहीं ज्यादा इंजरी ना हो जाए उसको अभी रेस्ट दे दें। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेना बहुत जरूरी है और एशियन गेम्स में, इसलिए हमने उसको ड्रॉप किया है।
1: इससे कुछ महीने पहले गुजरात ने ही कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, जहां भारतीय खिलाड़ियों का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। यहाँ पर क्या महत्वाकांक्षाएं होंगी अपने भारोत्तोलन के खिलाड़ियों से भारत को?
0: बिल्कुल होगी, क्योंकि

0: कि एक वैसे थोड़ा सा सेटबैक है कि मीराबाई चानू इसमें भाग नहीं ले रही है, हालांकि ये राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए कोई जोखिम लेना ठीक नहीं समझा होगा, और वो सही भी है, लेकिन दुनिया भर के काफी नामी गिरामी ओलंपिक मेडलिस्ट एशियन गेम्स मेडलिस्ट इसमें भाग ले रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपोजर होगा और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ये क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी है, तो यहां से काफी कोटा स्थान हासिल करने की उम्मीद है। और चूंकि गांधीनगर में हो रहा है और ये वही जगह है जो हमारे राष्ट्रमंडल खेलों का अहमदाबाद मेजबान है, और ओलंपिक के लिए भी हम अहमदाबाद ही चुने हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि वहां किस तरीके का प्रदर्शन रहता है। और आगे चूंकि ये बहुत ही पैक्ड शेड्यूल है, बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है आगे, तो यहां से जितने खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा पदक मिलेंगे उतना ही मनोबल उनका बढ़ेगा।
1: जी बिल्कुल, मनोबल के साथ स्ट्रेंथ और फिटनेस मेंटेन रखने की भी परीक्षा कल से शुरू होगी और देखा जाता है कि भारत के लिए ये प्रतियोगिता किस तरह से गुजरती है। मिस्र के गीजा में विश्व स्क्वाश प्रतियोगिता में वीर चोटरानी अगले दौर में पहुंच गए हैं। वीर ने कल पुरुषों के पहले राउंड में हमवतन अभय सिंह को 5 गेम तक चले मुकाबले में 14-12, 8-11, 5-11, 11-7 और 11-2 से हराया। चोटरानी कल दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मिस्र के मुस्तफा असल का सामना करेंगे। अन्य भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो रमित टंडन, वेलावन सेंथिल कुमार बाहर हो गए और अभय भी कल बाहर हो गए थे। और महिला वर्ग में भारत की तरफ से कोई चुनौती इस बार नहीं है इस चैंपियनशिप में अपने अपने कारणों से, तो भारत के लिए बहुत अच्छी प्रतियोगिता ना गुजरती हुई अब तक।
0: बिल्कुल, लेकिन वीर चोटरानी का हालिया प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां से वो भारत के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएंगे।
1: जी बिल्कुल, अच्छी खबरों की आस होगी। और अब बात करते हैं नई दिल्ली में चल रही निशानेबाजी प्रतियोगिता की, जहां नई दिल्ली में 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में आज रेलवे और सेना की टीम का दबदबा देखने को मिला। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे ओलंपियन अनीश भानवाला ने आज पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नई दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल की टीम स्पर्धा में आर्मी की यूनिट ने स्वर्ण पदक जीता। तो एक प्रतियोगिता मुख्य रूप से भोपाल में खेली जा रही है, लेकिन कुछ मुकाबले इसके दिल्ली में भी चल रहे हैं, जहां भारतीय निशानेबाज जो लगातार हर टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यहां भी कुछ ऐसा ही नजर आता हुआ।
0: बिल्कुल, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज देखिए, अनीश भानवाला वहीं अभ्यास करते हैं और उनके लिए तो बिल्कुल घर जैसा है, और ओलंपियन रह चुके हैं, पदक कई बड़े टूर्नामेंटों में पदक विजेता है, तो उनके लिए चुनौती आसान थी और अपेक्षा के अनुरूप ही कहा जाएगा उनका प्रदर्शन रहा।
1: जी बिल्कुल, और अंत में चलते चलते एक बार स्कोर पे नजर डाल लेते हैं, जहां गुजरात और राजस्थान के बीच मुकाबला जारी है और गुजरात ने इस समय 14 ओवर और 5 गेंद में 2 विकेट खोकर 165 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। मोना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री

0: प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य

0: आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से यह निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमरीका

0: सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as Cabinet Ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.
3: After taking the oath as Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari held

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी।

अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करूं, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेप अप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूं और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहां अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था वो आकाशवाणी गोरखपुर के

0: दिल्ली भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहां भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे जो सुगम संगीत गा रहे थे, उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहां, जब आप वहां पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहां पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर्ड नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ न कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक

0: है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
1: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां सात समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR।
0: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
2: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि हम यही मानते हैं यार ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस पीपल टू पीपल टाई जो हमारे दो तीन वर्टिकल हैं उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र वो विश्व में हैं और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता संस्कृति अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट विदेशी आर्टिस्ट हैं जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट तो इस प्रकार से आयुर्वेदा योगा डांस एंड म्यूजिक एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
0: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
3: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम AK जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है और भारतीय प्रतिनिधियों

0: बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त है, अलग अलग देशों के दोस्त है, जिससे मुझे बहुत खुशी, और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए, और आपको सफलता मिलेगी।
1: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है, या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है, तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
2: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक, आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो, या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
1: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है, जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
2: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं, बल्कि वो अनुभव बन चुका है, जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा,
1: और मैं प्रांजल।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति, एक ही मिट्टी सौ सौ रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
4: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ, और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, फिर और हौसला बढ़ाते रहे। मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है।
5: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन्स को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
6: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस।

0: जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है, जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
1: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
2: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
3: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
2: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
3: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
2: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
4: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिलके रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए। हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में, सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया है उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
3: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद,
2: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
3: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
5: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहां लद्दाख में हो गया।

0: बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है। और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए, पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पीवी काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। उधर तमिलनाडु में तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
5: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के वेलिविडूर में महबूबा नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मिश्रा पार्क का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। खेलों में चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Ketania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai today and staked claim to form the government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamaraga Vetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from the Congress, left parties, Vidyutalaya Chiruthaigal Katchi, VCK, and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including the Congress with five MLAs and CPI, CPI-M, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested yesterday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, Indian Army and industry on the successful flight test of Agni missile with MIRV capability. Mr. Singh said the achievement will add an incredible capability to the country's defence preparedness against the growing threat perceptions. The Enforcement Directorate ED has arrested Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in connection with an alleged money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited. Earlier, the ED had conducted operations at five locations in Delhi, Gurugram and Chandigarh in connection with the case. The action was taken under the criminal sections of the Prevention of Money Laundering Act 2002. The Wrestling Federation of India, WFI, issued a show-cause notice to grappler Vinesh Fogart today, accusing her of indiscipline and anti-doping rule violations. In the 15-page notice, the WFI said Vinesh is ineligible to compete in domestic events until the 26th of June this year for not completing the mandatory six-month notice period required for athletes returning from retirement under UWW anti-doping rules. In IPL cricket, Gujarat Titans have set a 230-run target for Rajasthan Royals at the Sawai Man Singh Stadium in Jaipur. In reply, Rajasthan Royals was 78 for 3 in 6 overs a short while ago. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अपर्णा सिंह। मुख्य समाचार। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यन जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मध्य दक्षिणपंथी नेता पीटर मैग्यार ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अमरीका और दक्षिण कोरिया ने जहाज निर्माण में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत ने कल ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। श्री सिंह ने कहा कि बढ़ते खतरे के मद्देनजर इस उन्नत मिसाइल से देश की रक्षा तैयारियों को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारस्परिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैको के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
2: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री

0: मंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। मध्य दक्षिणपंथी नेता पीटर मैग्यार ने आज हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 12 अप्रैल को हुए चुनाव में राष्ट्रवादी नेता विक्टर ऑर्बन पर निर्णायक जीत हासिल की थी। इस जीत के साथ ही श्री ऑर्बन का 16 वर्षों का शासन समाप्त हो गया और मैग्यार की तीजा पार्टी को संवैधानिक बहुमत प्राप्त हुआ। 45 वर्षीय नेता ने भ्रष्टाचार से निपटने और पूर्व प्रधानमंत्री के शासनकाल में न्यायपालिका, मीडिया और अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए लागू की गई नीतियों को रद्द करने का वादा किया है। श्री मैग्यार ने यूरोपीय संघ के साथ हंगरी के तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने का भी संकल्प लिया है। श्री ऑर्बन के शासनकाल में यूरोपीय संघ के साथ तनाव बढ़ गया क्योंकि हंगरी मॉस्को के करीब आ गया और रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के यूरोपीय संघ के प्रयासों का विरोध किया। श्री मैग्यार का प्राथमिक लक्ष्य अरबों यूरो से अधिक की निलंबित यूरोपीय संघ धनराशि को जारी करवाना है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए अभियान के दौरान नष्ट किए गए प्रमुख आतंकवादी ढांचों की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई एक निर्णायक, सुनियोजित और सटीक कार्रवाई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज रेड स्क्वायर में आयोजित विजय दिवस सैन्य परेड का निरीक्षण करते हुए यूक्रेन में रूस की जीत पर विश्वास व्यक्त किया। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर विजय की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। समारोह में कई विदेशी नेता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री पुतिन ने यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे नाटो ब्लॉक द्वारा समर्थित और हथियारों से लैस एक आक्रामक शक्ति का सामना कर रहे हैं। विश्व दर्पण समारोह आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जहाज निर्माण में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दक्षिण कोरिया द्वारा अमरीकी जहाज निर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने और उसकी क्षमता बढ़ाने में मदद करने की प्रतिबद्धता के तहत किया गया है, जो द्विपक्षीय व्यापार वार्ता का एक प्रमुख हिस्सा है। वाशिंगटन में दक्षिण कोरिया के उप व्यापार मंत्री पाक जंग सुंग और अमरीका के वाणिज्य उप सचिव विलियम किमिट ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पिछले साल के व्यापार समझौते के तहत दक्षिण कोरिया ने अमरीकी जहाज निर्माण क्षेत्र में 150 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने का वादा किया था। इस समझौते में वार्षिक 20 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना है। अमरीका ने कहा कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्री रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमरीका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।

0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस हंता वायरस से प्रभावित एमवी होडियंस क्रूज जहाज से 140 से अधिक यात्रियों और चालक दल को सुनिश्चित निकालने के लिए स्पेन के टेनरिफ पहुंच गए हैं। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने आज विनेश फोगाट को अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 15 पृष्ठों के नोटिस में महासंघ ने कहा कि UWW डोपिंग विरोधी नियमों के अंतर्गत संन्यास से वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य 6 महीने की नोटिस अवधि पूरी न करने के कारण विनेश इस वर्ष 26 जून तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मध्य दक्षिणपंथी नेता पीटर मैग्यार ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जहाज निर्माण में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Renuka with the World News. The headlines. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. Peter Magyar sworn in as Hungary's new Prime Minister. South Korea and the United States sign MOU to strengthen bilateral cooperation in shipbuilding. And India's Sahil Jadhav clinches bronze in men's individual compound event at Archery World Cup Stage 2 in China. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle system from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested yesterday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, Indian Army and industry on the successful flight test of Agni missile with MIRV capability. Mr. Singh said the achievement will add an incredible capability to the country's defence preparedness against the growing threat perceptions. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met Prime Minister of Trinidad and Tobago Kamala Prasad Bisisar and explored new ideas and initiatives to further strengthen the bilateral cooperation. On his visit, Dr. Jayashankar addressed the flag-raising ceremony at the Ministry of Foreign and CARICOM Affairs of Trinidad and Tobago. The minister lauded the traditional relationship between India and Trinidad and Tobago.
2: India has traditionally had very warm and friendly relations with Trinidad and Tobago, and these ties have been underpinned by shared history, our struggle against colonialism, and by our very special bonds of cricket. The people of our two countries share so much in common, whether we talk of clothing and sports or food habits and traditions.
1: The High Commission of India in Colombo today organized an exhibition in Colombo to mark 1 year of Operation Sindoor, showcasing images of key terrorist infrastructure destroyed during the operation launched in response to the Pahalgam terror attack.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 14 सेकेंड। तो आप तमाम सुनने वालों को आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलोस आदाब और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। आज की शाम हम आपको ऐसे ही मौसिकी के सफर पर लेकर चल रहे हैं जहां पर एक से बढ़कर एक नगमे हैं और पहला नगमा एक ऐसा नगमा है जो आपको हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आज भी सुनते ही चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आता है। दरअसल आज का वो दौर नहीं है, वो दौर था बहुत पुराना 60-70-80 का वो दशक जब खतों के जरिए हमारी बातचीत हुआ करती थी। दरअसल ये वो दौर था जब खतों के जरिए बातचीत और एक दूसरे को मिलने और पैगाम पहुंचाने के एक बहुत ही खूबसूरत जज्बों के साथ खते भेजी जाया करते थे और एक सिलसिला शुरू होता था बातचीत का उन खतों के जरिए उन खतों के माध्यम से और फिर वो सिलसिला मोहब्बत में बदलता था। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस सफर में और आज के इस

सफर का आगाज करेंगे। ऐसे ही खूबसूरत नगमे के साथ, और वो नगमा है 1968 में आई फिल्म कन्यादान के एक बहुत ही खूबसूरत गीत से, जिसको बहुत ही खूबसूरती से गाया है मोहम्मद रफी साहब ने, और इस गीत को लिखा है नीरज साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये नगमा।

कन्यादान फिल्म का यह नगमा मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में आ गया। सुनिए दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं इस वक्त आप। और सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में बात अब एक ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि अभिनेत्री हेमा मालिनी के करियर में एक अहम मोड़ भी साबित हुई। और वो फिल्म है 1971 में आई अंदाज। ये फिल्म उनके अभिनय सफर की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ये वो दौर था जब शमी कपूर साहब का स्टारडम थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन उनके शानदार परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब सराहा। यह फिल्म उनके करियर की आखिरी हिट फिल्म साबित हुई और इसमें उनका किरदार भी उनके बाकी रोल से काफी अलग और खास माना जाता है। वहीं राजेश खन्ना साहब की खास मौजूदगी ने इस फिल्म की सफलता में एक अहम किरदार अदा किया। यह फिल्म उनके लगातार 17 हिट फिल्मों के सिलसिले का हिस्सा भी बनी। फिल्म की एक और खास बात यह रही कि अभिनेता अजीत का रोल, जिसमें उन्होंने एक संवेदनशील किरदार निभाया था जो उनके आम किरदारों से बिल्कुल अलग था, जिसको दर्शकों ने भी काफी सराहा। इस फिल्म का एक और सुपरहिट नगमा है, एक बेहद खूबसूरत इस फिल्म का एक नगमा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिसको किशोर कुमार साहब ने अपने खास अंदाज में गाया था। इस गाने ने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि आज भी जब जिंदगी से जुड़ी हुई बातें होती हैं या जिंदगी की मुश्किलात की बातें होती है तो ये नगमा हमें बहुत ही ढांढस बनाता है। हम सब इसे गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस गाने के लिए किशोर कुमार को फिल्म फेयर के अवार्ड के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नामांकन भी मिला, मगर उनको यह अवार्ड नहीं मिल पाया। लेकिन इसी गीत के लिए हसरत जयपुरी साहब को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के अवार्ड से नवाजा भी गया था। तो आइए इसी फिल्म का एक दूसरा बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में, जिसको लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं इस वक्त आप, और महफिल है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार, और हर सिंगार की इस महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक फिल्म की। आज बात करेंगे उस फिल्म की जिसने रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोरी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1981 में आई फिल्म सिलसिला की। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक यश।

डिजाइन की थी। फिल्म की शूटिंग कश्मीर से शुरू होकर विदेश, मुंबई और दिल्ली तक चली। यश चोपड़ा ने मीडिया से दूर रहकर पूरी फिल्म को प्राइवेट तरीके से शूट किया। उन्होंने इसे रियल लाइफ का रियल लाइफ में आना बताया था। यश चोपड़ा साहब का मानना था कि दर्शकों का ध्यान कहानी से ज्यादा विवादों पर चला गया था, जिस वजह से यह फिल्म कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाई। लेकिन इसके बावजूद यश चोपड़ा साहब ने एक इंटरव्यू में इसे अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक बताया था। इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड में 3 अलग अलग श्रेणियों में नॉमिनेशन भी मिले, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, मगर इन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिल पाया। सिलसिला सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड की उन कहानियों में से एक है जो रील और रियल लाइफ के बीच की लाइन को मिटाती हुई नजर आती है। इस फिल्म के गीतों को बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा था शिवहरि साहब ने और गानों के बोल लिखे थे जावेद अख्तर, निदा फाजली और हरिवंश राय बच्चन जैसे दिग्गजों ने। देखा एक ख्वाब तो यह सिलसिले हुए जावेद अख्तर साहब का बतौर गीतकार पहला नगमा था। तो आइए जावेद साहब के लिखे उसी पहले गीत को सुनवाते हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हर सिंगार के दिलकश महफिल में।

0: किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म सिलसिला का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हर सिंगार की यह महफिल और हर सिंगार की इस महफिल में अगला नगमा 1975 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म से। हम बात कर रहे हैं साल 1975 की एक ऐसी ही सुपरहिट फिल्म की जिसने उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम किया, और वो फिल्म थी राज खोसला साहब के लेखन और निर्देशन में आई फिल्म प्रेम कहानी। इस फिल्म में अपने दौर के बड़े नामचीन सितारे शशि कपूर, राजेश खन्ना और मुमताज मुख्य किरदार में थे, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से कहानी को और भी खास बना दिया था। इस फिल्म के गीतों को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने, जिनकी धुनें आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। और सबसे खास बात, प्रेम कहानी साल 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक तो रही ही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। एक ऐसी फिल्म की कहानी जो अपने नाम की तरह ही प्यार और इमोशन से भरपूर है। इस फिल्म का एक बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमा जिसके बोल की नजाकत आपके दिल में उतर जाएगी, जिसको गाया है लता जी और मुकेश साहब ने। इस गीत के नगमा निगार हैं आनंद बख्शी साहब और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का।
1: बड़े शौक से जाइए छोड़कर मगर सहने गुलशन से।

0: मुकेश साहब और लता जी की इसी आवाज के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए हर सिंगार से इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में ठीक 11:10 पर। तब तक के मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11:05 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। गीत मेरे मनमीत यानी सुनहरे दौर के वो नगमे जो आपके दिल के बेहद करीब है, गोल्डन एरा के वो नगमे जो हम उन्हें बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, तिरकना चाहते हैं उस पर। ये वो नगमे होते हैं जो हमारे दिल के इतने करीब हैं कि जब भी हम सुनते हैं ऐसा लगता है कि हम उसी दौर में चले गए हों। और बात जब गोल्डन एरा की होती है तो 1947 या यूं कहें 1940 से लेकर 1960 और 65 के बीच के जो नगमे हैं वो सब हम सब के दिल के बेहद करीब हैं। उन्हीं नगमों में से हम खास तौर से उन नगमों को चुनकर लाए हैं जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ये वो दौर था जब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी तकनीक नहीं थी, उसके बावजूद ऐसे फिल्में बना गए हमारे बुजुर्गों ने कि हम हमेशा उसको याद करते हैं और ताकयामत शायद याद करते रहेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहला एक बहुत ही खूबसूरत नगमा गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में फिल्म आजाद से। यह फिल्म आई थी 1955 में। SMS नायडू के निर्माण और निर्देशन में बनी है फिल्म जिसमें मुख्य किरदार निभाया था दिलीप कुमार साहब, मीना कुमारी, ओम प्रकाश, प्राण, राज मेहरा, रणधीर, अचला सचदेव, शामी और एस नजीर वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है श्री रामचंद्र ने। इसी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा लता जी और उषा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में गोल्डन हीरा का ये वो हीरा जो हम बार बार सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारे दिल के बेहद करीब है।

आज़ाद फिल्म का यह नगमा था। आवाज़ें थी लता मंगेशकर जी और उषा मंगेशकर की। बेहद खूबसूरत यह नगमा और इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल है गोल्डन एरा के उन नगमों की जिसका नाम है गीत मेरे मनमीत। ये वो गीत हैं, ये वो नगमे हैं जो हमारे मनमीत हो गए। और ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं आपके अपने पसंदीदा इस प्रोग्राम में। और अगला नगमा एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म चोरी चोरी से। यह फिल्म आई थी 1956 में। चोरी चोरी एक ऐसी फिल्म जिसमें हास्य भी है, व्यंग भी है और इसके निर्देशक हैं अनंत ठाकुर। इस फिल्म के लेखक थे आगा जानी काश्मीरी और इस फिल्म में मुख्य किरदार जिन लोगों ने निभाया था वो थे नरगिस, राज कपूर साहब, प्राण, गोपी, भगवान, डेविड मुखरी, राज मेहरा और जॉनी वॉकर वगैरह। इन तमाम लोगों के अभिनय से सजी ये फिल्म अपने आप में बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। यह फिल्म जितनी खूबसूरत थी उसके नगमे भी उसके संगीत भी उतने ही प्यारे थे। इस फिल्म के गीतों को लिखा हसरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा शंकर जयकिशन साहब ने।

इसी फिल्म का एक नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और खास बात यह है कि शंकर जयकिशन साहब को इस फिल्म के संगीत के लिए फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के निर्देशन का पुरस्कार भी मिला था। इसी फिल्म का यह नगमा लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की दिलकश महफिल में आपके लिए।

लता मंगेशकर और मन्नत साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में ये नगमा था फिल्म चोरी चोरी से, और फिल्म आई थी 1956 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत रोमांटिक और सदाबहार गीतों के साथ

हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। अगला नगमा इस महफिल में एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म, ये फिल्म आई थी 1957 में जिसका नाम था दो आंखें और 12 हाथ। ये फिल्म अपने आप में बेहद खूबसूरत फिल्म थी और इसके लिए इस फिल्म के लिए कई सारे अवार्ड भी मिले थे। वी शांताराम साहब के निर्देशन में, निर्माण और निर्देशन में बनी यह फिल्म जिसको लिखा था जीडी मेडुलकर ने, और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में खुद वी शांताराम, संध्या, बाबूराव पेंडारकर और उल्हास के साथ बीएम व्यास वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा भरत व्यास ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा वसंत देसाई साहब ने। खास बात यह है कि इस फिल्म को 1957 में नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म को सिल्वर बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइज ऑफ द जूरी के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड से भी नवाजा गया वी शांताराम जी को। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में, जिसे सुनकर आप बिल्कुल उसमें खो जाएंगे। ये गोल्डन एरा के वो हीरे हैं जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही हम हमेशा सुनते रहें और ऐसे ही गुनगुनाते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं फिल्म दो आंखें और 12 हाथ के इसी नगमे के साथ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:30 और 42 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, गोल्डन एरा के वो नगमे जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ये वो नगमे हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब है और ये वो नगमे हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये उस दौर के नगमे हैं जो बहुत पीछे छूट गए लेकिन आज भी बसते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर से उसी हकीकी दौर में चले गए हों। ऐसा ही एक नगमा, अगला नगमा आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज से। यह फिल्म आई थी 1958 में। शक्ति सामंतर साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसका निर्माण भी उन्होंने खुद किया था, इसमें मुख्य किरदार में थे अशोक कुमार साहब, मधुबाला, केएन सिंह, मदनपुरी, ओम प्रकाश, धूमल, सुंदर, कम्मो, ब्रह्मा भारद्वाज, चमनपुरी वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा हम सब के चहेते, हम सब के प्यारे कमर जलालाबादी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा ओपी नैयर साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में आपके लिए।

0: हो गई।
1: आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म हावड़ा ब्रिज से। ये फिल्म आई थी 1958 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। और गोल्डन एरा के वो नगमे जो हम बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, उन्हीं नगमों में अगला नगमा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यादगार फिल्म और कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित इस फिल्म को एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसके निर्देशक थे शोमैन, हम सबके चहेते राज कपूर साहब। इसका निर्देशन किया था राधु कर्माकर ने और इस फिल्म का निर्माण किया था राज कपूर साहब ने। राज कपूर साहब ने ना सिर्फ निर्माण किया था बल्कि इसमें बहुत ही खूबसूरत अदाकारी भी की थी। और यह फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में थे राज कपूर साहब, पद्मिनी, प्राण, चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा, नाना पालिस्कर, सुलोचना चटर्जी और विश्व मेहरा। इस फिल्म के गीतों को लिखा हजरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा शंकर जयकिशन साहब ने। हजरत जयपुरी साहब के साथ में शैलेंद्र साहब ने भी कुछ गीत को लिखा है इस फिल्म के। और खास बात यह है कि इस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कारों में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। 9वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में इस फिल्म ने 8 श्रेणियों में सबसे अधिक 4 पुरस्कार जीतकर अपनी अलग पहचान बनाई थी। और जो पुरस्कार इनको मिला था उनमें थे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, राज कपूर साहब

को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार राज कपूर साहब को ही मिला था। बेस्ट संपादन का पुरस्कार मिला था जीजी मायकर साहब को और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का पुरस्कार एमआर अचरेकर को मिला था। यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत थी, अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक थी और यह फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है। आइए इसी फिल्म का एक नगमा हम आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले, महेंद्र कपूर, साहिर लुधियानवी एंड माफ कीजिएगा लता मंगेशकर जी और गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे साहब के साथ साथ महेंद्र कपूर की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

लता मंगेशकर जी, गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर की आवाजों में यह नगमा था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, और यह फिल्म आई थी 1960 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका अपना दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलुस आदाब। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल है गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में। आपको यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आप हमारा मेल आईडी नोट कर लें। हमारा मेल आईडी है fmgoldaidaily@gmail.com। मुझे आपके संदेशों का इंतजार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, और जब तक आपके पैगामात हम तक पहुंचेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ। और अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म 1965 में आई गुमनाम से। राजा नवाती साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म बेहद खूबसूरत सस्पेंस थ्रिलर और रोमांस

मनमोहन, लक्ष्मी छाया, हीरा लाल और सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले महमूद साहब। अगला नगमा भी उन्हीं पर फिल्माया गया है और इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। आइए सुनते हैं फिल्म गुमनाम का वही बेहद खूबसूरत नगमा। आवाज है मोहम्मद रफी साहब की और साथ ही साथ महमूद साहब की।

0: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में। जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

झमतारी जग धारी जाने जाने को।

0: मोहम्मद रफी साहब और महमूद साहब की आवाजों में नगमा था फिल्म गुमनाम से। ये फिल्म आई थी 1965 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। नगमा नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत ये कव्वाली है। आवाजें हैं आशा भोसले, मुबारक बेगम, इन दोनों की आवाजें हैं और जिसे लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। और ये कव्वाली है फिल्म आरजू से और ये फिल्म आई थी 1965 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान, महमूद, नाजिमा, नासिर हुसैन, अचला सचदेव, नाना पालिस्कर, ब्रह्मा भारद्वाज और धूमल वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था और इन तमाम अभिनेताओं अभिनेत्रियों के अभिनय से यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत बन गई थी। तो चलते चलते यह कव्वाली आपके लिए।
1: जारी।

0: अशा भोसले और मुबारक बेगम की इसी आवाज के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। सबसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद श्रेयसी रहेंगी आपके साथ लेकर अगला कार्यक्रम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात ठीक 3:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धने खाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री रवि रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य का पीछा

पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है कजली, और ये शानदार कहानी लिखी है इंदिरा दांगी ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी कजली।

47 डिग्री तापमानदार टीका टीक दोपहरिया है। गजली सिर पर सौदा किराने का झोला धरे बाजार से घर लौट रही है। मोटा की चक्की तिराहे से आगे जाती संकरी सड़क, उसके किनारे भीड़ जुटी है। होगा कोई खेल तमाशा, गजली को क्या, सूती धोती के छोर से मुंह पोंछती वो अपनी तेज चाल में है कि उस नवजात क्रंदन ने जैसे उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। अरे ये जन्म लिया बच्चा यहाँ कहाँ रोता है? उस स्वर के लवलेश मात्र ने सब कुछ विचलित कर दिया। मर्द मानुषों की भीड़ में धस कर गजली देखती है, ये क्या, सड़क किनारे

गड्ढे के कूड़े में एक नवजात शिशु भिलख रहा है। खजली ने उस पार देखा। गंदगी, झाड़ झकूरों और तपते वीराने के पार दूर कुछ बसाहट दिखाई पड़ती है, लेकिन आसपास माँ तो क्या, मनुष्य भी कोई नहीं। बस आवारा जानवर इधर उधर को ही चले आते दिखते हैं। गड्ढे के इस पार तिराहे की भीड़ कुछ देर से जुटी लगती है। उसमें से ज्यादातर अपने फोन के कैमरे से फटाफट फोटो खींच रहे हैं। दो तीन लड़के वीडियो बना रहे हैं। कुछ आवाजें पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो की भी है। कोई कह रहा है जरूर ये लड़की होगी, इसीलिए घूरे पे फेंक दी। क्या पता लड़की है कि लड़का। आजकल तो लड़कों को भी घूरों पर फेंकने की खबरें छपती है अखबारों में। भाई कोई लड़का कैसे फेंक सकता है, क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है। कजली भीड़ की अश्लील हंसी के परे देख रही है। उस ओर के आवारा जानवर बड़े गड्ढे के किनारे कूदने से पहले पीछे हटने की मुद्रा में आ चुके हैं। गड्ढे में नवजात के क्रंदन का स्वर मंद पड़ रहा है। उसके ऊपर चींटे रेंग रही हैं। इतने मर्द मानुषों की भीड़ के रहते अकेली चनी आगे कैसे बढ़े। और कजली तो 2 सीटर का 5 रुपया किराया बचाने के लिए सौदा किराने का झोला सर पर रख कर 2 किलोमीटर दूर से पैदल चली आ रही है। वो अपना सैकड़ों रुपयों का सामान किनारे छोड़कर भला गड्ढे में कैसे कूद जाए। आसमान के ठहरे रथ से सूर्य नारायण आग के बाण चला रहे हैं और भीड़ बातों की। कजली ने आधे चेहरे पर घूंघट निकाला और सिर पर 40 किलो वजनी झोला साधे गड्ढे में कूद गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। गड्ढे में कूदी कजली ने आधे पल में शिशु को उसकी चींटों भरे शॉल में से उठाकर खुद से चिपटा लिया। अरे ये देखो देखो जनी जनी, मानस में अगुवाई का ये हौसला। अरे कहीं इसी का तो नहीं, अस्पताल ले जाओ बच्चे को। पुलिस को किसी ने फोन किया था? अरे भाई पुलिस को तो 3 फोन कर चुके हैं, पुलिस के पास तो जीप ही नहीं है। अरे पुलिस क्या तुमसे पूछ पता कर आएगी? अरे वो तो अचानक आएंगे और 2-4 को पकड़ लेंगे कि तुम ही ने देखा होगा सब, आती होगी पुलिस तो। भीड़ अचानक छटने लगी, सब चेहरों पर एक साथ भय दिखा। पुलिस मामला हुआ तो गवाही के लिए वो गर्दन पकड़ेंगे। तिराहा 2 पल में सूना हो गया। बस इक्के दुक्के उत्साही लड़के ही वहां रह गए जो अपने अपने फोन के कैमरे से वीडियो उतारने में तलीन हैं। कजली ने नवजात की नग्न देह से चींटे खींचे। आहा कन्या रत्न, जगह जगह हो आए घावों से खून छल छला आया है। 5 घंटे की नवजात अग्नि सी धूप, अग्नि सी ही भूख से बिलबिलाकर अब वो मरना संसी उसकी बाहों में झूल रही है। हे भगवान, ऐसे स्वागत किया है इस संसार ने इस लड़की का। कजली ने सूती धोती के शीतल छोड़ तरे उस जीवित मांस पिंड को समेट लिया। सिर पर झोले का वजन साधा और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए सोचती सी इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे पर मदद की दरकार देखकर इक्के दुक्के लोग जो वहां से हटने को ही थे तुरंत रफा दफा हो गए। कांटे, झाड़, पत्थर, गंदगी फांदती कजली फेरा देकर वापस तिराहे पर आ गई। कजली और किलोमीटर भर चलती है और घर पहुंचती है। सरकारी स्कूल नंबर 1 के पीछे कुमारपुरा में किराए के ये 2 कमरे, 2 नन्हे बच्चे, 7 साल का कैलाश और 4 साल की सोन। दोनों बच्चे कब से राह तकते हैं माँ के लौटने की। मम्मी झोले में क्या क्या लाई हो, ये कौन है? ये तुम्हारी बहन है। बहन तो क्या नाम है इसका? नाम तुम ही रख दो ना। नाम

कजली ने नवजात की देह साफ की, अब तक तो नाल भी नहीं कटी और ये जख्म अस्पताल ले जाना होगा, पर उससे भी पहले उसे दूध पिलाना होगा। एक कप भर दूध है इस समय घर में, बच्चों के दूध पी चुकने के बाद ये कप भर दूध वो शाम तक बचाकर रखती है अपनी चाय के लिए। बच्चे के मुंह में आधा चम्मच भर दूध डाला तो उसे पीना भी ना आया। कजली की आंखें भर आई, अभागिन माँ ने पहला स्तनपान भी नहीं कराया इसे। मन इतना द्रवित हुआ कि वेग आत्मा की गहराई तक जा पहुंचा। ममता आंखों में आंसू बन झरझर झरती है, लेकिन स्तनों में ये कैसी झंझनाहट। सोन को माँ का दूध छोड़े साल हुआ, पर तब तक छाती में दूध नहीं उतरा। अब इसके लिए जीवन अमृत की बूंदें उतरेंगी भी या नहीं। उसने अपने आंचल को उड़ा दिया बच्ची को, और अगले पलों में एक मुस्कुराहट फैल गई उसके नम चेहरे पर। संसार में आने के पिछले 4-5 घंटों से कष्ट और घाव तो भरपूर मिल चुके नवजात को, लेकिन जीवन का रक्षक ये अमृत दूध अब मिला है।

कजली का दिमाग रफ्तार में है। जल्दी से घर के काम निपटाए, खाना पकाकर दोनों बच्चों को खिलाया और उन्हें साथ लिए दरवाजे पर ताला लगा अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। शराबी पति देर रात तक लौटेगा, तब तक तो वो लौट ही आएगी। ना लौट सकी तो पड़ोसी को चाबी दिए जा रही है। नवजात को देखकर कुम्हारों के पुरा में भीड़ जुट गई। कन्या का जन्म व्यर्थ नहीं जाता, गर्भ में आती है तो जन्मती ही है और जन्मती है तो जी भी जाती है। अपना भाग्य अपने साथ लाई है, अब तो जी गई ये भी। किसी ने एक सिक्का, किसी ने दो और किसी ने 5 का नोट रखकर नवजात कन्या के पांव छू लिए। सिविल अस्पताल की गजब अव्यवस्थाएं, कसैले जहर बुझे बर्ताव, गरीब से गरीब आदमी भी कलेजा थाम कर ही यहाँ इलाज के लिए आ पाता है। कम पढ़ी लिखी कजली लेकिन जानती है इस निर्मम तंत्र में जीवित कैसे बचे रहना है। मुख्य साहब के केबिन में अव्वल तो आम आदमी की सीधी पहुंच असंभव है। नवजात को पांव छुआई में जो सिक्के नोट मिले थे, सब चपरासी की फैली हथेली पर रखने पड़े उसकी माँ यशोदा को। दिल भीतर ही भीतर कटकर रह गया, हालात जो न कराए। 3 बच्चों को लिए एक गवई माँ की ये जरूरत कि उसके एसी केबिन में घुस आई। मुख्य साहब घंटी बजाकर उसे बाहर पिकवाने ही वाले थे

0: खचली ने नवजात बच्ची उनके पैरों में डाल दी। मशीनी लाल फीता शाह का पत्थर दिल अप्रत्याशित तौर पर धड़का। नवजात को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। यो खबर तो अव्वल पुलिस को देनी ही थी, लेकिन चूंकि मुख्य साहब को अपने साले की बेटी की सगाई के लिए अभी ही सपरिवार निकलना था, तो पुलिस के लंबे पूछताछ शेड्यूल से बचा गया। नवजात का इलाज शुरू हो गया। दोनों बच्चों को घड़ी घड़ी भूख लगती है। हाथ पास का भोजन चुक गया तो कजली ने आधा किलो आटा खरीद लिया और मरीजों के परिजन जहां ईंटों के चूल्हे बनाए हाथों से रोटियां थोप थोप कर सेक रहे थे वहां चली आई। किसी के जलते चूल्हे पर वो भी रोटियां सेक आई। अब बच्चों को परोसे किसमें, अपना आंचल फैलाकर माँ ने तीन जगह रोटियां रख दी। बच्चे खाना खाने लगे। खजली ने रोटी का पहला कौर मुंह में डाला ही था कि उसकी पीठ पर अचानक इतनी तेज लात मारी गई कि वो मुंह के बल धूल में जा गिरी। भूखी माँ और भूखे बच्चों का सब भोजन मिट्टी हो गया। अच्छा जी, क्या मैं यहाँ मौजूद नहीं था? क्या तेरा पति नहीं था जो तू जहाँ चाहे मनमर्जी से कहीं भी आती जाती है? ये था उसका नशेड़ी पति मनसुख, पापड़ जैसा पतला, फेफड़ों में रोग का स्थायी मरीज और नशे में घुल घुल कर मिटने की कगार पर आ खड़ा हुआ। हमेशा की तरह नशे में धुत उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक चला आया था। गालियाँ बकते हुए मनसुख ने अपनी टायर की चप्पल उतार कर उसके मुंह पर मारनी चाही कि धूल से उठती कजली ने उसे एक जोर का धक्का दिया। एकदम से वापस नहीं उठ सका, पड़ा पड़ा ही चिल्लाने लगा,
1: देखो भैया, सब लोग देखो, ये कैसी जनी है जो अपने आदमी पे हाथ उठाती है। ना जाने किसको उठाकर लाई है और मेरे सर पर रखती है। मैंने मना किया तो मुझे पीटती है।
0: बिसूरते मनसुख के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा उठी। बिना पूरी बात जाने लोग तरह तरह से उसकी पत्नी को लांछित करने लगे। कैलाश और सोन के हाथ थामे कजली माँ शिशु वार्ड में चली गई, उपचाररत अपनी तीसरी संतान के पास। सवेरे नवजात को अस्पताल से डिस्चार्ज मिला। घर आकर काम में जिन की तरह जुट गई कजली। घर बच्चों के काम पूरे हुए तो अगरबत्ती बनाने बैठ गई। नवजात को सोन ने नाम दिया है गंगा। एक बूढ़ी पड़ोसन नाम जानकर मुस्कुराई, फिर आने का मकसद बताया, ओ गंगा की मम्मी, तनिक एक कटोरी शक्कर हो तो उधार दे दो। किसी स्वर्ग से निकली गंगा किन्हीं शिव जटाओं में सहज समा गई। पर गंगा के भाग्य में हिमालय में टिके रहने का सौभाग्य कहाँ। संसार के बीहड़ों राख आग अस्थियों की तरफ चले जाना उसका प्रारब्ध ठहरा।

तीनों बच्चे जबकि उनकी माँ की स्नेहा सिक्त छाओ में है और कजली का परिश्रम भरा दिन निश्चिंतता से बीत रहा है, कुम्हारपुरा के इस किराए के घर में 1 किलोमीटर पीछे मोटा के चक्की तिराहे पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। एक सिपाही इधर उधर दुकानों पर पूछताछ कर रहा है। कल इधर से बार बार फोन कर रहे थे लोग, इधर कहीं गड्ढे में किसी ने बच्चा फेंका था क्या? गड्ढा तो यहां है, इसका मतलब है कि वारदात हुई है। बताओ तुम में से किस किस ने देखी वारदात, बताओ मुझे। जो दुकानदार सब विपरीतताओं में अपनी दुकान चलाना जानते थे वे अनिभिज्ञता जताकर इधर उधर हो गए, लेकिन एक दुकान का तरुण नौकर जो यथार्थ जीवन को कम जानता था उसने वो वीडियो दिखा दिया जिसमें एक स्त्री गड्ढे में कूदकर नवजात को चींटों भरी शॉल से निकालती है और अपने दामन में समेटकर अपनी राह चली जाती है। ठीक, सिपाही ने हथेली पर घिसी तंबाकू ठोक कर गाल में दबा दी, तुम्हारा ये मोबाइल जब्त किया जाता है, चलो थाने। सर सर सर, मुझे फोन कब वापस मिलेगा? नाबालिग लड़के के फोन नहीं जैसे प्राण खिंच गए, ना तो उसके तन पे ठीक कपड़े हैं, ना पैरों में साबुत जूते। ये महंगा फोन पिछले 6 महीने की इस नौकरी की पाई पाई जोड़कर खरीदा था। सिपाही लड़के को अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया और थाने में सीधा थाना प्रभारी के सामने जा पहुंचा। थाना प्रभारी का दिमाग इस वक्त एकदम भन्नाया हुआ था। थाना प्रभारी साहब ने सिपाही के साथ उस गवाह लड़के को आते देखा तो रंगदारी में एक दूसरे मामले का मुलजिम समझकर उसे पुलिस के रोल में पीटना शुरू कर दिया। सिपाही तरुण लड़के को बचाने की कोशिश करने लगा और उसके 8-10 बार दोहराने के बाद थाना प्रभारी के भन्नाए दिमाग तक ये बात पहुंची कि ये तो दूसरे मामले में संभावित गवाह है, एसपी साहब को किसी भी तरह खुश करना होगा। पलक झपकते ही रोजनामचे में FIR दर्ज हो गई। अज्ञात महिला ने अज्ञात नवजात का अपहरण कर लिया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस गवाह लड़के के साथ घटनास्थल का मुआयना करने लगी। गवाह लड़के ने मौका देखते ही दौड़ लगा दी। पुलिस को भागते लड़के के पीछे दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे गवाह भाग गया तो कोई बात नहीं, पुलिस वीडियो के सहारे पूछताछ करती घंटे भर में कुम्हारपुरा में कजली के घर तक जा पहुंची। मैंने तो उसकी जान बचाई है, मौके पर पुलिस पहुंचती ही नहीं थी तब, आप लोग आज पहुंचे। आज तक तो

0: आवारा जानवर उसे हजम कर गए होते। अस्पताल में सब सच बताया था? बताओ।
1: हाँ,
0: देखिए अस्पताल के कागज। नहीं नहीं, मैंने उसे चुराया नहीं है। कहने से जीप में जाकर नहीं बैठी वो, पुलिस को मजबूरन उसके हाथ में हथकड़ी डालनी पड़ी। तीनों बिलखते बच्चों को भी जीप में पीछे धकेल दिया गया। गजली अपने आंसू पोंछती अपने दिल में अपनी मरहूम माँ से मुखातिब है। तुमने मुझे स्कूल कॉलेज जाने दिया होता तो आज मेरी ये गत न होती। अब दरोगा जी के सर का दर्द कुछ हल्का हुआ। थाने पहुंचने तक वो लगातार फोन करते रहे अपने मित्र संवाददाताओं को। थाने पहुंचिए तत्काल, हमने एक घंटे मात्र में अपहरण का एक केस हल कर लिया है। प्रेस वार्ता हो गई। प्रेस वार्ता में कैमरों के फ्लैश चमके। हवालात में बंद महिला और तीन बच्चों की ओर उंगली उठाकर थाना प्रभारी साहब बता रहे हैं, मुलजिम ने कहीं से इस नवजात बच्ची का अपहरण किया है। मुलजिम के पास ये बच्चे बरामद हुए हैं जिन्हें वो अपना बता रही है। प्रेस वार्ता निपटाकर थाना प्रभारी तुरंत एसपी साहब के ऑफिस के लिए निकल गए। रात के नशे और एसपी साहब की फटकार सहित सिर का भयानक दर्द भी अब सब गायब हो चुका था। हवालात में नवजात के लगातार रोने से दीवान साहब तंग आ गए हैं। अरे भाई, कोई इस बच्ची को अस्पताल ले जाओ। गाड़ी नहीं है दीवान जी थाने में? क्यों, कहाँ गई दोनों गाड़ियाँ? एक तो दारोगा जी एसपी ऑफिस में ले गए हैं और दूसरी वो दारोगा जी की जो बिटिया है ना, उसको कोचिंग क्लास छोड़ने गई है। अच्छा, तो कोचिंग क्लास से लौटकर तो आएगी ना अभी? नहीं, वो फिर दारोगा जी की जो मिसेज है ना, उनको बाजार ले जाएगी।
1: हैं?
0: तो क्या अपहृत बच्ची मुलजिम के पास ही रहेगी? और जवाब में होना ये था कि बदबूदार अंधेरी और दुर्गंध भरी हवालात की असहनीय गर्मी में अगले दिन तक माँ बच्चों को सड़ना था। लेकिन आईजी साहब के अचानक दौरे की खबर ने न सिर्फ थाने में सुव्यवस्था का हड़कंप मचा दिया बल्कि बंदियों का भी हड़बड़ी के साथ इंतजाम होने लगा। थाने की जीप बाजार जाती थाना प्रभारी की मेम साहब को आधे रास्ते में सड़क पर उतारकर थाने की तरफ वापस दौड़ी। दारोगा जी हक बकाए थाने में लौट आए और कजली को तीनों बच्चों के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने भेज दिया। क्या तुमने बच्ची को चुराया है? मजिस्ट्रेट मैडम ने सीधा ही प्रश्न कर दिया गजली से। धड़कते दिल को काबू करती बड़े हौसले और संयम से गजली ने विस्तार पूर्वक सारा घटनाक्रम कह सुनाया। अस्पताल के कागज और जब्त वीडियो उसकी सच्चाई के सबूत थे। गजली को आरोप मुक्त करने और बच्ची को अनाथालय भेजने के फैसले के अंत में मजिस्ट्रेट प्रतिभा चौहान ने पुलिस के लिए फिर वही सलाह लिखनी चाही, पर कानून की विदुषी ने अफसोस भरी सांस लेते हुए अपनी कलम रोक ली। मैडम जी, ये बच्ची मुझे दे दीजिए, मेरे सिवाय कोई इसे माँ की तरह नहीं पाल सकता, आंचल पसार कर अनुनय किया कजली ने। मजिस्ट्रेट मैडम आधे पल को अवाक रह गई, फिर संभली। औपचारिक आवाज में उसे बच्चा गोद लेने के कानून के बारे में बताया। कोर्ट के बाहर जाती कजली को दूर तक देखते उसके तरल हृदय में भीतर ही भीतर एक दुआ की, हे ईश्वर, इस बच्ची को बस ये माँ मिल जाए। अंधेरा ढलते कजली दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंची। दरवाजा खुला है, नशे में धुत पति भीतर से उसका नाम ले लेकर गालियां दे रहा है। मोहल्ले के दो एक निकम्मे उसके पास बैठे हैं, उसे शह दे रहे हैं। कजली का दिल एक बार मुकर गया। छोड़ दे ये घर और आदमी, दिन रात के कलह से प्राण तो छूटे। दहलीज पर खड़ी वो ये सब सोच ही रही है कि दोनों बच्चे भागकर घर के भीतर पहुंच गए। पति के मित्र चुपचाप निकल गए। वो भीतर आई और रात का खाना बनाने में जुट गई। अगली सुबह सब घरेलू काम पूरे कर अगरबत्ती बनाने बैठी तो रत्ती भर दिल नहीं लगा उसका काम में। उसके सीने की नसों में खसक भरी सरसराहट होती है। बच्ची दूध के लिए तरस रही होगी। मम्मी, गंगा क्या अस्पताल में है? मम्मी, उसे घर कब लाएंगे हम? क्या आपने बहन को अस्पताल वालों को दे दिया? बच्चों के सवालों ने काम करते हाथों को रोक दिया। कजली निकल पड़ी थाने की ओर। दीवान साहब चौंकते हैं, गजब जनी, कल गिरफ्तार हुई थी आज फिर आ गई थाने। कजली हाथ जोड़कर अनाथालय का पता पूछती है। शहर से 4 किलोमीटर बाहर इस तरफ

सड़क के बाहर टेम्पो टू सीटर नहीं जाते हैं। मोड़ से ही कच्ची सड़क पर पैदल चलती रही कजली, दूर से ही वो अपनी नवजात के बिलखने का सर पहचान जाती है। पैरों में जैसे पंख लग जाते हैं माँ के। कजली ने भागकर गंगा को पलने में से उठा लिया। बच्ची दूध पीते पीते सो गई। उसकी गीली लंगोटी और कथरी बदलकर वापस उसे पलने में लिटा दिया और कुछ देर यूं ही निहारती रही कजली, ओ मेरी बिटिया।

अब उसने चारों तरफ नजर डाली। बड़े कमरे में तीनों पलनों में बच्चे लेटे हैं, जो शायद तीनों ही लड़कियां हैं। बाकी कमरे में खेलती, सोती या रोती एक से लेकर 5 साल तक की कुल 7 लड़कियां हैं। इसके अलावा उसमें 3 छोटे लड़के भी हैं, जिसमें से 2 दिव्यांग दिख रही हैं। कजली इस बड़े कमरे से निकलकर इधर उधर घूमकर किसी अधिकृत व्यक्ति को ढूंढने लगी कि जिससे बात की जा सके। अनाथालय की रसोई, बगीचे, बाथरूम, ऑफिस, सभी स्थलों पर 5 साल से ऊपर की उम्र की लड़कियां काम करती दिख रही हैं। कोई 6 बरस की बच्ची बगीचे के पौधों को पानी देती, तो कोई 7 बरस की बालिका सब्जी काट रही थी। कजली को कहीं कोई कर्मचारी नहीं दिखा। वो दफ्तर गई, जहां 5 साल की एक लड़की पोछा लगा रही थी। बिटिया, यहाँ बात किससे करनी है? ओ मैडम जी तो घर में सो रही हैं। वो सामने ही उनका क्वार्टर है। 5 बरस की लड़की किसी पारंगत नौकरानी की तरह अपने काम में लगे लगे ही जवाब देती है। लाओ बिटिया, मैं तुम्हारी जगह पोछा लगाए देती हूँ। कजली ने उसके सर पर हाथ फेरा। बच्ची इस अप्रत्याशित बात से सिखाया काम भूल गई। आंखें बड़ी कर उसे ताकती हुई बोली, मेरी अम्मा बहुत बुरी थी, उन्होंने मुझे मरने के लिए फेंक दिया, इसीलिए मुझे इतना काम करना पड़ता है। और सब दुत्कारते हैं। नहीं बिटिया, अम्मा बुरी नहीं होती। बुरे होते हैं कुछ लोग, कुछ रिवाज, जो अम्मा से बच्चों को छीन लेते हैं। मैं मार डालूंगी उन सबको। वो बच्ची रोने लगी। तो पढ़ना, खूब खूब पढ़ना, तब जीत जाओगी गंदे लोगों से और गंदे रिवाजों से भी। हो सकता है तब तुम्हें तुम्हारी अम्मा भी मिल जाए। कजली ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और आगे बढ़ गई। इंचार्ज मैडम के कमरे के बाहर खिड़की पर लगा इतना बड़ा कूलर चल रहा है, जिसकी इतनी ऊंची आवाज है या कि उसकी नींद इतनी गहरी है कि बड़े देर तक दरवाजा पीटने पर भी वो दरवाजा नहीं खुला। ऑफिस में इंतजार करने का मन बनाकर वो लौटने को हुई ही थी कि पीछे दरवाजा खुल गया। कौन हो तुम और पालन गृह के अंदर कैसे?

गोसाई जी, एक बच्चे गोद लेना चाहती हूँ, दरख्वास्त ले लीजिए। ऐसे दरख्वास्त हम नहीं लेते, सब कुछ कंप्यूटर में होता है। जाओ जाओ, पहले ऑनलाइन फार्म भरो, बच्ची देखने फिर किसी दिन आना, कहकर उसने दरवाजा फिर बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद पालिंग्रे की बूढ़ी आया, हाथों में सब्जियों से भरे थैले लेकर आई। कजली ने दौड़कर मुख्य द्वार से ही उसके दोनों हाथों से दोनों थैले ले लिए और रसोई तक पहुंचा आई। ऑफिस में पंखे में सुस्ताती वृद्धा अब उसे एक राम कहानी सुना रही है। मैडम के अलावा यहाँ तीन लोग और थे, एक सहायक इंचार्ज, एक ऑफिस वाला और एक चपरासी। एक दिन सात आठ लड़कियां यहाँ से भाग निकली पीछे खेतों के रास्ते। उन लड़कियों की उम्र 10 से 15 के बीच में थी। वो सब पीछे के गांव पहुंची और गांव वालों से रो रोकर आप बीती सुनाने लगी। गांव वालों ने तुरंत पुलिस बुलाई। तब से पालनगृह के दो कर्मचारी जेल में हैं, एक फरार है। मामले में मैडम का भी नाम आया था, लेकिन मैडम की पहुंच बहुत ऊंची है। वो बीमारी का आड़ लेकर तुरंत गिरफ्तारी से तो बच गई, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो गया है। मैडम को तो बस अपना सामान बटोरना है यहाँ से, सो भी वो मुझसे ही करवाएंगी। अरे वो ठहरी थायराइड की बीमार, 18-18 घंटे बेहोश की तरह सोया करती हैं। हे भगवान, ऐसी भयंकर बीमार मैडम पालनगृह कैसे चलाती हैं? पिछले 3 सालों से तो उनका छोटा भाई ही सब काम देखता था, जिसे मैडम ने यहाँ का सहायक इंचार्ज बनवा दिया था। मैडम के रिश्तेदार बड़े ऊंचे अफसर हैं, हाँ, इसीलिए उनका भाई यहाँ कांड करता था और उसकी शिकायत भी न कर सकी बच्चियां। जब कभी भी निरीक्षण वाली टीम आती, लड़कियां जरूर अपनी बात कहती थीं, पर इस चार दीवारी से बाहर उनकी आवाज जाने नहीं दी मैडम के भाई ने। 3 सालों तक यहाँ की बच्चियां यह जुल्म सहती रही और तुम देखती रही अम्मा, कुछ कहती तो मैडम नौकरी से निकलवा देने की धमकी देती थी। मेरा बेटा निकम्मा है, 2 करोटी के लिए मैंने अपना परलोक बिगाड़ लिया। वृद्धा अपनी चिमचिमाई पनीली आंखों को धोती के कोर से पोंछती है। अम्मा, मुझे बच्ची गोद लेनी है जो कल यहाँ आई है, दरखास्त कैसे लगती है? अरे भाई, वो तो अब कंप्यूटर के भीतर से लगती है। तुम ऐसा करो, बाजार चली जाओ, कंप्यूटर कर दुकान पे 50 रुपए दे देना, वो सब कागज पत्तर बनाकर कंप्यूटर में डाल देगा और तुम्हारे नाम की दरखास्त लग जाएगी। 50 रुपए? ओह, तो कल जाऊंगी बाजार। आने से पहले फिर कजली ने अपनी गंगा को दूध पिलाया, सीने से चिपटाया। नेह का कैसा नाता है जो आत्माओं की तार जोड़ता है। दो अपरिचिताएं नहीं, माँ बेटी का एक जोड़ा है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद अगले 8 महीने तक कजली हर इतवार बच्चों के साथ गंगा से मिलने जाती रही। बच्चे हर स्कूली छुट्टी का अब अलग तरह से इंतजार करते। छोटी बहन से मिलने जाएंगे हम, कजली उल्टे फंदे सीधे फंदे के डिजाइन में जल्दी जल्दी स्वेटर बुन रही है। बच्चे दरी पर बैठे पढ़ रहे हैं, तभी कजली के सेल फोन की घंटी बजती है। अधिकृतों के समक्ष आवेदनों की सुनवाई हो रही है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ लिए कमेटी के सामने प्रस्तुत है। तुम्हारा पति नहीं आया साथ में? उसकी सहमति नहीं है क्या? पहले से ही तुम्हारे 2 बच्चे हैं, फिर तुम्हें एक और बच्चा गोद लेने की जरूरत है ही क्यों? अगरबत्तियां बनाने बेचने का मामूली काम करती हो। अच्छा, तो इसमें 2 बच्चों के साथ इस बच्ची को भी अच्छी शिक्षा अच्छा खाना कपड़ा मुहैया करवा पाओगी, इसकी क्या गारंटी है भला? इन सब प्रश्नों का कजली ने एक ही उत्तर दिया है, मैं माँ हूं गंगा की। कमेटी के समक्ष पूरी कहानी है, गंगा के चींटों भरे शॉल से लेकर बुने जा रहे नर्म स्वेटर तक। और कमेटी ने निर्णय सुनाया है। ऑटो में जब कजली तीनों बच्चों के साथ घर के बाहर उतरी तो कुम्हारपुरा में रौनक लग गई। सब नन्ही बच्ची को देखने उमड़ पड़े हैं। कैलाश छोटी गदबद बहन को गोद में उठाकर घुमाने की कोशिश कर रहा है। सोन ने पूछा, मम्मी गंगा बड़ी होकर क्या बनेगी? रसोई करती कजली के हाथ कुछ पल को रुक गए। सोन के प्रश्न की प्रतिध्वनियां उसके भीतर लगातार गूंज रही थी। उसने जैसे खुद से एक वादा किया, मैं अपनी माँ को नहीं दोहराऊंगी, और सधे शब्दों में कहा, जो बनना चाहेगी वो बनेगी। भयानक तपती रसोई में जैसे अनायास ही एक ठंडक खुल गई थी। कजली के रुके हाथ फिर से चल पड़े थे और सोन उसका चेहरा दमक उठा।

अभी आप सुन रहे थे ये कहानी जिसका नाम था कजली। इसे आपके लिए लिखा था इंदिरा दांगी ने। पानी पर लिखी कहानी। इस कार्यक्रम से अब रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम का सामना आज चीन से होगा, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर संग हूं मैं श्रेयसी, और शुरुआत करते हैं हम अपना आज का ये कार्यक्रम इस नगमे के साथ।

आशा भोसले और रफी साहब की आवाज में फागुन फिल्म का ये बेहतरीन गीत दोस्तों आपने सुना। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, जहां हम पुराने और बेहद ही बेहतरीन गीत आपके साथ साझा करते हैं, हम और आप साथ में मिलकर सुनते हैं और उसे यूं ही एंजॉय करते हैं। तो आइए अब रुख करते हैं अपने अगले गीत की तरफ, फिल्म 9 2 11 का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों, जब हम रेडियो पर जुड़ते हैं तो बेहतरीन नगमों के लिए जुड़ते हैं, और क्यों ना हो, आखिर कुछ ऐसे हमारे जज्बात हैं, ऐसे हमारे हालात हैं कि उन्हें शब्दों की जरूरत पड़ती है, और वो सारे शब्द हमें मिलते हैं हमारे हिंदी बॉलीवुड गीतों से। जी हाँ, बेहतरीन नगमे, बेहतरीन गाने और हमारे दिल का हाल। तो आइए अब बढ़ चलें अगले गीत पर।

दिल का तो आलम कुछ ऐसा ही हो जाता है दोस्तों, जब कोई बड़ी बड़ी आंखियां दिखाए तो बस दिल तो चूहा बन के कहीं दुबक ही जाता है। खैर, इस तरह की नोकझोंक अटकेलियां तो हर तरह के रिश्तों में लगी रहती है, लेकिन जब दिल का मामला होता है तो इन अटकेलियों का एक अलग ही रस होता है। अभी जो गीत आपने सुना, फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से लिया हमने आवाजें गीता दत्त और रफी साहब की। बढ़ते हैं अब अगले गीत की तरफ। गीता दत्त की ही आवाज में अगला ये नगमा फिल्म भाई भाई से।

0: क्यों दोस्तों, ये कहना कहीं से भी गलत तो नहीं कि हमारे दिल के जज्बात, हमारे होठों पे जो ना आई हो बात, वो सारा कुछ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस बॉलीवुड गीतों के जरिए हम किसी को भी बयां कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, रोशनी का इंतजार करते करते अंधेरे से मोहब्बत हो जाती है, रोशनी का इंतजार करते करते अंधेरे से मोहब्बत हो जाती है। बस ये हाल ही कुछ ऐसा है कि उसका इंतजार करते करते खुद से ही मोहब्बत हो जाती है।
1: तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी,

आ फिल्म से ये नगमा आपने सुना दोस्तों, आवाज लता मंगेशकर की थी। अगला जो गीत आपके सामने पेश कर रही हूं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में है, फिल्म श्री 420 का। आइए सुनते हैं ये नगमा।

मधुमति फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, बोल सजाए शैलेंद्र के और म्यूजिक दिया सलील चौधरी ने। दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, संग हूं मैं श्रेयसी, और हम खास कुछ ऐसे पुराने क्लासिकल गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो हमेशा हमेशा सुहाने रहते हैं, हमारे दिलों में तरोताजा रहते हैं। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले नगमे की तरफ। फिल्म नया दौर का ये झूमता हुआ गाना रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में, जिसके बोल सजाए हैं साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर साहब ने। आइए सुने ये नगमा और झूम जाएं इसके साथ।

और यूं ही दोस्तों किस तरह हमारे गीतों का सिलसिला चलता रहता है, हमारा साथ यूं ही बना रहता है और एक से एक बेहतरीन गीतें, एक से एक बेहतरीन गाने हमारे दिलो दिमाग में बस यूं ही झूमते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं इस अगले गीत की तरफ। फिल्म पेइंग गेस्ट का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक एस डी बर्मन साहब का।

ही ले ले जाएगा विराम, चल जाएगा विराम पर, लेकिन गीतों का सिलसिला जारी रहेगा एफएम गोल्ड चैनल पर, क्योंकि इसके बाद अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के पार अगला कार्यक्रम लेकर मैं श्रेयसी आपसे फिर जुड़ जाऊंगी। तो चलते चलते ये एक नगमा आपकी नजर।

पेइंग गेस्ट के इस बेहतरीन गीत के बाद दोस्तों अब एक और प्यारा सा नगमा मेरे जहन में आ रहा है, फिल्म काला पानी का। आशा भोसले और रफी साहब की आवाज में ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। लेकिन हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कार्यक्रम गीत सुहाने अब इस गीत के बाद

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: जीवन की ये रास्ते लंबी है सनम,
1: काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ ट्रिनिडाड और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता संघ समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। घड़ी में ठीक 2:11 और सेकंड्स की सुइयां बढ़ती चल रही हैं और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। संघ में श्रेयसी और आइए इस रात की चांदनी बिखेरें और गीतों की श्रृंखला बढ़ाते चलें। शुरुआत करते हैं इस गीत से, फिल्म आनंद से लिया ये नगमा हमने मुकेश की आवाज में।

आनंद फिल्म का ये नगमा आपने सुना दोस्तों, ये गीत ही कुछ ऐसा है, ये फिल्म ही कुछ ऐसी थी जो हमेशा अपने दर्द को मुस्कुराहटों में छुपाने की दर्द या जज्बात को बयां करती थी। यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत हैं, यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत हैं, मगर दर्द जब दर्ज कराने गए तो देखा वहां कतारें बहुत हैं।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना दोस्तों। म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने और बोल हैं अनजान के। अगला नगमा जो आपके सामने पेश कर रही हूं फिल्म गोलमाल का है, किशोर कुमार की ही आवाज है और बोल सजाए हैं गुलजार ने। आइए सुनते हैं ये नगमा।

कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं, कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं, और कभी अजनबी भी अपने से करीब लगते हैं। जिंदगी की यही सबसे अजीब सच्चाई है, रिश्ते खून से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं।

मुकेश और कंचन की आवाज में फिल्म धर्मात्मा का ये नगमा आपने सुना। बोल सजा इंदीवर ने और म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का। बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म कभी कभी का वो बेहतरीन नगमा जो हर किसी की जबान पे हमेशा रहता है। जी हाँ, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, बोल हैं खयाम साहब के।

अनामिका फिल्म का ये नगमा आपने सुना दोस्तों, आवाज लता मंगेशकर की, बोल सजाए मजरूह सुल्तान पुरी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन साहब ने। आरडी बर्मन साहब का ही एक और सजाया संगीत फिल्म कटी पतंग से ये नगमा आपके साथ साझा कर रही हूं। बोल सजाए हैं आनंद बख्शी साहब ने और आवाज है किशोर कुमार की। आइए सुनते हैं ये गीत।

गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, ये जिंदगी है जनाब, यहां तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा।

फिल्म द ग्रेट गैम्बल से आशा भोसले की आवाज में ये बेहतरीन नगमा आपने सुना। बोल सजाए आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन साहब का। अगला गाना जो पेश कर रही हूं फिल्म मिस्टर नटवरलाल का, आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और संग हूँ मैं श्रेयसी। एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला यूं ही हमेशा जारी रहेगा, लेकिन वक्त रहते कदर कर लें अपनी हर उस एहसास का, बाद में होने वाले को पछतावा ना झेलना पड़े। तो इसलिए गीतों का सिलसिला जारी रहे, शब्द भी अगर आपको ना मिले तो बॉलीवुड की ओर रुख करें और एक से एक बेहतरीन नगमे अपनी एहसासों में पिरोएं और उसे जरूर बयां करें। इसी के साथ अब मैं श्रेयसी यहां लेती हूं आपसे इजाजत, जल्द मिलने के वादे के साथ। लेकिन एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कुछ ही देर में अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद कार्यक्रम हमराही लेकर फिरोज आलम होंगे आपके साथ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन

0: मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने की और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रामास्वामी को पुद्दुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में तलिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बीसीसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ कमला परसद बीसीसर के साथ भाग लिया। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor Arun Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtaniya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defense Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA,

बशीर बद्र साहब कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। जब प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो फिर ऐसे ही जज्बात उभर कर सामने आते हैं। और प्यार और मोहब्बत ही ऐसी चीज है जो हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर आता है जो आपको सचमुच पागल सा बना देता है, पागल सा कर देता है, और यही मोहब्बत की पहली निशानी होती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:12 और 5 सेकंड, और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। रात के इस वक्त में आप किसी सफर पे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई में मशगूल हैं, इन सब के बावजूद संगीत, म्यूजिक, मौसीकी एक ऐसा साथी होता है जो हर वक्त आपको सुकून पहुंचाता है और उस दुनिया में लेकर जाता है जहां पर सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और जब तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं तो फिर आप प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस महफिल में मैं हूं आपका हमराही फिरोज। और ये सफर बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। हम एक ही राह के मुसाफिर हैं, हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, एक ही राह पर चल रहे हैं। जिंदगी हम तमाम लोगों की बिल्कुल एक जैसी है। किसी की जिंदगी में हमें लगता है कि बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में बहुत सारी दुश्वारियां भी हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान की जिंदगी इन तमाम मरहलों से गुजर कर आगे बढ़ती है। कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलात, कुछ आसानियां और कुछ खुशियां। इन तमाम चीजों से मिलकर ही ये जिंदगी आगे बढ़ती है। और जब तक ये तमाम चीजें हमारी जिंदगी में ना हो, तो फिर जिंदगी की खुशियों का और जिंदगी की तकलीफों का हमें अनुभव ही ना होगा। ऐसे ही ये जिंदगी आगे बढ़ती है और हम सब मिलकर जिंदगी को इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कुछ पाने की ललक, कुछ हासिल करने की तमन्ना, और उन तमन्नाओं में एक हम सफर की बात, प्यार मोहब्बत। जब तक हमारी जिंदगी में प्यार ना हो, तो ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आपने ये नगमा सुना था। और अगला नगमा किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आपके लिए।

लता जी और किशोर कुमार साहब की आवाजों में यह नगमा था फिल्म आ गले लग जा से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर। गीतों के नगमों के ये वो नगमे हैं जो हमेशा हम सब सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं और ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं हमराही की इस महफिल में और हमराही में उन नगमों के साथ हम हाजिर होते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। वो युगल गीत जो सदाबहार रहे और हमेशा हमारे दिल में बस गए। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं एक बार फिर से आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। हमराही में अब अगला नगमा एक और बेहद खूबसूरत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। आवाजें हैं लता जी और हम सब के चहेते मुकेश साहब की।

मैं ना भूलूंगा, फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से आवाजें थी लता जी और मुकेश साहब की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस दिलकश महफिल में, हमराही की वो महफिल जो आपका हम सफर बनकर आपके साथ चलता है, आपका हमराही बनकर आपका हमराह बनता है, यानी आपके सफर को आसान बना देता है। अगर आप भी इस वक्त किसी सफर पे हैं, कहीं जा रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई लिखाई में मशगूल हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नजर में कोई ऐसा है जो आपको चाहता है, या आप उसे चाहते हैं, या आप उन सब उनके दिल के करीब हैं, तो बस उन्हें याद कीजिए और इन नगमों को सुनिए। फिर देखिए कितना खूबसूरत, कितना सुकून आपको मिलेगा। ये नगमे हमेशा हमारे दिल की गहराई में उतर जाते हैं और हमें ले जाते हैं किसी और दुनिया में। शायद उसे ख्यालों की दुनिया भी कह सकते हैं, या अपने गुजरे वक्त को भी आप याद कर सकते हैं, और याद करके आप उसे दौर में वापस जा सकते हैं जब वक्त बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन था और आपका महबूब आपके साथ था। लेकिन अब जब वो आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, तो आप उसे किस तरीके से याद कर रहे हैं, यही बताता है अगला यह नगमा। फिल्म आपकी कसम से किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस दिलकश महफिल में करवटें बदलते रहे सारी रात हम।

एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमराही की इस दिलकश महफिल में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही की वो महफिल जिसमें आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सफर पर और एक मंजिल को तय करने

की कोशिश कर रहे हैं, कुछ यादों के जरिए और कुछ प्यार मोहब्बत की बातों के जरिए। ऐसे ही बातों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक और कदम आगे बढ़ाएंगे हमराही के इस महफिल में। और अगला नगमा फिल्म अगर तुम ना होते से लता जी और किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

फिल्म अगर तुम ना होते से नगमा तालता जी की आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जोश मलिहाबादी कहते हैं कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब याद किसी की आती है और जब किसी की याद में आप मुब्तला होते हैं तो फिर ऐसे अल्फाज आपकी जबान से निकलना लाजमी है। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। और ये यादें हमेशा के लिए हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं बसी होती है, क्योंकि ये वो यादें होती हैं जो हम सबके दिल के बेहद करीब होती हैं। और ऐसे ही यादों के साथ हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, रुकते नहीं हैं, बस बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल हमराही के इस सफर की तरह। और हमराही में अगला नगमा कुछ ऐसा ही, संगम फिल्म से मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। संगम फिल्म का ये नगमा मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर। तो ये सफर कैसा लग रहा है, ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें जरूर बताइएगा। उसके लिए आपको हमें मेल करना होगा और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी जरूर नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com, fmgoldairdaily@gmail.com। हमें आपके पैगामात का इंतजार रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हमराही के इस बहुत ही खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ। और ये नगमा है फिल्म आंधी से, लता जी की और किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके लिए ये नगमा खास तौर से।

तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आंधी फिल्म का यह नगमा था, आवाजें थी लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब की। इसी के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत हमराही से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार मैं फिर रहूंगा आपके साथ लेकर आपका अपना प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और वे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई।

0: शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। विजय आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtaniya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Tamilaga Vetri Kadagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी खिदमत में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो अब तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और आज के इस नई सुबह में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। कहते हैं कि वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। जब कोई आपका अपना आपके साथ हो तो आपके दिल में बहुत सारी उमंगें जमा होती रहती है, बहुत सारी बातें हैं जो अंदर ही अंदर हिचकोले लिए घूमती रहती है, बहुत सारी बातें आपके दिल में फूलों की तरह खिलती रहती हैं। और जब ऐसा होता है तो समझें कि आपका अपना आपके दिल के कितने करीब है। और जब आपका अपना कोई आपका साथ दे रहा हो, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो, तो यकीन मानिए दिल की उमंगें तो जमा होंगी ही होंगी और फिर जिंदगी भी बेहद खूबसूरत होगी। तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत नगमों के साथ हम आगे बढ़ते हैं अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। आवाज है हेमंत कुमार साहब और गीता दत्त की फिल्म मुनीम जी से।

अब गाइए ना। दिल की उमंग है जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

दिल की उमंगे हैं जवा, बेहद खूबसूरत है नगमा। मुनीम जी फिल्म से हेमंत कुमार साहब और गीता दत्त की बहुत ही प्यारी आवाजों में यकीनन ये दिल को सुकून पहुंचाने वाला थोड़ा मजाहिया टाइप का ये नगमा यकीनन कहीं न कहीं हमारे दिल में जो खामोशियां हैं, हमारे दिल में जो कुछ गुबार है, हमारे दिल में जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं उसको दूर करता हुआ यह नगमा दिल की उमंगे हैं जवा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया भी गया है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल है अरुणिमा की, और अरुणिमा में हम आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ, और वो नगमा है फिल्म प्यासा सावन से लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाज में। तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, यानी अगर जब आपके साथ कोई आपका अपना हो तो फिर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहें। अगर आप कहीं गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं तो वो थाम लेगा, और अगर वो कहीं पे लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं या राह भटकते हैं तो आप उसे थाम लेंगे। ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती है, और जिंदगी कितनी खूबसूरत है जब आपका अपना कोई हमसफर हो तब पता चलती है ये बात। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस बहुत ही प्यारे नगमे के साथ।

तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। फिल्म प्यासा सावन का यह नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और महफिल सजी है आपकी अपनी अरुणिमा की। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलात आए तो मायूस

बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है और वो रोशनी आपको एक नई मंजिल की तरफ लेकर जाती है। मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से डटकर जो मुकाबला करके आगे बढ़ेगा वही जिंदगी में सच्चा कामयाब योद्धा होगा। और कहते हैं कि दो लफ्जों की है ये दिल की कहानी, मोहब्बत और मुस्कुराहट से भरी ये जिंदगानी। मोहब्बत और मुस्कुराहट के साथ अगर आप जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कामयाबी आपके कदमों में होती है। इसी नगमे के साथ, ऐसे ही नगमों के साथ हम आगे बढ़ेंगे द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से आशा भोसले और अमिताभ बच्चन साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ। स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:34:50। महफिल है अरुणिमा की और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो चलिए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और जिंदगी के सफर के साथ साथ इस सफर को भी यूं ही आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ, फिल्म सपनों का सौदागर से। आवाजें हैं मुकेश साहब और शारदा की।

तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखे, जीवन के सफर में बन जाए उजाला। ये नगमा था सपनों का सौदागर फिल्म से, आवाजें मुकेश साहब और शारदा की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की ये महफिल। जावेद नसीमी कहते हैं कि एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है,

एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। यकीनन कोई एक चेहरा ऐसा होता है, कोई एक शख्स ऐसा होता है जो आपकी आंखों में बसा होता है, आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है, और वो अगर साथ आपके चलता है तो फिर ये सफर भी बहुत ही आसान हो जाता है। और जब वो सफ़र आसान होता है तो वो और ज़्यादा करीब आपके होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो बिल्कुल आपके अपने दिल में उतर जाता है, और वो कोई और नहीं होता, वो होता है जो आपको जानता है, आपको समझता है, आपके जज्बात की कदर करता है। वही वो शख्स होता है जो आपके दिल में उतर सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर आप समझे कि आपकी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत और कामयाब है। अगला नगमा कुछ ऐसा ही है, फिल्म वक्त से आशा भोसले और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बहुत ही प्यारी महफिल में।

हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वक्त इनका है नगमा, आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। ये वो महफिल है जिसमें आप जिंदगी की बातें करते हैं, जिंदगी की बातें सुनते हैं और जिंदगी को खूबसूरती के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कैसे आगे बढ़ाई जाए उसके बारे में बातें करते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हमारा ये सफर कैसा लग रहा है, हमें जरूर बताइएगा। और उसके लिए आपको हमारे ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, आप अपना फीडबैक इस पर भेज सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com, fmgoldairdaily@gmail.com। तो आप अपने पैगाम के जरिए हमसे जुड़े और हम आपके लिए जो बेहतरीन नगमे लेकर आए हैं, जो जिंदगी से जुड़े हुए हैं, वो तमाम नगमे हम आपके खिदमत में यूं ही पेश करते रहेंगे। अगला नगमा हमराज फिल्म का तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में ये नगमा आपके दिल को सुकून पहुंचाएगा। और अगर कोई है जिसका आप साथ देना चाहते हैं और कोई है जिसका आप साथ चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये नगमा आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा।

तुम अगर साथ देने का वादा करो। हमराज फिल्म का यह नगमा महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में। इस नगमे ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर आपका हमराही, आपका हम कदम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है और कुछ पल जिंदगी में सुकून के भी चाहिए होते हैं। अगर वो सुकून आपके जिंदगी में है तो फिर दुनिया आपके कदमों में होगी। बिल्कुल इस बेहद खूबसूरत कलाम की तरफ, और यह गजल है फिल्म मौसम से। लता जी और भूपेंद्र साहब की बहुत ही प्यारी आवाज।

समय आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये नज़्म बेहद प्यारी, बेहद खूबसूरत, जरूर पसंद आएगी आपको।

0: लता जी और भूपेंद्र सिंह की नई आवाजों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत अरुणिमा से, लेकिन सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार मैं फिर रहूंगा आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रूपये की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुड्डे बेलूर से महबूब नगर तक चार लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा के तहत महत्वपूर्ण सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। ये अस्पताल हैदराबाद में अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दौरान श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। तमिलनाडु में तमिल

0: वित्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। कई वरिष्ठ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नेता, फिल्मी हस्तियां और पार्टी कार्यकर्ताओं के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री का निर्णय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का होगा और जल्द ही नाम की घोषणा कर दी जाएगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगासामी को पुद्दुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगासामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगासामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगासामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान करना, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानून के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का सामना मुंबई इंडियंस से होगा और ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R. N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtaniya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP rule states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 a.m. this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 5:10 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। भोर सुहानी की वो महफिल जिसमें जिंदगी से जुड़ी हुई बातें तो होती ही हैं, साथ ही साथ किस तरीके से हम जिंदगी को आगे बढ़ाएं उसकी बातें भी होती है, और ये भी कि हम जिंदगी में उन तमाम मुश्किलात से कैसे मुकाबला करते हुए आगे बढ़े और अपनी मंजिल को तय करें। लेकिन हर सुबह जब हम जगते हैं, हर सुबह जब हम अपने बिस्तर से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, और खुदा के नाम के साथ ही, ईश्वर के नाम के साथ ही हम हर नए दिन का आगाज करते हैं। तो हम भी आज उसी खुदा, उसी ईश्वर के नाम हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम भी एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, तो आइए आज की सुबह का आगाज करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी में, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज। तो आइए आज के इस सफर को हम यूं ही आगे बढ़ाते हैं, उस खुदा का नाम लेते हुए, उस ईश्वर का नाम लेते हुए जिसने हमें पैदा किया और हमें एक बेहतर इंसान बनाया। ये नगमा है फिल्म द बर्निंग ट्रेन से, आवाज है सुषमा श्रेष्ठ की।

जी हाँ, तेरी है जमीन, तेरा आसमां, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ, ये जान, ये जिस्म और ये सेहत, ये तमाम चीजें तुम्हारी दी हुई है, यानी उस खुदा, उस ईश्वर की दी हुई है। वो चाहे तो हमें इससे भी बेहतर कर सकता है, वो चाहे तो हमें इससे भी बुरे हालात में रख सकता है, लेकिन हर हालात में वो हमारे लिए बेहतर सोचता है। वो सर्वश्रेष्ठ है और इंसान को भी ऐसा ही बनाया है। और इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उसमें सबसे बेहतर सिर्फ और सिर्फ इंसान को बनाया गया है। और तमाम चीजों पर, तमाम कुदरती चीजों पर एक इंसान ही है जो अपनी हुकूमत करता है। और इंसान बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। अगर सही दिशा में चले, सही रास्ते पर चले, तो जिंदगी बेहद खूबसूरत है। और वही इंसान जब कोई गलत रास्ता इख्तियार कर ले, तो सबके लिए, पूरे समाज के साथ साथ पूरे देश, पूरे वतन, पूरे मुल्क के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि एक अच्छे इंसान बनकर एक अच्छी जिंदगी बनाए औरों को साथ लेकर आगे बढ़े। और कहते हैं कि हर नया दिन, हर नई सुबह एक नई शुरुआत लेकर आता है, एक नया पैगाम लेकर आता है, एक नई रोशनी के साथ आता है और जिंदगी में नए ख्वाब सजाने के लिए आता है। इसलिए हम भी कोशिश करें कि हर नए दिन में, एक नई सुबह में, एक नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ें और अपने कदम को आगे बढ़ाएं और हर सुबह को एक नई उम्मीद के साथ जीने की कोशिश करें इस नगमे की तरह। फिल्म याश का ये नगमा और आवाज है इस उदास की।

जी हाँ, ये सुबह सुहानी जरूर है, बेहद खूबसूरत है और बहुत ही प्यारी भी है, क्योंकि हर सुबह एक नया पैगाम लेकर आती है, एक नई उम्मीद के साथ आती है। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हर नया दिन आगे बढ़ने और नई जिंदगी शुरू करने का मौका देता है, और इसीलिए हम हर नए दिन को एक नए अवसर के तौर पर लें, ताकि हमारी जिंदगी रुके नहीं, थमे नहीं, और बस आगे बढ़ती जाए। क्योंकि जिंदगी में अगर हम रुक गए तो जिंदगी वहीं थम सी जाती है। तो आप भी अगर जग गए हैं तो जल्दी से बाहर निकलें और देखें कि मौसम कितना खूबसूरत, कितना प्यारा है, और साथ ही साथ इस नई सुबह में चिड़ियों का चहचहाना भी आपने सुन लिया, और बहुत ही खूबसूरत इस सुबह में हम अपने कदम को बढ़ाना भी शुरू कर चुके हैं। आपने भी अगर अभी तक अपने बिस्तर छोड़े नहीं है तो जल्दी से उठिए और बाहर निकलिए, देखिए कितना सुहाना है ये दिन। और कहते हैं कि हर नया दिन हमें ये नया पैगाम इस तरीके से लेके आता है कि हमारे लिए आज का दिन एक कुछ नया करने का दिन है, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का दिन है, और ये प्रण लेने का दिन है कि हम आज एक नया काम ये करेंगे कि किसी हंसते को, किसी रोते को देखकर हम किसी रोते को देखकर उसको हंसाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह से मदद करके, चाहे मामूली सी ही क्यों ना हो, बस वो छोटी सी मदद ही उसकी जिंदगी संवार सकती है, उसकी जिंदगी बना सकती है। इसी तरीके से जीवन चलता है और चलता ही रहेगा, और आप भी हम भी यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन कोशिश हमें यही करनी है कि जीवन को खुशियों के साथ आगे बढ़ाए, क्योंकि जीवन चलने का नाम है।